तापुरक निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। इसनों मूल मंत्र क्या जाना है? श्री गुरु नानक देव जी ने उस अनंत परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मूल मंत्र विच दे दिता है। इसके अखरी अर्थां नूं समझिए। एक परमेश्वर एक है, दो जां तीन नहीं। ओंकार रजो तमो सतो गुण तो परे परमेश्वर सर्वव्यापक है। सत नाम उसका नाम सच है। कर्ता पुरख इस सगल जगत का कर्ता परता वो प्रभु आप ही है। निरपाव परमेश्वर आप ही जदों लीला रच रहा है आप ही ओ जीव जगत हो गया। जद उस तो अलावा होर कोई है ही नहीं तो फिर उसनु डर किसता? निर्वैर आप तो आपनु वैर भी संभव नहीं सो प्रभु निर्वैर है। अकाल मूरत परमेश्वर काल समय तो बाहर है। काल विच जन्मी हर मूरत मरणशील है। परमात्मा दा रूप अकाल है समय तो बाहर है। अजोनी प्रभु किसी भी जोनी विच कदी भी नहीं आवेगा। जिसका जन्म कदी ना होवेगा ऐसे परमेश्वर नु अजोनी क्या जाता है। सैभं परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। गुर परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है। प्रसाद प्रसाद तो भाव है आनंद रूप। जिसने भी ज्ञान रूपी गुरु दे जरिए उस परमेश्वर नु जानिया वो आनंदित हो जाएगा। मूल मंत्र विच साधक वास्ते साधना दा राह भी है सुझाव भी है और अंतम रूहानियत दी मंजिल विच जाके जो अनुभूति होवेगी वो भी इसी मंत्र विच है। इसी कारण इसनु मूल मंत्र क्या जाता है। भावना एकाग्रता अते श्रद्धा नाल इस मूल मंत्र दा कीता गया जप साधक दे जीवन च शक्ति ते भक्ति नू लेके आवेगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

सुंदर प्रसंग है रहीम के बारे में। रहीम कृष्ण भक्त थे, मुसलमान थे और अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान थाना। उनकी एक विशेषता बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है, एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझाया।

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है हैबी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन्ट डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार. After the news, तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और enjoy कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

0: उन्हें ये नाज है हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा कि तलवार हम उठाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस लें वो मांगे ना उम्र भर
1: पानी।
0: बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वहीं

नजर से उतारने वालों, खबर भी है तुम्हें शेखी बघारने वालों। इसी जमीन पे होती है ऐसी लड़कियां भी जिन्होंने मर्द को ललका

झुके तो दिल क्या जान भी दे दे, जो सर उठाए तो लड़कों की जान भी ले ले। अगर चे ममता और प्यार है यही लड़की, जो

एक दिन बोले फरिश्ते करके ये दुनिया की सैर, या खुदा दुनिया तेरी सूनी है औरत के बगैर। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ, सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने की बात। फिर जहर नागिन से लिया और सांप से डसना लिया,

0: के जब लगी मौला के हाथ और इन सबको मिलाया जब खुदा ने एक साथ, देख कर अपनी कलाकारी पे मौला हंस पड़ा और उसी अनमोल शय का नाम लड़की रख दिया। रख चुका जब नाम उसके बाद यूं कहने लगा, पूछो तो सही क्या क्या कहो
1: क्या

जब मेरे मालिक ने सोचा लड़कों को पैदा करे, सबसे पहले ये सवाल आया कि कुदरत क्या करे। ली गधे से अक्ल, कौवे से सियाना,

इन नजरों से हट।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: For your family treat this summer.
3: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: 043.
1: This is the future, man.

Welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मैं आशा करता हूँ कि इस गाने को आपने काफी पसंद किया होगा. मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. I hope you know that. हमारा ऐप है ना, सो गूगल प्ले नहीं तो ऐप स्टोर पर आप जा सकते हैं एंड हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. तो ज़रूर जाइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर हैं तो हमें सुन सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा.

एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट है ना www.sunriseradio.fm, लॉग ऑन कीजिएगा, सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स जो हैं सब कुछ, सब इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं हमारे रेडियो के द्वारा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: Welcome back after the classic flashback on Sunrise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, meri aur aapki mulaqat hogi khabron ke us paar, which is after the news, aur tab bhi beautiful gaano ka silsila chalta rahega. Stay tuned till 11 o'clock.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं.

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after yet another beautiful classic flashback on your Sunrise Radio 103.2 FM. And right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. So I'll see you on the other side.

once again. Welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टेरियो पर और 100.6 एफएम पर आप पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुन सकते हैं। अगर डेब पे आप सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं संडा रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एबी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम, और याद रखिएगा सिर्फ अब से लेकर 12 बजे तक ही आपकी डेडिकेशन है। फिर 12 और 2 के दरमियान जो दो आखिरी घंटे होते हैं वो लाइव कॉल्स के होते हैं जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं एक प्यारी सी कवाली पंजाबी में आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: The Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: उस्ताद जोजी अली खान और साथियों की आवाज़ों में दोस्तों आपने हिट ऑफ द आवर सुना और इसके साथ ही अब चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 11:16। तो दोस्तों कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशियात को सुन रहे हैं।
2: नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानेब। हमें काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया और जनाब हमें फ़ोन किया, हो बहुत लंबी लाइन है जनाब, कोई कॉल नहीं ले पाया। वाजिद भाई और डिस्फील्ड से आपकी कॉल तो ली मैंने, उसके बाद चौधरी मुजफ्फर साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम करेंगे, आपके दोस्तों के नाम करेंगे। उसके बाद लियाकत भाई आपकी कॉल भी मैंने अटेंड की, शुक्रिया आपका भी। और जनाब आपके नाम भी ये गीत करेंगे। उसके बाद भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब आपने भी फ़ोन किया जनाब, बहुत अच्छा लगा, आपने भी फ़ोन किया, आपके नाम भी ये गीत करते हैं। उसके बाद अयूब चौहान साहब आपने भी फ़ोन किया, माजर चाहते हैं आपकी कॉल भी नहीं ले पाया मैं। उसके बाद सीमा जी आपने भी फ़ोन किया, माजर चाहते हैं आपकी कॉल भी नहीं ले पाया। और सोनिया जी आपने भी फ़ोन किया बहना बर्मिंघम से, आपने आपका भी कॉल नहीं ले पाया मैं। और उसके बाद अयूब चौहान साहब ने दो तीन बार कॉलें की। नदीम मंसूर साहब आपने भी कॉल की, शुक्रिया आपका भी, आपकी भी मैं कॉल नहीं ले पाया, माजर चाहता हूँ। ईरा खान साहब आपने भी फ़ोन किया, आपकी भी कॉल नहीं ले पाया। तो अब जो दोस्त फ़ोन करेंगे मैं कॉलें उठा लूँगा, आपसे बात कर लूँगा। तो चलते हैं ये गीत सुनते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा साखी सुना और तारिक जुल्फी साहब फोन करने का शुक्रिया जनाब। आने वाला की जो कमर्शियल के बाद होगा, कमर्शियल के बाद बेसिकली इवेंट्स डायरी भी है थोड़ी सी 3 मिनट की, वो आप सुनेंगे, उसके बाद आप गीत सुनेंगे और तारिक जुल्फी साहब आप अपने दोस्तों के लिए स्पेशली हीरा खान साहब और मलिक इसहाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं उनके नाम करेंगे, सोनिया बहन आपके नाम भी करेंगे और उसके बाद नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे और अयूब चौहान साहब आपके नाम भी करेंगे और सीमा जी आपके नाम भी करेंगे और भाई रुखसार अहमद साहब आपके नाम भी करेंगे और चौधरी मुजफ्फर साहब लियाकत भाई आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद इवेंट्स डायरी, उसके बाद आप प्यारा सा गीत सुनेंगे।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: क्या गीत था साजन सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आप सब ने इंजॉय किया होगा इस गीत को। और अब क्या है कि वक्त हमें बता रहा है कि अब कोई गीत नहीं होगा, कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है। और हमें फ़ोन किया बानो बहन, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। थोड़ी देर के बाद आपके लिए ज़रूर गीत प्ले करूँगा। शुक्रिया फ़ोन करने का तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके साथ खूब गपशप हुई और साथ में हीरा खान साहब के साथ भी गपशप हुई। तो जनाब आप दोस्तों के नाम ये गीत, और उसके बाद जनाब खान साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और अभी जो है वो सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है, और आपके साथ हैं इस वक्त दो बंगाली शहजादे जनाब फारूक भाई और माशूक भाई, उनके नाम भी करेंगे। और उम्मीद रखूँगा आप दोस्तों को ये गाना पसंद आएगा। उसके बाद रहमतुल्ला भाई, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद भाई रुखसार अहमद साहब, आपके नाम अयूब चौहान साहब, आपके नाम भी करेंगे। चौधरी मुजफ्फर साहब स्पेशली आपके नाम भी करेंगे। चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले हैं, उनके नाम करेंगे। महबूब इलाही साहब हैं, उनके नाम करेंगे। और तारे अपनी सफीउल्ला भाई हैं, उनके नाम करेंगे। और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चौधरी मुजफ्फर साहब की कॉल आ गई जना फिर, तो अच्छा लगा। तो चलते हैं पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:45, यानी कि 11:45। तो छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है जनाब, उसके बाद आप सदाबहार प्यारा सा गीत सुनेंगे, और जिन दोस्तों का नाम लिया उन सब के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत मोहिंद्र कपूर की प्यारी सी आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के नाम।

जी दोस्तों, आपने अभी बहुत ही प्यारा सा गीत मोहिंदर कपूर की प्यारी सी आवाज में सुना, और इसके साथ ही चलते हैं जनाब अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है प्यारे दोस्तों के लिए, और स्पेशली जनाब चौधरी फरियाद साहब, आपने पाकिस्तान से फोन किया, आपके नाम करते हैं, और बानो बहना आपके नाम, और अमरीन साहब आपके नाम करेंगे, खान भाई आपके नाम, फारूक और माशूक भाई के नाम हैं, और अभी सैरा जी आप फोन कर रही हैं, आपके नाम भी करते हैं, सभी सुनने वालों के नाम करते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे है और याद रखिए प्रोग्राम का ये दूसरा और जो तीसरा हिस्सा होते हैं ये दोनों लाइव कॉल्स के होते हैं, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो ये सिलसिला चलेगा जनाब प्रोग्राम के आखिर तक। आप कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स का सिलसिला है जनाब। तो चलते हैं दोस्तों, अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का जो गीत है तमाम दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: दिल का क्या करें साहेब, बहुत ही प्यारा गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। और दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13 यानी कि 13:12 और कमर्शियल का टाइम हो गया जनाब। कमर्शियल के बाद हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, अयूब चौहान साहब और एम खान साहब।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 3030
4: For your family treat this summer.
5: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
4: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
5: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
4: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
5: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
6: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
0: Sunrise
6: Radio,
0: Sunrise. जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे जनाब, और 2 बजे तक प्रोग्राम के आखिर तक लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। यह है फॉर्मेट, आप कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स हैं। तो चलते हैं तालियों की गूंज में जनाब मैनचेस्टर में एल्बम में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अयूब चौहान साहब। अयूब चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं?
7: मैं ठीक ठाक हूँ। आपने जो अभी गाना लगाया, मैं बस उस गाने के ने नशे में खो गया था।
0: ओए होए होए होए, कौन सा गाना?
7: दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हें मरते हैं।
0: इसमें हंसने वाली कौन सी बात है?
7: नहीं, वो गाने के बोल है ना, इसलिए।
0: हाँ तो हंसी वाले तो नहीं है, फनी तो नहीं है, बड़े सीरियस तो बड़े सीरियस बोल हैं, हम उन्हीं पे मरते हैं।
7: वो तो सीरियस है, लेकिन मेरी जुबान
0: आप सीरियस नहीं है, आप सीरियस नहीं है,
7: लग रहे ना
0: जी,
7: मेरी जुबान से अच्छे नहीं लग रहे।
0: क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं?
7: बस
0: बोल वही है, बोलने का अंदाज होना चाहिए। आप हंसना शुरू कर देंगे, इतने सीरियस बोल हैं और आप हंस रहे हैं, तो फिर जाहिर है अच्छे अच्छे कैसे लगेंगे जी।
7: सनी डोल साहब, इन्होंने बर्मिंघम में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, मुझे पता होता था ये बर्मिंघम में ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां मैं जाके उनसे मिलता, फिर तो ऑटोग्राफी लेता उनसे, तो बस बाद में पता चला ये बर्मिंघम ट्रेनिंग करते रहे।
0: अब आपको हमेशा हर चीज का लेट पता चलता है।
7: मुझे लेट पता, लेकिन आपको आपसे मुलाकात भी बड़ी लेट होगी ना।
0: सही है, लेट हो गए ना, हर चीज से लेट हो गए, कोई बात नहीं।
7: मैं देर वो, करता वो, नहीं देर वो, हो जाती है।
0: हाँ वो मुहावरा सही फिट भी होता है ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो उस वक्त अगर आप चले जाते वहाँ तो एक्टिंग की प्रैक्टिस करते तो शायद कुछ और ही हो जाता, तो उससे बेहतर है कि आप नहीं गए वहाँ।
7: ना मैं एक्टर बन सकता था और ना ही मैं रेडियो प्रेजेंटर बन सकता था।
0: ये कैसे आपने कह दिया?
7: जो मैं बना हुआ मैं बस इसी में खुश हूँ।
0: क्या बने हुए?
7: आपका लिसनर।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
7: कोई आपको आपको लिसनर की भी तो जरूरत पड़ती है।
0: हाँ वो तो है, उसकी वजह से तो प्रोग्राम है, वरना तो फिर प्रोग्राम को लिसनर ना हूँ तो प्रोग्राम किसके लिए बंदा करे तो फिर?
7: मैं बस इसी में खुश हूँ कि मैं आपका लिसनर बना हूँ।
0: हाँ ताकि मेरी रोजी रोटी चलती रहे। बहुत शुक्रिया।
7: एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अचानक आपको क्या हो गया? पहले मैनचेस्टर कहते थे तो मैं कहता था ओल्डर मुझे कहा करे, फिर भी मैनचेस्टर कहते थे, अचानक ओल्डर।
0: क्योंकि आप मैनचेस्टर कहते होते थे और रहते ओल्डम में थे और हमें कहते थे मैनचेस्टर, तो फिर हम मैनचेस्टर ही कहते थे। आप वो जबान पे चढ़ा हुआ है इसलिए पहले मैनचेस्टर निकल जाता है, लेकिन फिर
7: मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि मैं मैनचेस्टर में रहता हूं।
0: आप खुद ही कहते होते थे जब पहले प्रोग्रामों में आते थे।
7: आपको गलतफहमी है,
0: ओल्डम तो अभी आपने कहा ही नहीं जनाब।
7: नहीं सारी दुनिया जानती है मैं ये।
0: सारी दुनिया जानती है, अब वो इसीलिए जानते हैं ना, रेडियो पे सुनते हैं तो जानते हैं ना।
7: मैं 62 साल से ओल्डम में रह रहा हूँ, मैं कैसे आपको कहूँ कि
0: तो ओल्डम की दो चार सीटों वाले आपको जानते होंगे ना।
7: मुझे तो सारा ओल्डम जानता है, आप आके देखें, किसी से भी पूछ लें।
0: पता नहीं, मैं तो ओल्डम जाता हूँ, जिससे पूछता हूँ अयूब चौहान साहब, वो बोलते हैं यार कभी नाम नहीं सुना। और फिर
7: खुरा बकरी के रहने वाले, किसी से भी पूछ लें।
0: आज फिर खुरा बकरी पे आ गए ना।
7: जो भी खुरा बकरी के रहने वाले हैं किसी से पूछ ले के अयूब चौहान का, तो आपको वो सीधा मेरे घर ले आएंगे।
0: नहीं वो तो कोई नहीं, आप हम 606 पे जाएं तो नहीं, हम 62 पे जाएं तो वहाँ से जब आप टर्न करते हैं सैडलवर्थ की तरफ तो वहाँ से ही वो बोर्ड लगा हुआ है अयूब चौहान प्लाजा दिस साइड।
7: अच्छा ठीक है। अच्छा मैं शायरी सुना देता हूँ आपको।
0: जी जी,
7: वरना एम खान साहब वो चारे बहुत अच्छे इंसान है तो वो खफा हो जाएंगे इतनी देर आप उनको होल्ड
0: तो करेंगे। कोई बात बनी, आपने कहा था उनकी शागिर्दी में आना है, मैंने भी सिफारिश की।
7: नहीं बने, असल
0: मैंने भी सिफारिश की थी।
7: नहीं आपने सिफारिश की थी, मैंने सुन रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी ना, तो फिर वो बात नहीं बन सकी ना, तो
0: खैर
7: आप वो भी रिटायर हो गए।
0: चलो इस खुशी में मिठाई का डब्बा ले आना।
7: नहीं मैं तो मिठाई डब्बा आजकल लाता नहीं है, आजकल यहाँ से ऑर्डर करो तो वो आपके घर दे देंगे।
0: नहीं आपकी बात नहीं बनी ना, इसलिए कह रहा हूँ।
7: तो वहाँ पर यहाँ से मैं किसी को फोन करूँ ना तो मिठाई का डब्बा आपके घर कोई ना कोई दे
0: नहीं, वो तो नहीं ना, वो तो नहीं, क्योंकि बात आपकी नहीं बनी ना, तो आपका हक पहुँचता है मिठाई खिलाने का।
7: मैं आपको मिठाई खिलाना ही नहीं चाहता क्योंकि आपको शुगर हो जाए।
0: वो रेडी है यार, चलो ठीक है ठीक है।
7: कि आप क्यों मुझे बातों में लगा देते, मैं शायरी सुनाना।
0: सुनाए सुनाए सुनाए।
7: सोचता हूँ कि उसे नींद भी आती होगी या मेरी तरह फकत अश्क बहाती होगी।
0: ओए होए,
7: वो ही मेरी शक्ल मेरा नाम बुलाने वाली।
0: ओए होए,
7: अपनी तस्वीर से क्या आंखें मिलाती होगी।
0: वाह जी वाह,
7: इस जमीन पर भी है सैलाब मेरे अश्कों से, मेरे मेरे मातम की सदा अर्श हलाती होगी।
0: वाह वाह क्या बात,
7: शाम होते ही वो चौखट पे जलाकर शमे अपनी पलकों पे कोई ख्वाब सलाती होगी।
0: हाय हाय हाय,
7: उसने सलवा भी लिए होंगे सह रंग लबास, अब मोहरम की तरह ईद मनाती होगी। होती होगी मेरे बोसे की तलब तलब में पागल, जब भी जुल्फे में कोई फूल सजाती होगी।
0: वाह वाह क्या बात,
7: मेरी तारीख जमाने से निकलने वाली रोशनी तुझको मेरी याद दिलाती होगी।
0: वाह जी वाह,
7: दिल की मासूब रगे खुद ही सुलगती होंगी, जो ही तस्वीर का कोना वो जलाती होगी। रूप देकर मुझे इसमें किसी शहजादे का, अपने बच्चों को कहानी वो सुनाती होगी।
0: क्या बात।
7: तो ये तो वसी शाह साहब थे। तो अब लतीफे आपको मैं सुना दूं।
0: जी जरूर जरूर।
7: मुझे चौधरी फरियाद साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब और भी जितने आपके लिस्टनर हैं सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम है। भूल ना जाऊं इसलिए मैं।
0: कोई बात नहीं, फोन रख देते फिर बताते तो अच्छा था। चलिए।
7: एक साहब रंग परंगी जूतों की बोरी भर कर लाया, बीवी ने पूछा ये सब कहां से लाए हो। तुम्हें नहीं मालूम आज मेरी पहली तकरीर थी।
0: अच्छा
7: अच्छा, कौन की
0: तरह समझ आ गई। बहुत अच्छी थी।
7: अच्छा आज का लेट आपको समझ बड़ी लेट।
0: नहीं वो हंसने वाले थोड़ा लेट हो गए ना, उनको थोड़ा समझने में फर्क। उन्होंने सोचा शायद आगे भी कुछ कहेंगे।
7: नहीं अच्छा, मामी क्या मैं पानी में उतरूं। बेटी ने साहिल समुद्र पर बैठ कर अपनी माँ से कहा, नहीं बेटी समुद्र में तूफान आया हुआ है और फिर पानी में सांप वगैरह भी हैं। माँ ने कहा, मगर दादी तो मजे से नहा रहे हैं।
0: अच्छा
7: मुझे मालूम है बेटी, इनकी जिंदगी का बीमा हो चुका है इसलिए मैं इन्हें मने नहीं कर सकता।
0: अच्छा
7: तो ये थे। और सुना देता हूँ। एक आदमी औरतों से बड़ा डरता था।
0: अच्छा
7: तो औरतों से बड़ा डरता था, तो उसकी दादी माँ कहने लगी, बेटा ऐसा करो कि इतनी औरतों से तुम डरते हो, एक से शादी कर लो तो फिर बस एक से ही डरोगे।
0: क्या बात।
7: अच्छा ठीक है जी, खुदा
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबान। अल्लाह हाफिज़। दिल से तालियां यू चौहान साहब के लिए जनाब। और हमें जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खान साहब भी, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं चौधरी फरियाद साहब, तो अहमद खान साहब को थोड़ी देर के बाद लेंगे। चौधरी फरियाद साहब को पहले ले लेते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
8: जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा जी करा।
0: चौधरी साहब की हाल जे, ठीक हो
8: जी? तुसन ये दुआवां ठीक ठाक, तुसन सुनाओ वालो।
0: मैं ठीक हां चौधरी साहब। तुसी बहुत जल्दी फोन कीता सी ते मैं बाद ही बड़ा गिल्टी होया, मैं तुहाडी कॉल नहीं ली क्योंकि मैं सोचा जब बड़ा टाइम है, 12 मिनट रहिंदे ने खबरां नूं, फिर खबरां होणगियां 2 मिनट, फिर उस तों बाद इट ऑफ द आवर लगेगा ते मेरे भरा का काफ़ी खर्चा हो जाएगा, इस वास्ते उसले मैं हूँ अहम खान साहब होलते ने, लेकिन मैं थोड़ी कॉल पहले ले ली ताकि थोड़ा खर्चा बच
8: जाए। बड़ी मेहरबानी।
0: करिए जी, जरूर जरूर मेरे भी।
8: सबसे पहले अतिका बाजी ने, नशीन जी ने और गजाला बाजी ने, सीमा जी ने, इन्होंने मेरा बहुत बहुत सलाम। और परवेज भाई ने, महबूब भलाई साहब ने, मदरसा साहब ने, अजय सलीम साहब ने, चौधरी मीर सिंह चक्की आले ने, शकील साहब ने, वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, नवीद राणा साहब ने, जनाब तारक बार साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसिफ रियासत साहब ने, और चौधरी रखार साहब ने, और जनाब अहमद खान साहब तुसानू शुक्रिया, तुसानू मैं मौका दिता, अल्लाह तुसानू सलामत रखन। ते नदीम मंसूर साहब ने, ते राजा दुलकरनैन साहब ने, और तुसाने शहजादे सिकंदर अली बिशारत अली आरफ अली फड़के साहब दोस्तों सजनिया दुनिया की मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: ठीक
8: बिस्मिल्लाह करा लिखने ने के उसन वालिया जग से निरालिया वे, उसन वालिया जग से निरालिया वे, केड़े कलम नाल तेरी तारीफ लिखा, ਕਿਹੜੇ ਬੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਾ
0: ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
8: ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਜਮਾਲ ਦੇ ਐਂਜਲ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੀਫ ਲਿਖਾ ਮਦਾ ਖਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਾ ਦੇ ਤਲਖੀ ਐਸਾ ਕਾਫੀਆ ਕੋਈ ਰਦੀਫ ਲਿਖਾ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ
8: ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜਾ ਨਾਤ ਤੇਰੀ ਬਣੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਪੜਾ ਨਾਤ ਤੇਰੀ ਬਣੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਆਕਾ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਦ ਬਣਾ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਦਾ ਪੈਰ ਤੇਰੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ
8: ਅਜਰੋ ਸ਼ਜਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇਰੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੰਜਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਮਾਨ ਤਰਸੀ ਕਮਲੇ ਵਾਲਿਆ ਆਸਾਂ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
8: ਜੀ ਮਜਾਜ਼ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਕਰਾਰ ਜਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਕਰਾਰ ਜਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰੁਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨਾਸੀ ਕੌਣ ਰੁਸ ਜਾਵਣ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਮਨ ਜਾਂਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕੌਣ
0: ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
8: ਸਾਡਾ ਆਲ ਵਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਪੁੱਛਦੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸੀ ਕੌਣ ਰਸਮੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਏ ਯਾਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾ ਸੀ ਕੌਣ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
8: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਾਲ
0: ਵਾਹ
8: ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਾ ਤੱਕ ਯਾਰ ਬਦਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰੁੱਸ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਲੱਖ ਪਿਆ ਤਾਣੇ ਆ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਮੁਖਲਸ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਮਨ ਛੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਮੁੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋੜ ਜਾਵੇ ਅੰਜਮ ਤੰਗ ਮੁੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋੜ ਜਾਵੇ ਅੰਜਮ ਉਹ ਨਾਲ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਦਾ ਨੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ
8: ਆਖਿਆ ਰਾਵਾਂ ਮਲ ਬੈਠੇ ਅਮਨ ਅਮਨਵਾਰ ਹੈ ਸਨ ਰਾਵਾਂ ਮਲ ਬੈਠੇ ਅਮਨਵਾਰ ਹੈ ਸਨ ਕਮਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਦੇ ਪੌਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਣਾ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ
8: ਦਰਦ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਰ ਉਦਾਸ ਦੇਣਾ ਲੱਖ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਵੇ ਅੰਜਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੱਢ ਪੜਾਸ ਦੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
8: ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਦਾ ਮੈਂ
0: ਤੇਰੇ
8: ਨਾਲ ਬੇਦਰਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਲਾ ਇਸ ਕੀਤੀ ਸਤਾ ਦਾ ਮੈਂ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ
8: ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੀ ਸਰਿਆ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਮਲ ਕਾਹਦਾ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਗਵਾਚੀ ਜਾਵੇ ਨੰਜਮ ਦੂਜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ
0: ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
8: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਤਾਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਤਾਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਮੁਜਰਮ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਕਸੀਰ ਦਾ ਮੈਂ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ
8: ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਖਾਸ ਖਾਤਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਖਾਸ ਖਾਤਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ ਜਾਵੇ ਅੰਜਮ ਬਣਿਆ ਖਾਦਮ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੈਂ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ
8: ਅਮਰ ਭਾਈ
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੇ ਥੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁੜੇ ਸੇ ਔਰ ਅਬ ਸੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਬ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੋਲਡ ਪੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ
9: Looking for a quality home to rent?
10: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
9: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
11: Have you tried Caratino Better Ghee? The healthier, low-cost butter ghee alternative, Caratino Better Ghee, is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

0: आज जो आज का दिन है आज का जो दिन है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आग में डाला
1: जी
0: वो दिन है, वो ग्यारहवां दिन जो है ये गौसल आजम ने यादमी शरीफ का रखा हमेशा देते, और बारहवीं हुजूर की मिलाद मुस्वागी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जो शहर मक्का में पैदा हुए। पूरी कायनात में बल्ले बल्ले अल्लाह अल्लाह के रसूल की हम तो लोगों का दिल आबाद इशाद हो गया। अल्लामा इकबाल ने बड़ा तुरंत काम लिखा है मुसलमानों की हिकमत और इलम वो जो काम करते हैं आप इशाद फरमाते हैं गाफिल है तुझसे हैरत इलम आफरीदा देख जोया नहीं तेरी।

रहने दे जिस यू में ख्याल बुलंद को हैरत में छोड़ो दीदाए हिकमत पसंद पसंद को जिसकी माफी चाहता हूँ जिसकी बहार ये ऐसा चमन नहीं काबले काबल तेरी नमूद के ये अंजमन नहीं ये अंजमन है कुछ ताए नजाराए मजाल मकसद तेरी नगा का खलवत सराए हर दिल नए ख्याल की मस्त हर दिल ख्याल ख्याल की मस्ती से चूर है कुछ ओ

0: अमीर साहब इरशाद फरमाते हैं, दो तीन शेर पढ़ूंगा
1: जी।
0: सदर नशीन दीवाना हशर दा अफसर विच इमामा कुल नबी मुताज ना दे नफरा वांग गुलाम मुहम्मद रोशन आ जदू आदम नूर मुहम्मद रोशन आ आदम जदू न होया अव्वल आखिर दोए पासे ओ मलो

0: दोनों लाइनों पर मैं
1: बहुत शुक्रिया
0: सब सुनने वालों का माफी चाहता हूँ।
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब अपने एम खान साहब, और अब जनाब तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, जी उन्हें कहेंगे सीमा जी को, और अब हमारे साथ नदीम मंसूर साहब भी जुड़ गए। सीमा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: अस्सलाम वालेकुम,
1: कैसी हैं आप? ठीक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मज़े चाहते हैं, काफ़ी आप काम पे हैं और काफ़ी देर आपको होल्ड करना पड़ा।
2: नहीं कोई बात नहीं, आज टाइम था इसलिए रुक गई
1: हूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
2: और सब ठीक ठाक?
1: जी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, अल्लाह का करम।
2: चले शुक्र, अच्छा लगा वापस आपको। मैं काफी दिनों से नहीं थी, थोड़ा बिजी थी तो
1: जी
2: नहीं आ पाई थी, आज मैंने सोचा कि जाना ही जाना है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
2: चले सबको अस्सलाम वालेकुम, जो जो आए, चौधरी फरियाद भी है, महान साहब काफी अच्छा पढ़ के गए, वो भी मिलाद का महीना है,
1: जी जी
2: हर तरफ मिलाद की धूम शूम है
1: जी।
2: चले मैं तो पुराना सॉन्ग ही लेके आई।
1: जी जरूर जरूर जरूर जरूर।
2: कोई आंख नम मेरे दिल मुस्कुराया, आंख नम मेरे दिल

हंसी जिसको दी है उसी ने रुलाया, हंसी जिसको ली है उसी ने रुलाया, साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया।

कहीं भूला याद आया, आह साथी कहीं भूला याद आया।

0: तो साथी कोई भूला याद आया, तू साथी कोई भूला याद आया।
1: बस सीमा जी क्या बात है। साथी फिल्म 1991 का ये गाना रिलीज हुई थी ये फिल्म, तो हमारे सिस्टम में इसके दो गाने पड़े हुए हैं, बाकी ये सारे गायब हैं।
2: चलिए मैंने गा दिया ना, यही।
1: हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, याद ताज़ा कर दी, बहुत शुक्रिया।
2: चलिए थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सीमा जी, बहुत अच्छा गाना आपने गाया, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, ढेर सारी तालियां सीमा जी के लिए। और दोस्तों क्या गाना इन्होंने गुनगुनाया साथी फिल्म से, और ढेर सारी तालियां इनके लिए। और अब तालियों की गूंज में ही खुशामदीद, वेलकम जी एनु कहेंगे जनाब हमारे प्यारे जनाब नदीम मंसूर साहब को। नदीम मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि।
1: कैसे हैं जनाब, कैसे हैं?
3: मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्पेशली जब आपकी आवाज सुनता हूँ ना तो हाय हाय क्या बात है, यहाँ मेरे दिल का जो बागीचा है वो भी खिल उठता है, और जो हमारा स्टूडियो का माहौल है उसमें भी हलचल पैदा हो जाती है जनाब।
3: जजाकल्लाह जजाकल्लाह। अभी तो ये दिन मिलाद पाक के दिन जा रहे हैं, महफिलें जा रही हैं
1: जी,
3: माशाल्लाह जी जी
1: जी जी।
3: तो ये है एक महिया
1: जी जी,
3: वो आपकी नजर और सबकी नजर करता हूँ।
1: जरूर जरूर जनाब।
3: कोई चावल

लवां दुख सारे भुल जांदे जदों तेनों वेख लवां। मीरपुर दी बस

दी एत बार ना कर मायावे दुनिया मतलब दी कोई कोल च दई मायावे जग पावे कुछ आखे ओ जग पावे कुछ आखे असा फुटना नहीं माया ओ जग पावे कुछ आखे कोई

0: बहुत शुक्रिया
1: आपका जो आप आए, और क्या बात है क्या बात है क्या, इतना प्यारा माइया जनाब, मजा आ गया, लुत्फ आ गया जनाब, बहुत शुक्रिया। बड़ी बेचैनी के साथ अगले आवर में आपका इंतजार रहेगा नदीम, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे नदीम मंसूर साहब, क्या माइया गाया इन्होंने जनाब, यादें ताज़ा कर दी, तो शुक्रिया आपका। और दोस्तों अब वक्त जो है वो कमर्शियल का हो चुका है, तो चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:50, यानी कि 12:50, और कमर्शियल का टाइम हो गया है, और लाइव कॉल का सिलसिला है जनाब। आप कोई कॉल मैं नहीं लूँगा जनाब, अब एक के बाद ही लूँगा, क्योंकि जो गाना प्ले करने जा रहा हूँ थोड़ा सैड गाना है, लेकिन बड़ा अरसा हुआ ये गाना सुना नहीं, तो इसलिए चाहूँगा कि मैं और आप सभी जो हैं इस गीत को जो है वो पूरा सुन लें, और उसके बाद ही जनाब फिर आप दोस्तों से मुखातिब हूँ, और इसलिए अगर कोई आने ना ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब ख़बरों के बाद ही मिलेंगे आप दोस्तों से, तो आप ख़बरों का इंतज़ार कीजिएगा, ख़बरों के बाद जुड़ जाइएगा हमारे साथ, और 2 बजे तक मेरा और आपका साथ है, और दो बजे तक लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत कुमार सानू की आवाज़ में होगा, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: खलिया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: आर यू अ बिजनेस लुकिंग टू मेक अ रियल difference across our region. The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
5: We love Sunrise Radio.
6: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। और दोस्तों ये आखिरी हिस्सा जो है ये भी लाइव कॉल का है, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ गई हैं, पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से जनाब चौधरी फरियाद साहब और ब्रेडफोर्ड से जनाब नदीम मंसूर साहब। तो इन दोस्तों से मिलेंगे और दीगर दोस्तों से भी मिलेंगे, ये होगा हिट ऑफ द आवर के बाद। तो चलेंगे जनाब सुनेंगे हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद बेलव्यू रेजिडेंसेस। डिस्कवर स्टनिंग 4, 6 and even 8 बेडरूम होम्स। कॉल 0127 428 8252।
2: सनराइज रेडियो, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अजीज की प्यारी सी आवाज में। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:11, यानी कि 11:01। तो जनाब, अब कमर्शियल का टाइम हो गया, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद फिर हम जनाब लाइव कॉल्स की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं जनाब पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से जनाब चौधरी फरियाद साहब, और ब्रेडफुट से जनाब नदीम मंसूर साहब। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

0: जी दोस्तों साथियों, ये सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों चलते हैं अब तालियों की गूंज में पाकिस्तान कश्मीर जुड़ई में, जहां जनाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी फरियाद साहब। ढेर सारी तालियां उन चौधरी साहब के लिए। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन। जी दोस्तों जी,
1: मौसम जी रात गुजरी है इतनी जबरदस्त बारिश हुई, हर रोज रात बारिश होनी है, सरगिने वेले अद्धी रात तो बाद।
0: अच्छा अच्छा,
1: रोज चंगी तगड़ी बारिश होनी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसलिए तो वैसे सिटका चले।
0: अच्छा अच्छा, वेरी गुड
1: जी,
0: वेरी गुड जी।
1: जो पिछड़िया जिड़िया कसरा है ना, वो बदल हुन कसरा किन्ना
0: हां नहीं हुन हुन कोई हफ्ता नती तारीख तक कोई बारिश नहीं होगी तुहाडे ना, नती तो बाद फिर सिलसिला शुरू होएगा।
1: अच्छा, अज जे ना राती कोई इतना कोई आंधी तूफान आया जे
0: बड़ी तूफानी बारिश थी। डर लगता सी
1: बया। चलो अल्लाह
0: ख्याल रखे। चलो बारिश
1: अल्लाह ने रहम,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 29 तारीख तक कोनी होगी, फिर कहोगे गर्मी है, हुन गर्मी है, नती तो बाद बारिश फिर होनी है। अच्छा जी
1: जी जी,
0: अल्लाह खैर करे।
1: बिजली वाले भी जो है ना, ये बदल है ना, एक दफा बारिश हो जाना तो फिर बिजली नहीं लगनी है, सारा पता खास करे असा की तोहफा लभी जाना।
0: सही है सही सही है।
1: चलो दिन गुजरी जाने, अमर भाई जान वो भी वेले आए सन, जो बिजली शिजली भी कोनी से लोगों ने करे लाते हैं ना, भी काटी होनी है।
0: सही सही।
1: चलो देखा रखना के दर्द दिल बन गई आजाद सारी।
0: वाह वाह वाह,
1: दर्द दिल बन गई आजाद सारी, होके जख्म ना सूर पे रसती है।
0: वाह,
1: आज भी असर से खेमाजान इथे अपना आप पे अंदरों दसती है।
0: वाह वाह, क्या बात क्या बात।
1: दीवे बाल अरमाना ने फिरा सीने,
0: हाय हाय,
1: दीवे बाल अरमाना ने फिरा सीने, करी वसल पल पल दस दिए, रखी कोल अमानत जावेद अंजम, याद माजी एक दिल विच वस दिए।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: फिर अखने ने के सुन लो जदों दा प्यार किता।
0: वाह,
1: सुन लो जदों दा प्यार किता, अपने आप दा खाना खवार किता।
0: ओहो,
1: मेरा कदर बेकदर ने यार किता, ओ कुमन केरियां पांदा जवाल आया।
0: ओ हो हो, क्या बात, बड़ी सच्ची बात।
1: तेरा नाकामी नसीब मेनू,
0: हां
1: हां, जिस तेरा नाकामी नसीब मेनू, धक्के मार दे सज्जन अबीब मेनू, मुख मोड़ के तक के गरीब मेनू, और मेरा किसे नु नहीं ख्याल आया। अच्छा, दिल किसे दा मैं दिखाया नहीं है, दिल किसे दा मैं दिखाया नहीं है, मैंने किसे ने अपना बनाया नहीं है, मैं सा गिरिया से किसे उठाया नहीं है, ऐसा गर्दश ना वक्त कमाल आया।
0: क्या बात क्या बात।
1: आखिया नहीं खुशियां गरीब दे वाले आईया, नहीं खुशियां गरीब दे वाले आईया, चोली विच उदासियां कुल पाईया, मैं वो रात तारीकी राहें मसाई, जिससे कदी ने शबे वसाल आया।
0: वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब।
1: आखिया फिर शिकवा करना है जुर्म दरबार उल्फत।
0: ओहो,
1: शिकवा करना है जुर्म दरबार उल्फत, कदी पुलना ये खता करना, उन्हें रावण दा जेड़ा मुसाफर होवे रे मुझसे राय खुदा कर।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: कोल उसनो बठा के प्यार दे नाल, कोल उसनो बठा के प्यार दे नाल, अनसनियत आख अदा करना, दुनियादारा दे उते इत्राम लाजम।
0: वाह,
1: दुनियादारा दे उते इत्राम लाजम, कम जिसदा है सदा करना, जेड़ा नाम जफा तो नहीं वाकफ। जेड़ा नाम जफा तो नहीं वाकफ, बड़ा जुल्म है उसना जफा कर।
0: वाह बहुत खूब। कसम
1: जिसने चुकियां वफा दिया।
0: वाह,
1: कसम जिसने चुकियां वफा दिया, कम उसदा है यारो वफा करना, अल्लाह वाले अल्लाह ना वास्ता है।
0: हाय हाय,
1: अल्लाह वाले अल्लाह ना वास्ता है, मिले वसल दीवाने दवा करना, बड़ा महंगा ते मुश्किल रहीम सौदा।
0: ओए होए,
1: बड़ा महंगा ते मुश्किल रहीम सौदा, कोई खातिर किसी जिंदगी तबाह कर।
0: वाह वाह, क्या बात क्या बात।
1: अमर भाई इंशाल्लाह,
0: नवाब चौधरी या मुजफ्फर साहब टैक्स कर देने पे के मोबाइल ते के वाह जी मजा आ गया, पिछले आवर भी तुसी कमाल की थी ये ते हुन भी कमाल की थी ये ते बड़ा शुक्रिया जनाब ओ कर देने दा थोड़ा।
1: चौधरी मुजफ्फर साहब,
0: चौधरी मुजफ्फर बिल्कुल
1: जी जी, उन्होंने मेरा स्पेशल सलाम भेजो, काफी दिन हो गए दरअसल व्हाट्सएप नहीं
0: वजह से नेट बंद ने ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ
1: ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਹੋ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਦਮੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ
0: ਆਹਾਂ
1: ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਰ ਫਰਾਗ ਦਾ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਇਜਰ ਫਰਾਗ ਦਾ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਜਰ ਫਰਾਗ ਦਾ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ ਬਾਗੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਬਾਦੇ ਬਹਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ
0: ਆਹਾਂ
1: ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਖੈਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਇਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀ ਖਮਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਹੋਇਆ ਗੁੰਮ ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਿਲ ਬਿਸਮਲ ਦਾ ਚੈਨ ਕਰਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ
0: ਆਹਾ
1: ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਸੁਖਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁੰਮ ਹੈ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ
1: ਬਹੁਤ
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ
1: ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ
1: ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ
0: ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਔਰ क्या बात है क्या बात है। और अब जनाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब। और मुदस्सिर कैनी साहब भी जुड़ गए हैं, उनको भी होल्ड कर दिया है। तो नदीम मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुने हो काफ़ी देर तो तुसी तुहानू होल्ड रखिया माजे चाहते हैं। मेरी जान जेड़ा तुसी पिछले आवर च माइया सुनाया ना आए हाय हाय हाली भी जनाब हलचल मची हुई है दिल विच
2: कोई चावल तुल जांदे हैं जी।
0: हां हां सही।
2: चलो एक और गीत है
0: जी जी।
2: अच्छा ए हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे
0: हाय हाय कि मनहर उदास था क्या बात
2: है
0: क्या बात करवानी फिल्म से
2: उन वादियां ले चलिए
0: हाय हाय क्या बात है क्या बात है।
2: चलो ये आपकी नजर
0: ए, मेरे दिल दी तर्जमानी कर दियो
2: फिर आए
0: हाँ
2: क्या बात
0: ठीक है सर ठीक
2: ओहो

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह क्या बात है नदीम मंसूर साहब, हाय हाय सदके जाऊं कसम से, इतना सुकून इतना मज़ा आया गीत ये सुनने में, कमाल कर दी आपने जनाब, कमाल कर दी, क्या बात क्या बात, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी नदीम मंसूर साहब, मज़ा ही आ गया गीत सुन के, ढेर सारी तालियां नदीम मंसूर साहब के लिए जनाब। और अब जनाब मुदस्सर कियानी साहब इस लाइन पे मौजूद है, मुदस्सर कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: और सज्जनों मखना मलाई दे पेड़े हो तुसी आज लाइव काले किधर आ गए हो,
2: बड़े टाइम इस बाद मैं आया, चलो तकिया चौधरी साहब ने की
1: अच्छा
2: मैं आया कि दो शेर मैं अपने पढ़ा था, लेकिन जे नदीम मंसूर भाई ने तो अद कर,
1: हाय हाय क्या मैं ना कमाल हो गई है, कमाल हो गई है जनाब, हाय हाय क्या बात क्या बात,
2: बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह, जिन्हें भी इसने ना बहुत ही अच्छा, कोई भी जरा ना हो शायरी करण चाहे हो गजल आखान बड़ी ना की क्या बात,
1: कमाल हो जाती है जनाब बिल्कुल
2: अच्छा,
1: बड़ा
2: तो दो शेर आखना सर
1: जी जरूर,
2: शुरू करना अल्लाह की जात से जो नहायत ही मेहरबान रहीम और रहमान है, शेरा के जो मोतमिन है तुझको अजियत में डालकर,
1: हुई हुई हुई हुई हुई हुई।
2: जो मोतमिन है तुझको अजियत में डालकर, वो शख्स तेरा है ही नहीं मत मलाल कर,
1: वाह क्या बात है गुलदस्तर साहब,
2: जो मोतमिन है तुझको हजियत में डाल कर, वो शख्स तेरा है ही नहीं मत मलाल कर,
1: आहा।
2: और खुश हो रहा है तुझको जो कीचड़ उछाल कर,
1: वाह वाह क्या बात क्या बात,
2: खुश हो रहा है तुझ पे जो कीचड़ उछाल कर, कब तक रहे रखेगा अपना गिरेबान संभाल कर,
1: वाह बहुत खूब,
2: खुश हो रहा है तुझ पे जो कीचड़ उछाल कर, कब तक रखेगा अपना गिरेबान संभाल कर, और एक दोस्त मेरे दुश्मनों के साथ जा मिला,
1: ओहो
2: एक दोस्त मेरे दुश्मनों के साथ जा मिला, लाजिम है अब बढ़ाना कदम देखभाल कर,
1: वाह वाह क्या बात है बहुत खूब,
2: और शेरा के आधे वफा में एक मुनाफिक के वास्ते,
1: ओहो
2: आधे वफा में एक मुनाफिक के वास्ते मैंने भी रख दिया था कलेजा निकाल कर,
1: ओए होए होए होए क्या बात है बहुत खूब मुदस्सर कियानी साहब,
2: और शेरा के एक मुद्दत की रजायत से कमाए हुए लोग,
1: हाँ हाँ
2: कैसे बिछड़े हैं मेरे दिल में समाए हुए लोग,
1: वाह
2: तलख गोई से हमारी तो परेशान ना हूँ, हम हैं दुनिया के मसाइब के सताए हुए लोग,
1: ओहो बहुत खूब बहुत खूब,
2: इस जमाने से मेरे यार कहाँ मिलते हैं अपने दामन में मोहब्बत को बसाए हुए लोग,
1: होए होए होए होए क्या बात है बहुत खूब,
2: तुझको ऐ शख्स कभी जीत की तन्हाई में याद आएंगे हम उलझत में गवाए हुए लोग,
1: वाह वाह क्या बात,
2: और लाश राक्षसों के ए पी नसीरुद्दीन नसीर साहब ना नसीरुद्दीन नसीर साहब ना कि दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठे हैं, दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठे, अलग बैठा हूँ तेरी दहलीज पे हूँ सबसे अलग बैठा हूँ,
1: सुभान सुभान अल्लाह,
2: दंग की बात कहे कोई तो बोलूं मैं भी, मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ,
1: सुभान अल्लाह क्या बात,
2: पर बस में अहबाब में हासिल ना हुआ चैन मुझे,
1: ओहो
2: बस में अहबाब से हासिल ना हुआ चैन मुझे, मुतमिन दिल हूँ बहुत जब से अलग बैठा हूँ,
1: वाह सुभान अल्लाह क्या बात,
2: और गैर से दूर हूँ मगर इनकी नगाहों से किरें, मैं अपने यार में इस दब से अलग बैठा हूँ,
1: वाह क्या बात क्या बात,
2: यही मसल है मेरा यही मेरा मकाम, आज तक ख्वाहिशे मनसब से अलग बैठा हूँ,
1: वाह बहुत खूब,
2: उम्र करता हूँ बसर गोशे है तनाही में,
1: वाह सुभान अल्लाह,
2: उम्र करता हूँ बसर गोशा है तिनाई में, जब से वो रूठ गए तब से अलग बैठा हूँ,
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब,
2: और शेर है कि मेरा अंदाजे नसीर अहले जहां से जुदा, मेरा अंदाजे नसीर अहले जहां से जुदा, सब में शामिल हूँ मगर सबसे अलग बैठा।
1: वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह।
2: ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर,
1: बहुत शुक्रिया। मैं कहता मदसर कहनी साहब कमाल कर दी आज आपने, कमाल कर दी कसम से, बड़ा मजा आया, बहुत खूब। मैं तो सोच भी नहीं सकता आप इतनी प्यारी शायरी भी कर सकते, बड़ा लुत्फ आया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर जनाब मदसर कहनी साहब, यूँ तो ये डेडिकेशन ही देते होते हैं और प्रोग्रामों में शमूलियत करते हैं, लेकिन आने लाकर शायरी आज पहली बार की, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब और गजाला जबीन बहना जनाब रोजदिल से, तो इनसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं।
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा था हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब मैनचेस्टर से भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब और रोजडल से प्यारी बहना गजाला जबीन साहिबा। तो तालियां की गूंज में मैनचेस्टर चलते हैं जहाँ चौधरी रुखसार अहमद साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
5: मेरे प्यारे भाई आमिर शहजाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड

0: रहमान साहब ढेर सारी तालियां उनके लिए और तालियों की गूंज में ही खुश हमदीद वेलकम जी एनू कहेंगे प्यारी बहन रज़ला जबीन को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसी हो बहना?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। और आपका क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम।
1: मैंने कहा मेरे पास टाइम है कि नहीं है, मैंने कहा जब रॉचडेल वो क्या उसका ब्रैडफर्ड और पाकिस्तान जुड़ा हो तो रॉचडेल की कोई जगह नहीं बनती।
0: नहीं नहीं नहीं, हर शहर अपनी अपनी जगह है।
1: मैंने कहा मैं बस वेट कर रही थी, मैंने कहा शायद कोई जगह बन जाएगी, पर बनी
0: बन गई है ना, क्यों नहीं बनी है। देखिए रॉचडेल जो है उसको पूरी दुनिया सुन रही है अभी,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह सारे सुनते हैं
0: जी जी।
1: और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम अलैकुम। लल्ला फरियाल आए थे, महबूब क्यानी साहब भी थे और एम खान साहब भी थे, नदीम भाई सब, और वाजिद भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम
0: जी जी।
1: और मेरे बाद और कोई है?
0: अभी अजान होने वाली है, महबूब अल्लाही साहब भी हैं ओल्ड पे।
1: अच्छा
0: जी,
1: कितनी देर टाइम है मेरे पास? मैं उतने उसी साथ
2: हमने अपने साथ को
0: जी। हेलो, ओ ये क्या हुआ? अच्छा जी जी, मेरी बहन आपके पास दो तीन मिनट हैं अभी?
1: अच्छा चल मैं पढ़ती हूँ, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह टाइम
0: जी।
1: सुनो तेरे लौट आने की दुआ अब नहीं करते।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: सुनो तेरे लौट आने की दुआ अब नहीं करते, खुद से खुद को हार जाने की दुआ नहीं करते।
0: वाह वाह बहुत खूब,
1: थैंक यू। मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी ना। तेरी जुदाई ने हर ये हुनर सिखाया दिया हमको।
0: वाह,
1: तेरी जुदाई ने ये हुनर सिखा दिया हमको, किसी के दर पे बिखर जाने की दुआ हम नहीं करते।
0: वाह वाह क्या वाह।
1: जो ख्वाब तेरी आंख से वाबस्ता कर लिए थे, उन ख्वाबों के संवर जाने की दुआ अब नहीं करते।
0: वाह वाह क्या बात।
1: उन ख्वाबों के संवर जाने की दुआ अब नहीं करते। रहा नहीं वो यकीन जो तेरी वफा पे, हाँ कभी किसी शराब पे मर जाने की दुआ अब नहीं करते।
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब,
1: थैंक यू भाई। किसी शराब पे मर जाने की दुआ अब नहीं करते। बिखर के खुद ही सिमटना है अपनी जात, लेता है हमने अपनी जात को।
0: वाह,
1: किसी सहारे के मिल जाने की दुआ अब नहीं करते।
0: वाह बहुत खूब,
1: थैंक यू। तेरे बगैर भी कट ही गई है उम्र बेकरार, किसी परिंदे के घर आने की दुआ अब नहीं करते।
0: बहुत खूब।
1: जो जख्म वक्त ने बख्शे वो अपने हो गए आखिर, हर एक दर्द मिट जाने की दुआ अब नहीं करते।
0: वाह वाह क्या बात।
1: अब इतना दर्द तो हासिल हुआ हमें जख्म खाकर, अब इतना दर्द तो हासिल हुआ हमें जख्म खाकर, एक खुशी में खो जाने की दुआ हम नहीं करते।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: थैंक यू। सुनो तेरे लौट आने की दुआ अब नहीं करते, खुद से खुद को हार जाने की दुआ अब नहीं करते।
0: बहुत शुक्रिया बहना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थी प्यारी बहना गजाला जबीन सभा, हरोई दिल से शुक्रिया इनका, ढेर सारी तालियाँ। और दोस्तों आप चलते हैं इसी के साथ ही जोहर की अजान सुनते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
3: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:46 यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 1, और कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ महबूब अलाई साहब, और हमारा और आपका साथ भी थोड़ा सा रह गया है जनाब। हमारे बाद आप सभी बेचैनी के साथ जिनका इंतजार करते हैं जनाब काशिफ का, वो आपके लिए मौजूद होंगे 2 से लेकर 5 बजे तक। तो थोड़ी देर उनका इंतजार कीजिएगा और हमारा थोड़ी देर के लिए साथ दीजिएगा। तो जनाब चलते हैं, अब सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों मिलते हैं और जनाब महबूब अलाई साहब को सुनते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों हमारे साथ जैसा कि कहा था जुड़े हुए हैं जनाब महबूब इलाही साहब, और जनाब उनके लिए ढेर सारी तालियां। जी महबूब इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं जनाब?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं?
0: अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे सर। बिल्कुल ठीक है जी। दुआ चाहिए भाइयों की। तो आज क्या लेकर आए हैं आप?
1: गजल है वो पेश करना चाहेंगे, और अभी सुना चौधरी रखसार को, चौधरी फरियाद साहब को, सीमा जी थी,
0: गुजाला जी थी,
1: उनको भी, और नवीद भाई सभी को, क्या नाम है उनका,
0: एम खान साहब
1: को भी सुना।
0: जी जी।
1: तो अब हमारी बारी, हम पेश करते हैं गजल।
0: जी जी।
1: कभी किनारा चौधरी मुजफ्फर हैं, चार तारिक जुल्फी हैं, और महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, भाई मेयर जवेद मीर साहब हैं, और सभी के नाम।
0: जी जी।
1: शायर लिखता है, दिल की बातों को जमाने से छपाया हमने।
0: वाह क्या बात है।
1: दिल की बातों को जमाने से छपाया हमने, अपने एहसास को खामोश बनाया हमने।
0: वाह क्या बात, क्या बात।
1: दिल की बातों को जमाने से छुपाया हमने, अपने एहसास को खामोश बनाया हमने।
0: वाह।
1: तेरी यादों ने कई ख्वाब सजाए दिल में। तेरी यादों ने कई ख्वाब सजाए दिल में, फिर भी हर दर्द को हंसकर ही निभाया हमने।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू। फिर भी हर दर्द को हंसकर ही निभाया हमने, राहे उल्फत में कभी धूप कभी छांव मिली। राहे उल्फत में कभी धूप कभी छांव मिली, हर कदम सब्र का चिराग जलाया हमने।
0: वाह वाह क्या बात है, क्या बात है।
1: हर कदम सब्र का चिराग जलाया हमने, वक्त बदला तो कई लोग बदलते देखे।
0: क्या बात।
1: वक्त बदला तो कई लोग बदलते देखे, अपना करदार मगर खूब निभाया हमने।
0: वाह वाह क्या बात।
1: अपना करदार मगर खूब निभाया हमने, आज भी दिल में उम्मीदों का दिया रोशन है। आज भी दिल में उम्मीदों का दिया रोशन है, हर अंधेरे को मोहब्बत से मिटाया हमने।
0: वाह बहुत खूब, बहुत खूब।
1: हर अंधेरे को मोहब्बत से मिटाया हमने, दिल की बातों को जमाने से छपाया हमने।
0: वाह।
1: दिल की बातों को जमाने से छपाया हमने, अपने एहसास को खामोश बनाया हमने।
0: वाह वाह।
1: अपने एहसास को खामोश बनाया हमने।
0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: आज के लिए इतना ही था।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आप जा रहे हैं और शहजादे साहब तशरीफ लाए आज बड़े बन ठन के, माशाल्लाह। खैर होवे
1: काशिफ भाई।
0: काशिफ आई तो पहचाना नहीं जा रहा। एक तो स्टूडियो में लाइट ही काफी है, ऊपर से इसने इतने ब्राइट कपड़े आज पहने हुए हैं, और क्या बात है, क्या
1: वैसे भी चमक दे,
0: क्या सज दज के आया आज। आगे भी आता होता है लेकिन जड़ी आज सज दज है। हाय हाय अल्लाह खैर करे।
2: आज डबल कोट
0: किया। अच्छा नागे नहान का डबल कोट किया। अच्छा क्या बात है। बहुत शुक्रिया महबूब
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है, ढेर सज कर लिया जनाब महबूब अल्लाह साहब के लिए। क्या शायरी की इन्होंने माशाल्लाह। आवाज़ तो इनकी बहुत ही प्यारी है, और बड़ा प्यार करने वाली शख्सियत भी है। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतना खुश होता हूँ काशिफ को देखे, और अब दिल करता है कि जनाब पहले आज जफ़ी नहीं दोनों भाइयों की हुई ना, क्योंकि जो है वो मैं महबूब इलाही साहब से जो है बातों में मसरूफ था, इस वजह से। तो जफ़ी डालेंगे तो सुकून आएगा।
2: आज दौड़ के जफ़ी लगा।
0: हाँ जफ़ी लगेगी तो मज़ा आएगा ना।
2: देखा तो ये जाना सा।
0: क्या बात।
2: इधर से मैं आऊँगा, उधर से आप।
0: हाँ सही है। तो दोस्तों मुझे अमर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो कल सुबह 11 बजे आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

अर्जियन वेलकम, खुश आमदीद। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, घर में है, मकान में, सड़क पे, खुले मैदान में। गैरों के आसपास मौजूद हैं या बैठे हैं आप अपनों के दरमियान में, मैं हूं आपका अपना काशिफ, आपके लिए हाजिर खिदमत यहां पे आपके अपने सनराइज रेडियो पे। जी जनाब, सनराइज रेडियो को आप सुनते हैं 100.6 एफएम और 103.2 एफएम के जरिए क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर।

अगर सुन रहे हैं आप दुनिया भर में हमें सनराइज रेडियो .fm के जरिए गूगल पे जाके सर्च करके तो आपने हमें ढूंढ लिया। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और शुक्रिया का सिलसिला चल निकला है। तो एक ही साथ सारे के सारे जो शुक्रिया के आदाब हैं ना, वो पूरे करते हैं शुरू में ही। तो शुक्रिया अदा करना है जनाब हमें आमिर भाई का। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका भी, और बड़े दिल से, बड़े चाव से, बड़े प्यार से आप हमें वेलकम करते हैं, इसके लिए क्या कहें, कुछ नहीं कहते हैं। सुनने वाले भी सियाने हैं और आपको तो मिलके हम सियाने हो जाते हैं, एक जफरी ही काफी है। तो इसलिए जनाब बहुत बहुत ही प्यार से, एहतराम से आने वाला गीत आपके लिए भी होगा, क्योंकि आपने हमारे सामीन का दिल बहलाया बड़े ही प्यारे अंदाज में। तो इसलिए जो प्यारे लोग होते हैं, जिनका दिल खूबसूरत होता है जैसे आप सब हैं, जी जनाब आप में कोई बात तो है जिसकी वजह से हमें जब लोग देखते हैं ना स्टूडियो की तरफ आते हुए, तो कहते हैं कोई दीवाना है, कोई पागल है। लेकिन है किसके पीछे, किसके लिए ये पागल है, किसके लिए दीवाना है? कोई बड़ा खास होगा, कोई बड़ा प्यारा होगा। तो हम जनाब उनकी नजरों में समझ जाते हैं, देख के उनकी आंखें क्या बोल रही हैं। क्योंकि जनाब आप हैं इतने प्यारे। अब मेरा दिल करता है, क्योंकि मुझे जल्दी होती है स्टूडियो में आने की आपके लिए, वरना मैं रुक के हर नजर का जवाब देता आपकी जगह, उनको बताता कि हम दीवाने आपके लिए क्यों हैं, पागल आपसे मुलाकात के लिए क्यों हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं कि आपसे ज्यादा अच्छा

0: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74735 043.

0: जनाब खान साहिब आपकी कॉल सर आंखों पे बहुत बहुत शुक्रिया और ये गीत आपके नाम होगा क्योंकि आपको ऐसे गाने अच्छे लगते हैं तो हमें पता लग जाता है जनाब जो रेगुलर कॉल्स करते हैं ना तो उनकी चॉइस का पता लग जाता है बात ज्यादा हो या ना हो लेकिन एक ताल्लुक बन जाता है जनाब वेलकम बैक कहते हैं आपको एक बार फिर से और ब्रेक के बाद आपने जो गाना सुना ना दिल्ली वाली बिल्कुल जनाब दिल्ली वाली आई होप दिल्ली वाली भी सुन रही हो बॉम्बे वाले भी सुन रही हो यूके वाले भी सुन रहे हो पाकिस्तान वाले भी सुन रहे हो और जनाब ये गाना था खास तौर पे आयशा जी ने बिल्कुल आयशा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपने कहा काशिव गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि जब आयशा जी को गुस्सा चढ़ता है तो मैं बड़ा घबराता हूं सर्दी में भी मुझे पसीने आते हैं तो जब उन्होंने था कहा ना कि गुस्सा चढ़ा हुआ था अब वो हंस रही होंगी उम्मीद करता हूं उम्मीद पे दुनिया कायम दायम है तो जनाब मैंने पूछ लिया मैंने कहा जी क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ था कौन है वो जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है किसने रिस्क लिया आपके साथ जनाब ये रिस्क किसने लिया आपको गुस्सा चढ़ाने का तंग करने का क्या जान प्यारी नहीं उस बंदे को तो उन्होंने कहा छोड़ो तुमने अभी अभी शो शुरू किया है बाद में बताऊंगी ना कहती है पर ये बात ठीक है कि मुझे अब तुमसे बात करने के बाद ना गुस्सा ठंडा पड़ गया है ये अच्छा लगा मुझे आपका गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं आयशा का तो हो गया अपना बताया या फिर संडे वाले दिन आपके गुस्से की छुट्टी होती है ना भी छुट्टी हो अगर आपको गुस्सा चढ़ा है तो मुझे गौर से सुनिएगा आंखें बंद करके हाँ अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर आंखें बंद ना कीजिएगा अगर कामकाज पे हैं कहीं पे फिर भी आंखें बंद ना कीजिएगा चाय पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं फिर भी आंखें बंद ना कीजिएगा नवाला मुंह में जाना चाहिए चाय का गुण मुंह में जाना चाहिए ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो काम खराब है आंखें बंद करने की वजह से वैसे चिल करके सुन रहे हैं रिलैक्स बैठे हैं तो फिर आंखें बंद करके सुनिएगा मुझे तो फिर देखिएगा आपका गुस्सा बिल्कुल चूमंतर हो जाएगा और जादू की जब भी ये जोर से आया आपके लिए वर्चुअल जो होती है ना वर्चुअल जादू की जफी ये आपके लिए है सब सबके लिए और जनाब उन्होंने हमारी तारीफ की या बिस्ती की हमें फर्क नहीं पड़ता आयशा ने उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी बिल्कुल मेरी बातें सुन के तो गुस्सा ठंडा हो जाता है मासूम सी क्यूट म्यूट सी बातें होती हैं सादी सी तो उन्होंने कहा तुम और सादे आधी दुनिया को तुमने घुमाया हुआ है तो मैंने कहा तू बाकी आधी का क्या बना कहती है बाकी आधी को तुमने मरीज बना दिया है आधी को घुमाया है बाकी आधी को मरीज बना दिया है तो ये किस चीज का मरीज मैंने बनाया है ये उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उनके जो मूड की वो जो ट्रेन थी ना मूड की ट्रेन वो पटरी से उतरने लगी थी तो मैंने कहा गुस्सा कहीं और पे चढ़ा हुआ है तो ये ना वो मेरे पे उतर जाए तो मैंने फिर ज्यादा सवाल इसके बाद नहीं किए मीन टाइम आपको लेके चलते हैं फ्री में कहीं
1: फलक तक
0: लेके चलते हैं
1: फलक तक चल
0: पर लगाएंगे आपको
1: फलक तक चल साथ में
0: मिलके उड़ेंगे
1: साथ
0: सैरें करेंगे सैरें

नाव कंगना तेरा नी सानू करे इशारे। अरे वाह जानवी आप हैं और चांदनी है जनाब। चांदनी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने शिकवा किया, आपने गिला किया। और जनाब आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे मैं बात करना चाहता था लेकिन क्या करें, टाइम थोड़ा था। आप दोबारा कॉल मुझे कीजिएगा और बाकी अपनी फ्रेंड्स से भी मेरी ज़रूर बात करवाइएगा। आप कहती हैं कि जी बहुत टाइम के बाद काशिफ आपको कॉल की, आपने पहले तो मेरा तरह निकाल दिया, आपने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं मान गया, क्या करूँ सीधा साधा सा। फिर आप हंसी और आपके साथ और भी हस्तियाँ आपके आसपास, जो क्या बात है। फिर आपने कहा नहीं काशिफ क्या हो गया,

सच बताऊं तो काफी टाइम के बाद सुना और अच्छा लगा और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं आप, आते हैं तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आती हैं। तो मैं कभी कोशिश होती है हमेशा अपना शो मिस, आपका शो मिस ना करूं, लेकिन क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं और शादियों में काफ़ी बिजी रहती हूं, तो जब कभी मैं थोड़ा सा इजी होती हूं तो मुझे पक्का पक्का याद होता है कि काशिफ संडे आता है तो उसको सुनना है। तो आपने गाना कहा कि कोई सा भी गाना लगा दो, ठहर जाओ, मैंने शरारत आ गई है जी। अच्छा ये फिर वही बात आ गई ना, जो भाई होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं, उनको आप पीछे कर देते हैं, पता है कोई वजह होती है। अब ये मैं किसको पीछे कर रहा हूं, ये सोना सा मेरा भाई था जिसके लिए मैंने गाना लगाना था, उन्होंने पहली बार हमारी तारीफ की, नहीं पैसे हमेशा तारीफ करते हैं, आज उन्होंने डिफरेंट तारीफ की, उन्होंने कहा मैं अपने भरा नूं आज पहली बारी वेखिया, हाय कहने वेखिया तो मैं वेखता रह गया। तो मैंने कहा भाई भाइयों को, भाइयों की निगाह से जब भाई अपने भाई को देखते हैं तो मेरे जैसा हकीर फकीर माड़ा सा बंदा भी खूबसूरत लगता है। तारीफ बाकी रब की है, रब ने सभी को बनाया और जिसने खालिक ने सबको बनाया तो वो तो हर शह खूबसूरत है, इंसान तो है ही एक खूबसूरत तखलीक है, अशरफुल मखलूकात है, लेकिन उसकी हर एक मखलूक, हर एक शह, हर एक कारीगरी खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा ना जी नहीं है, अज असी तुहानू पहली बारी वेखिया ते बड़ा चंगा लगा है। तो और बहुत कुछ आपने कहा, वो आपके जज्बात हैं अपने भाई के लिए, बहरहाल आपकी नज़र मैं फिर से कहूँगा, आपकी नज़र खूबसूरत है, आपका देखने का अंदाज खूबसूरत है। तो ये गाना आपके लिए लगाना था लेकिन विच आ गई चांदनी। चांदनी है, जानवी है और उनकी सारी जो गैंग है इस वक्त। अच्छा चांदनी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसे खराफात आती हैं, बिल्कुल चौधरी रुखसार भाई की बात हो रही है, और चौधरी रुखसार भाई थोड़ी गल्ला हूँ बाद ही, तुसी पीछे हो जाओ, लेडीज फर्स्ट। तो गाना भी थोड़े ना वही लाना, मैं सोना कितना सोना, खूबसूरती की बात हुई है तो आप ज्यादा खूबसूरत हैं इसलिए आपका अंदाज खूबसूरत है, आपकी नजर खूबसूरत है, पहले गाना आपके लिए होगा ये वाला, लेकिन वो गाना दोस्तों के नाम, भाइयों के नाम बाद में, लेकिन पहले चांदनी इतने अरसे बाद हमें कॉल की आपने। लेकिन अच्छा चांदनी सवाल है एक, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप कहती हैं शादियों में बिजी होती हैं, तो चांदनी आप यकीनन वो जो आप अपना आपका आर्ट है, आप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप दुल्हन तैयार करती हैं जो भी, या दुल्हन की सहेलियों को तैयार करती हैं, तो मुझे तो लगता है ख्वातीन सारी बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनको तो मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, पर आप कहती हैं कि अच्छा ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल मेरा और है, पता है इस सवाल में से सवाल निकलते आ रहे हैं, ये मेरा यही हाल है बिल्कुल, इसी वजह से जिनको मैं अच्छा लगता हूँ इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से अच्छा लगता हूँ, और जिनको अच्छा नहीं लगता उन्होंने अपने अंदर के एक बच्चे को ना, मासूम को, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसको मार दिया आपने, इसलिए आपको ये बातें अजीब लगती हैं। जिंदा करें उस बच्चे को ना, उसकी संगी कोटे। अच्छा तो चांदनी आप ये बताएं कि जब आप जाती हैं शादियों पे तो वो आप दुल्हने तैयार करने के चार्ज करती हैं, ख्वातीन का मेकअप करने का, तो खाना आपको खाना मेरी नज़र खाने पे है, तो खाना फ्री में मिलता है वहाँ पे आपको, या उसका मतलब वो आपको खाना वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं, ये आपने मुझे कॉल करके दोबारा बताना है, क्योंकि आप एक किस्म की जो शादियों पे इनवाइट होते हैं गेस्ट्स वगैरह, तो आप भी तो इनवाइट ही हुई ना, बेशक आप वहाँ पे अपने काम के लिए जाती हैं या जो भी है, तो रोटी थोड़ी फ्री होती है या वो रोटी आपको नहीं पूछते हैं, या पूछते हैं, कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं, आपके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, या फिर एक और सवाल है। तो देख मुझे, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इंतजार करती हैं कि वो जो शादियों पे आवाज आती है ना, वैसे आजकल तो मॉडर्न दौर हो गया है, शादी हॉल आ गए हैं, पहले पहले मुझे याद है बचपन में ना एक आवाज आती थी रोटी के टाइम पे, याद है आपको,

वो आवाज याद है आपको, उसके बाद बंदा बंदा नहीं रहता था, खवातीन खवातीन नहीं रहती थी, इंसान इंसान नहीं रहते हैं। मतलब एक ओदम मच जाता था कुर्सियों पे फलांग के, टेबलों के ऊपर से फलांग के, मैंने देखा हुआ है ये ऐसे, मतलब ना जो जिसके हाथ आ रहा है, बाज़ औक़ात तो चीखो पुकार की भी आवाज़ आती थी, कई लोगों की ख़वातीन की तरफ से ना चीखों की आवाज़ आती थी, ख़वातीन का जो सेक्शन होता था ना जहाँ पे ख़वातीन बैठी होती थी, मासूम बच्चों की चीखें निकल जाती, जैसे मैं मासूम वहाँ पे, चीखें निकल जाती थी, बच्चों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती थी। अच्छा वो आवाज़ क्या थी जिसके बाद क़यामत का समा होता था? रोटी खुल गई जे, आ जाओ रोटी खुल गई है। याद है ये आवाज। उसके बाद क़यामत बर्पा होती थी। चांदनी जब ये आवाज आती है शादियों में, रोटी खुल गई है,

0: करो।
1: हो सके अगर हो सके, जबरदस्ती नहीं है। कहते हैं प्यार में, मोहब्बत में, चाहत में, खलूस में जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर आपका दिल चाहता है, मासूम सा दिल आपका, अगर इस काशिफ के हक में गवाहियां दे रहा है, तो फिर जनाब अपना जो है ना आज के दिन का एक पहर जो है ना, एक पहर ज्यादा नहीं मैं कहता, एक पहर मेरे नाम करें। और आप बड़े खूबसूरत हैं, वैसे आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। रुखसार भाई कहते हैं, काशिफ भाई आप को पहली बार देखा और आपने आगे कहा कि आप दो बार नहाए हैं, तो आपको तो एक बार भी नहाने की जरूरत नहीं, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, तो माशाल्लाह कहा करें। और भाइयों को भाई प्यारे लगते ही हैं, तो रुखसार भाई को हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया क्योंकि वो हमारे जिंद जान है, जानू है, भाई है ना। तो जनाब उन्होंने कहा वजह बताएं, दो बार क्यों नहाए हैं, एक बार तो नहाना समझ आता है। मैंने फिर कहा सब कुछ बता दूं, हाथ पांव गड़वा दूं, क्या करते हैं भाई। अच्छा जनाब ये गीत उनके लिए होगा जिन्होंने हमारी तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ रब की। लेकिन जनाब बात करेंगे हम आरव भाई की। आरव भाई बहुत शुक्रिया, आप आए गोल पे, आपने जनाब चढ़ाई कर दी, बच्चा देख के जनाब आपने बड़े होने का फायदा उठाया और हमने उठाने दिया। हमने कहा हमने कहा उठा ले फायदा, कोई नहीं हम नहीं उठाने देंगे आपको फायदा, तो कोई गैर उठाने देंगे आपको फायदा, कोई उठाए उठाए फायदा जनाब। हम तो ये ऐसे ही जनाब बाहें खोल के जादू की जफ्फी लेके बैठे हैं कि कोई आए तो सही, चम्बड़ ही जाएंगे जनाब हम आपको। और वो भी भाई हमारा आरव, कमाल होगी है जनाब। अरे वो आए पहले गिला शिकवा लेके, तो हमने साथ ही उनको जनाब ऐसी मीठी मीठी बातें की तो वो हंसने लग पड़े। तो आरव भाई के साथ जनाब इस वक्त अकरम भाई, लियाकत भाई, जावेद भाई, शराज भाई सारे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं मिलके हमें। मेरे ख्याल में गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, इन्ने बंदे गड्डी पूरे आ जाते ने, किन्ने बंदे सन, आरव भाई एक, अकरम भाई दो, लियाकत भाई तीन, जावेद भाई चार, ते शराज भाई पांच। आहो हो लै तुसी पाकिस्तान जाओ, उत्ते छे छे बंदे मोटरसाइकिल ते बैठे होंदे ने, ते फिर गड्डी है काशिफ है ना, काशिफ सादा, मैंने कहा था मैं सादा हूं, सीधा भी हूं, जलेबी की तरह। चलो जी अभी सोनिया नाराज होगी, चलो कोई नाराज होगा तो मनाने का अपना मजा आएगा ना। आयशा भी बड़े गुस्से में है, वो दोबारा आई है। और जिन लोगों की कॉल नहीं मिली जनाब 01274306666।

0: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
1: Sky News Centre at 3. Three teenagers are among five people who died when their car was driven the wrong way down the A66 on Teesside, killing two police officers. The VW Passat occupants were aged 16, 17, 18 and 23. PC's Matthew Blades and Tom Clough's patrol vehicle was hit near Middlesbrough. Local MP Anna Turley says the whole community is in shock.
2: The most important thing I think for all of us now is not to speculate on the build up to this or any of the incidents around this. Cleveland Police will be working with the IOPC and we will hear all that in due course. And I think it's really important that today the priority is to allow the families to grieve.
1: A power cut in Birmingham's meant virtually all cross-country trains are cancelled. Some other operators are accepting tickets on their routes. Serious sexual and violent offenders in England and Wales could be confined to new restriction zones once they leave prison. It's hoped that would stop victims from coming into contact with their attackers. Two men aged in their 20s and 50s arrested in connection with the stabbing in County Antrim have been released. The Police Service of Northern Ireland were called to the Glenville Park area of Newton Abbey just before 8:30 yesterday morning. One man's in hospital. In sport, Manchester City's opening Premier League game against Bournemouth isn't going to plan. Live now to Peter Smith at the Etihad.
3: As the away team lead by a goal to nil, this Enzo Maresca's first Premier League game since succeeding Pep Guardiola. And his side at times have been wide open at the back, and Bournemouth exploited those defensive vulnerabilities when Evan Ilson and Rayan paved the way for a first-time finish from an unopposed Tavernier. Half-time, City nil, Bournemouth 1.
1: Aston Villa are making an even worse start at Brighton. They trail 4-0 and have a player sent off. Newcastle take on Liverpool at St James's Park later. And Max Verstappen says he's okay after a heavy crash at his home Dutch Grand Prix. The four-time Formula One world champion went into the barriers on the second lap. That's the latest. I'm AJ Walsh.
4: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.
5: जनाब उधार मुझ पे बहुत सारा चढ़ गया है मैं हूं आपका अपना काशिव बिल्कुल जनाब सनराइज रेडियो पे आप सुनते हैं हमें नहीं मैंने बताया नहीं मैंने पूछा है सुनते हैं ना मुझे जनाब आपकी कॉल्स आ रही हैं आपकी मोहब्बत है आपका प्यार है बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स मुझसे मिस हो गई और एक ये वाला उधार है कि जो जिन दोस्तों से मेरी बात नहीं हुई वो दोबारा कॉल कर सकते हैं अगर कोई हांडी रोटी करते हुए कॉल कर रही थी मुझे तो जब आपकी हांडी तैयार हो जाए और रोटी तैयार हो जाए तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा मैं खाने नहीं आऊँगा आपसे बात ज़रूर हो जाएगी और जनाब जिन दोस्तों से बात हुई है उनका जिक्र करेंगे ये गाना उनके नाम करेंगे अच्छा जी हमारी सबसे पहले जिक्र करते हैं आंटी दीवा जी की आंटी दीवा कहती हैं हाँ कहते हैं अगर आप पंजाब साइड पे जाएं या मीरपुर में भी आज़ाद कश्मीर में भी कुछ गांव साइड्स पे अभी भी लोग शादी हॉल बुक नहीं करते हैं अभी भी वो ट्रेडिशन देसी मॉल काशिव वहाँ पे मिलता है और आप कहती हैं जब वो पाकिस्तान जाती हैं तो वहाँ पे अभी भी आवाज़ आती है रोटी खुल गई जे आए तो बड़ा मज़ा आता है और जनाब आंटी दीपा को हम याद आए हैं और हमें आंटी दीपा याद आई बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आंटी दीपा इनकार कर गई हैं एक बात से कहती हैं कि काशिफ तुम सादे नहीं हो बाकी सब कुछ हो लेकिन सादे नहीं हो चले अच्छा जी चांदनी एंड ग्रुप जनाब चांदनी और उनका जो गैंग है उनकी दोबारा कॉल आई और इस बार आपने जानवी से बात नहीं कराई आपकी बाकी फ्रेंड्स से बात हुई जनाब अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप सुन रही हैं एंजॉय कर रही हैं आपने कहा गाना सबने एंजॉय किया और जनाब जिस तरह से आपने बताया कि आपने एंजॉय किया वो हम सबको नहीं बताएंगे सब कुछ नहीं बताएंगे ना हाथ पांव नहीं कटवाएंगे जनाब आपने कहा कोई मस्ती वाला गाना और लगाओ, और ये गाना आपने कहा काशिफ आपके नाम भी होगा हमारे साथ साथ। जनाब अल्लाह माफ करे, हम आपके लिए यहाँ पे आते हैं, अपने लिए थोड़ा आते हैं, अपने वास्ते थे गाने सुनते रहिए पूरा वीक। अच्छा जनाब रुखसार भाई भी हमारे साथ दोबारा लाइन पे आए हैं, आयशा जी दोबारा आई हैं। आयशा जी कहती है काशिफ क्यों तुम्हारी कॉल नहीं मिलती है और इंतजार करवाते हो, किधर गायब हो जाते हो। तो मैंने कहा जनाब मैं कोई रगड़ने वाला जो चिराग होता है, मैं चिराग का जिन थोड़ा हूँ, मैं तो काशिफ हूँ, इंसान हूँ। हाँ मेरी बातें हरकतें इंसानों वाली नहीं है थोड़ी बहुत, लेकिन आप यकीन करें दिल बड़ा करें मैं इंसान ही हूँ, वो जादू के चिराग वाला जिन नहीं हूँ जो गायब हो जाऊंगा। खैर जनाब आपने कहा कि काशिफ गाना अच्छा लगा हमको जो आपने धूम धड़क्के वाला गाना लगाया। अच्छा आप भी मेरी जुबान बोलना शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी गौर किया कभी आपने आयशा जी? ये धूम धड़क्का ये मैं कहता होता था या मैंने भी कहीं से सुना ही होगा? स्कूल में तो सिखाते नहीं थे इस तरह के लफ्ज। चले यानी वे धूम धड़क्के वाला गाना, और आपने सवाल किया, आपने कहा जी काशिफ खाते क्या हो, तुमने मेले पे जाना था लास्ट संडे तो एंजॉय किया वहां पे, वो जो BD3 में मेला था। मैंने कहा नहीं जनाब, एक तरफ मेला था शाम को और एक तरफ मुझे इनविटेशन थी रोटी की, खाने पे इनवाइटेड था मैं। तो वो बहुत हंसने लग पड़ी, आगे मैंने बात ही नहीं की। वो कहती है मुझे पता तुम किधर गए होगे, एक तरफ खाने की इनविटेशन हो रोटी हो और एक तरफ मेला हो, मुझे पता है तुम रोटी की तरफ गए होगे है ना। मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझे जानना पहचानना शुरू हो गई हैं। तो जनाब वाकई हम मेले की तरफ नहीं गए, हम खाने की दावत पे चले गए। बाकी जरूर उदार हो गई जनाब, दावत आपकी आयशा जी, आपने मुंह से बोल के कहा है तो फिर आपको दावत देनी पड़ेगी, गाल ही मोक गई। टाइम आपने भी कहा कि धूम धड़क्के वाला गाना, तो ये गाना चांदनी एंड गैंग उनकी सारी फ्रेंड्स के नाम, और ये गाना आयशा के नाम, यही गाना जिन दोस्तों की कॉल्स मिस हो गई उनके नाम। और आयशा ने एक मशवरा भी दिया, आप मशवरा नहीं देते हैं मुझे, उन्होंने मशवरा दिया है काशिफ कॉफी ज्यादा ना पिया करो। मैंने कहा क्यों? कहती है रंग काला हो जाएगा। तो काले भी तो दिल वाले होते हैं, इंसान होते हैं, काला रंग तो होता ही बड़ा मुश्किल और अट्रैक्शन वाला होता है। हमसे पूछे ना जिनके चिट्टे रंग हैं, काश थोड़ा सा रंग सांवला होता तो कयामत आ जाती जमाने में। अल्लाह माफ करे।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 3:11। अच्छा जनाब, ये गाना मेरी मर्जी का है और मर्जी के लिए हमें हमारी मर्जी पूछी। आज पहली बार आपने कॉल की। हमने कहा ये नाम सुना हुआ है, आपने कहा नहीं जी। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है आपसे पहले बात होती रही है। कहते हैं नहीं जी, आपका नाम भी बड़ा जो है ना जाना पहचाना और आवाज भी बिल्कुल वैसी ही। अब आप मान नहीं रही हैं और हमने भी क्या करें, बीइंग अ जेंटलमैन हमने भी कहा नहीं कि नहीं जी आप हमें मजीद सादा बनाने की कोशिश कर रही है। हम सादे हैं, इतने नहीं हैं। बहरहाल शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ सुनी, आपसे बात की। तो जैसे ही बात की हमने कहा बड़े अरसे के बाद, खैर वो आज कैसे रास्ता भूल गई। तो आगे से उन्होंने हमें बड़ा शर्मिंदा किया, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो पहली बार आपको कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आपकी आवाज हम पहचानते हैं, नाम भी जानते हैं। कहती नहीं, फिर आपने बड़ी कस्में उठाई और मैंने कहा कैसे हो सकता है, एक नाम एक जैसी आवाज दो लोगों की कैसे हो सकती है। तो आपने कहा कुछ भी हो सकता है काशिफ होने को। फिर आपने हमसे बड़े सवाल किए, आपने कहा कौन आपको याद आया, वो कौन है जिसकी आवाज आपको याद है। हाय, फिर तो असी फड़े गए ना। मैंने कहा नहीं, बहुत सारे कॉलर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉल्स करते हैं और काफी अरसे तक जब नहीं आते हैं तो फिर उनकी आवाज हमें याद रहती है। ये एक कुदरती अमल है, इसमें हमारी कोई चलाकी नहीं है, फनकारी नहीं है, जो है वो है ना। बहरहाल जी, ये गाना फिर हमें याद आया। इसलिए याद आया, कभी कभी आप भी अपनी मस्ती में कोई गाना गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते होंगे और फिर आप बाद में सोचते होंगे कि ये गाना मैंने क्यों गुनगुनाया। ऐसे ही कभी अकेले बैठे हुए, कभी काम करते हुए किचन में या काम पे जॉब पे कोई गाना आपकी जुबान पे आ जाए किसी की वजह से या एवं ही, तो जनाब आज ये हादसा हमारे साथ भी हुआ। आज स्टूडियो में आने से पहले जनाब हम ये गाना पता नहीं क्यों गुनगुनाने शुरू हुए, फिर गुनगुनाते रहे। फिर हमने गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत आईना देखा। फिर हम मुस्कुराए, आईने की तरफ देख के नहीं, कुछ लोग हमें याद आए, आंखों के सामने आए। देखा हम आईने में खुद को रहे थे, लेकिन दिखाई हमें कुछ और लोग रहे थे। तो जो लोग दिखाई दे रहे थे, कहते हैं पहले वक्त में मोबाइल नहीं होता था, पोस्टमैन नहीं होता था, तो कहते हैं वो एक टेलीपैथी टाइप की कोई हिस होती है इंसान में। तो पहले वक्तों में दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए गाड़ियां नहीं होती थी, मोटर बाइक्स नहीं होते थे, साइकिलें भी नहीं होती थी, पता है, घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, तो इस तरह की सवारियां होती थी। तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ना बड़ा टाइम लगता था, बड़े दिन लगते थे, बड़े महीने लगते थे। किसी की शादी पे आपको जाना हो, किसी के घर काकी काका होता था, कोई खुशखबरी होती थी अपनों को इतला देने के लिए, जनाब कोई जरिया नहीं होता था किसी को शादी पे अपनों को बुलाने के लिए, अपनी खुशी में शामिल करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता था। तो एक सोर्स होता था, कहते हैं कि आप अपने दिल में, अपने मन में उस इंसान को याद करते थे। तो जब उसको याद करते थे ना लोग, तो दूसरे इंसान को कोसों हजारों मील दूर उस इंसान को पता लग जाता था कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे दीवाना वार पुकार रहा है, किसी को मेरी जरूरत है, किसी को मेरी बड़ी याद आ नहीं रही, बड़ी याद सता रही है। तो फिर लोग इस तरह चले आते थे हजारों मील सैकड़ों मील दूर से, फासले तय करके कई दिनों का महीनों का जब आते थे तो वो लोग उनको बताते थे, जिनके घर वो आते थे ना अपनों से मिलने, बताते थे कि हमने इतने महीने पहले आपको याद किया था इस वजह से। तो वो इंसान कहता था मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे आप याद कर रहे हैं, कोई आपको मेरी जरूरत है। तो मैं पता नहीं क्यों मैं चला आया। तो इसी तरह जनाब कभी वो लोग जो आईने में आप खुद को देखें मगर दिखाई आपको वो लोग दें जो आपको पता नहीं क्यों याद आ रहे हो, मोबाइल पे कॉल्स पे बात हो ना हो, मैसेज पे टेक्स्ट मैसेजेस हो या ना हो, लेकिन क्या अभी भी आपको पता लगता है जब हम आपको याद करते हैं, जब जब आपकी याद हमें सताती है, आपकी याद हमें आती है, या फिर ये काशिफ की ही दीवानियत है, पागलपन है, या फिर मेरे साथ ही होता है और आप जमाने की रौनक में खोए खोए रहते हैं और ये पागल काशिफ आपकी याद में जो

0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
4: जी जनाब, आपको फिक्र हो या ना हो, हमें तो फिक्र है ना। जनाब आप सुन रहे हैं काशिफ को सनराइज रेडियो पे। सीमा आपकी कॉल का ठीक टाइम पे आप, मैं कहता हूँ इसको कहते हैं क्या कहते हैं, मैं भूल गया। अच्छा इसको कहते हैं काम नू बन देता है। एक होता ना काम को चुक देना, वो तो चौधरी रुखसार भाई चुकेंगे अभी। काम को कहते हैं बरी जा रहा हूँ काम चुकने, मैंने कहा केड़ा काम चुकने जा रहे हो बरी, कहते जी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बरी जाके तो चौके छक्के मारांगे, लेकिन पता हेडफोन ला के चौके छक्के मारांगे। मैं कहा ये कड़े चौके छक्के ने जड़े असी नहीं सीखे, कहते भाई जान हेडफोन लावांगे तुहानू कन्ना दे विच सुन सुन के, पहले तो फील्डिंग करांगे फिर चौके छक्के मारांगे, तुहानू नहीं छड़ना असी बिल्कुल। जे कैच शैच कोई आया तो फील्डिंग कर दें, कैच छड़ देंगे ओदी कोई गारंटी नहीं, तुहानू नहीं छड़ांगे असी, सुनना क्रिकेट होंदी रहेगी, तुसी रोज़ रोज़ तो नहीं आते ना, आ गल तो ठीक है। तो जनाब तुसी क्रिकेट खेडो तो नाल सानू हेडफोन ला के तो सुनते रहो, तो एक कान चू टूटी कढ़ लो, यह ना तुहानू अगले आवाज़ा मारते रहन जनाब, इधर होवो लैफ्ट ते होवो राइट ते होवो, लोंग ऑन ते जाना है लोंग ऑफ ते जाना है, तो तुसी जनाब कन्ना सानू सुन सुन के ते ना इधर दे रवो ते ना उधर दे, कहने नहीं जी नहीं तुहानू सुनना नहीं छड़ना असी सुनोंगे ते टका के सुनोंगे, ते एनू कहंदे ने जनाब काम नू चुकना। ते दूजे पासे जनाब सीमा जी दी गल कर रहे सां ते पंजाबी च क्यों गल कर रहे हूँ, जनाब सीमा जी ने आगे काम को बन दिया जनाब, उन्होंने कहा काशिफ मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरे तो कलेजे को जाके ठंड पड़ी, लेकिन दिल पे जाके ठा करके लगी तुम्हारी बातें, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने फौरन कॉल की तो मैंने कहा क्यों कॉल की क्या हुआ, कहती है कॉल इसलिए कि मुझे लगा काशिफ किसी को बड़ा मिस कर रहा, तुम्हारी बातों से पता लग रहा था। हाय कितने तेज हैं जमाने वाले, हम आंखें बंद करके रखते हैं कि कोई देख ना ले उनकी तस्वीर हमारी आंखों में, लेकिन बातें भी अब बंद करनी पड़ेंगी, बातों से भी समझ जाते हैं जमाने वाले। हाय तो जनाब उन्होंने समझा कि हमने किसी को मिस किया है, तो उन्होंने फोन करके पूछा काशिफ किसको मिस कर रहे हो, मैंने भी फिर कह दिया आओ देखा ना ताओ मौका और चौका काशिफ टाइम पे लगाता है, मैंने कहा जिसको मिस कर रहा था वो आ गई फोन पे, यानी कि आप, तो बड़ी खुश हुई आप जनाब ये सुन के, तो मैंने कहा किधर थी आप इतना टाइम के बाद, कहती है होलीडे पे थी, मैंने कहा केड़े पौंड तुसी छाप दे हो, केड़े पौंड छापने दी मशीन लाई है तुसी, एडियां एडियां लंबियां होलीडेज कर दे हो, तो कहती है दो हफ्ते तो काशिफ खाली में कोई नहीं आई, जनाब आपसे जुदाई दो हफ्ते की, हमें दो साल की लग गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप आई ठीक टाइम पे, अपने ही आते हैं सहारा देने के लिए। लेकिन मैं तो वैसे ही पता नहीं कौन सी बातें करता रहता हूँ, मुझे खुद पता नहीं होता कौन सी बात किधर निकल जाती है, लेकिन आपको ठा करके लगी हमारी बातें। आप आई और आपने कहा कहीं काशिफ का दिल ही ना डूब जाए, तो जनाब दिल तो डूबा है,
5: दिल डूबा,
4: पर उसको पता नहीं जिसके लिए दिल डूबा है। बता दूं किसके लिए डूबा है,
5: बस ये जान ले मैं।
4: आपके लिए, आपके लिए जो ये मुझे सुन रहे हैं ना इस वक्त, जी जी बिल्कुल आपके लिए काशिफ का दिल डूब चुका।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: ऋषि's विजन presents आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886-545970, Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

आपकी मोहब्बतों और आपकी कॉल्स जो आ रही हैं वो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और हमें भी अपनी स्पीड साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में बैकलॉग जो है ना वो उसमें ना जाना पड़े बल्कि साथ साथ आपकी कॉल्स और साथ साथ आपके नाम जो है ना वो चलते रहें। और जनाब गुजरात वालों ने कॉल की और उन्होंने नाम नहीं बताया और उन्होंने कहा नाम हम इसलिए नहीं बताएंगे हर बार आपको नाम बताते हैं और आपको याद नहीं रहता। अरे वाह वाह याद आ गया हमने भी नकल की ना नकल क्या कहते हैं नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है। गुजरात वालों गुस्सा थूक दियो इंज ना अपने खब्बे पासे नहीं सज्जे पासे तो गुनाह होएगा कि मन नहीं पता ना इन्ना चलो खब्बे पासे थूक दियो ठीक है ना वेखियो कोई बंदा ना बैठे होए थूक दियो गुस्सा थूक दियो क्योंकि मैनू ना तुहाडा याद आ गया असी नकल मारी है हूँ पिछे जा के ना असी साड़ी डायरी के पिछे ना लिखे हुए सन असी इन्ना वड्डा करके ना लिखिया सी पता लगता इलैक्शन दे विच तुसी खलोते हो कुछ कौमी असम्बली का इलैक्शन नहीं होंदा ते उहदे वास्ते बैनर नहीं बनते एडे एडे वड्डे ना लिखे होंदे ने मैं इन्ना वड्डा तुहाडा ना लिखिया सी गुजरात वाले हो ते तुसी इन्ना गुस्सा गुजरात गर्मी तो नहीं पै रही की गल है मदीहा थैंक यू वेरी मच मदीहा ताडी कॉल दा ते अज मजा को नहीं आया ताडे नाल गल करके तुसी आंदे हो हर वारी मतलब ना हासा मजाक करदे हो अज तुसी आंदे हां साथ ही पिछे ही पै गए साडे कि जी तुसी ना क्यों पुछिया तुहानू ना याद होना चाहिए कर लो गल जनाब कोई इक स्यापा की करां ते की ना करां ठंडा ठार पानी पी पी मरां। अच्छा पानी से याद आया जनाब ये गाना होगा मदिया के लिए और ठंडा ठार पानी इसलिए हमने कहा कि इस वक्त पानी के आस पास हाय हाय वॉक कर रहे हैं हमारे प्यारे से भाई तारिक जुल्फी भाईजान। देखो गल कितू पानी तू गल कितने जाके खलोती है तो गल खलो गई लेकिन तारिक जुल्फी भाई जनाब वो नहीं खलते आले वो वॉक करने पैंता है मैं उन्होंने कहा वॉक कराया करो वॉक सेहत वास्ते चंगी होनी तो तुसानी सेहत असं की बड़ी प्यारी तारिक जुल्फी यार नाल ते गल होई गई मैं तुसा की आखना पिया सुने तुसा की जड़े बुझने पे हो मिकी तुसा भी वॉक करया करो ना ये रोटी खाई ते फिर सोफे पर ढेर होई जने हो बेह जने हो इस तरह चौड़े होई के ते फिर पता है ना इन्नी ना गुड होना तुसानी सेहत वास्ते ते आर्ट वास्ते इन्नो गुड है मैं कोई डॉक्टर नहीं हाँ लेकिन फिर भी ये डॉक्टर गल बाने वड्डे गल बाने निके भी हुण तां सियाणे होए गए अजकल ने भी यही गल बाने कि रोटी शोटी खाई के ना तुसा जड़े चोपड़ी चोपड़ी तो परांठे खाने हो ना वीकेंड पर दो दो त्रै त्रै तो जड़े पूड़ी छोलिया ने हलविया ने नाश्ते करने हो तो आप पर दुध पत्तियां ने दो दो कप पीने हो एक भी नहीं तो ये सरकार फिर खाई तै तो फिर थोड़ी 15 मिनट वॉक करी किनिया करो ना घर अंदर ही वॉक करी किनिया करो तुसा करसो ना तुसा की तकी के तुसाने टब्बर जड़े सारे ना करा ले वो भी वॉक कर सन जरा इमेजिन करो रोटी खाधी सारे तुसा वॉक शुरू की मुड़ी तकिया पिछे पूरे करा ले वॉक करने पे जरा इमेजिन करो लिविंग रूम इच सज्जे खब्बे थोड़ी देर पहले किचन ने टेबल इच सारे बैठे से रोटी खाने तो हूँ पूरी परेड लिविंग रूम इच वॉक हो रही है ए सज्जे तू खब्बे ए सज्जे तू खब्बे सारे की अपनी अपनी सेहत प्यारी ना कले तुसा तो ना सोने ना वैसे है तो सोने हो बड़िया अखा तक सो तो ना पर बाकी सारे भी तो सोने ना तुसने जेड़े अपने प्यारे न उन्हें की भी आख्या करो वॉक करने ना तो आपू भी करया करो ठीक है ना कितने मिनट 15 मिनट रोटी तो बाद नाश्ते तो बाद बिल्कुल हूँ कोई लिहाज ना उसी ठीक है ना तुसा की कोई ख्याल नहीं अपनी सेहत ना मिकी तो फिक्र है ना तो गल कि टुरी सी हूँ किस तरह वापस जावा इतनी दूर मैं आई गया हाय ये तारिक जुल्फी भाई छेड़ पाई जनाब पार्क अज वॉक करने पे ओ
जन्ना मदीहा की डांट डपट के बाद हम थोड़े से गए हैं सहम, थोड़े से हो गए हैं बेचैन। बेचैन मदीहा की बातें सुन के नहीं हुए, बेचैनियां इसलिए हुई हैं कि सोनिया ने पकाए हैं आज फिर करेले गोश्त। और उन्होंने आज खुद ही कहा, काशिफ आप भी कहते होंगे कि हर संडे मैं करेले गोश्त क्यों पकाती हूँ। मैंने कहा वाजी वाह, आपने तो मेरे दिल को अखबार न्यूज़पेपर बना के पढ़ लिया। कैसे पता लगा आपको मेरे दिल की बात कि हर संडे आप बताती हैं कि करेले गोश्त बनाए हैं। और फिर मेरा दिल और दिल की बेचैनियां ना पूछे, करेले गोश्त तो मैं बस ना पूछे, रहने दें, बच्चे की जान लेंगी आप किसी दिन। तो कहती हैं काशिफ आज मैं आपको बता ही देती हूं कि मैं

किसी और के साथ आपने ये बात आगे नहीं करनी वरना सोनिया नाराज हो जाएंगी मुझसे और ये बड़ा घाटे का सौदा होगा। अब आपके सपुर्द है ये बात, अमानत है मेरी ये बात, ठीक है। तो सोनिया ने कहा जनाब वो गई शॉप पे कुछ टाइम पहले, शॉप पे लगी हुई थी करेलू पे ऑफर, गाली मुक गई तो उन्होंने कहा ऑफर लगी हुई थी तो मैंने समझ गए ना आप, तो उन्होंने कहा मैंने ढेर सारे करेले खरीद लिए, अब उनको मैंने फ्रीज कर दिया, अब वो इतने ढेर सारे हैं कि मुझे फिक्र पड़ गई है कि करेले हो जाएंगे खराब फ्रीजर में पड़े पड़े, अब इनको मैंने मुकाना है और मुकाने के लिए इनको पकाना है और जब जब मैं पकाती हूं तो आपको बताती हूं। तो ये वजह है सोनिया की हर संडे करेले गोश्त पकाने की। ठीक हो गया भाई साहब, मुझे भी क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर हो गया। लेकिन जब जब मैं सुनता हूं उन्होंने करेले गोश्त बनाए हैं, क्या बताऊं मेरे दिल की?

जी जनाब, थोड़ा सा गाना मिस हो गया। फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार आपसे बात हुई और आपसे बात करते करते देख लें हमारे होश गुम हो गए। भाई हों तो ऐसे, दोस्तों से ऐसे। जनाब आपने कहा, जनाब आप हमें बड़े टाइम से सुनते हैं और आपको लगता है कि जैसे हम आपके फैमिली मेंबर हैं, अपने अपने लगते हैं, तो हमने भी इसलिए दोस्त कहा, भाई कहा। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया। जब आप दिल से किसी को सुनते हैं, याद करते हैं, देखते हैं प्यार से, खलूस से, कमाल आपका है। तो जल्दी से कॉल काटनी पड़ी, जल्दी से खुदा हाफिज अच्छे तरीके से आपको नहीं कह पाए, इसके लिए माजरत। लेकिन आपने कहा जी टिकटॉक पे आप हमें फॉलो करते हैं, आपने नाम बताया अपना, जरूर हम आपको फॉलो बैक करेंगे। आपने कहा बहुत टाइम से आपको टिकटॉक पे देखते हैं और आप की जिम वाली वीडियोस हमें बड़े इंस्पायर करती हैं, और हम भी जब थोड़े लेजी होते हैं तो आपकी जिम वाली वीडियो एक्सरसाइज करते हुए, जिम करते हुए देखते हैं तो हमें जोश आता है, फिर हम भी जिम जो है ना चले ही जाते हैं। बहुत अच्छे जनाब, हम भी किसी को इंस्पायर करते हैं, ये बड़ी बात है। तो आपने कहा, एक सवाल आपने पूछा, आपने कहा आप जिम में जाते हैं तो हम आपको देखते हैं, आपकी वीडियोस, आपने हेडफोन्स लगाए होते हैं तो क्या सनराइज रेडियो सुन रहे होते हैं या क्या सुनते हैं? तो मैंने कहा हम गाने सुन रहे होते हैं। तो आपने कहा कौन से गाने सुनते हैं हमें भी बताएं, ताकि हमें भी इतना ही जोश आए और हम भी आपकी तरह। जो कुछ भी आपने कहा बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल फिट हैं जनाब, वैसे ही रब ने आपको बनाया है, सबको बनाया है। आप आगे बात हो रही थी ना 15 मिनट, रोटी के बाद थोड़ी वॉक किया करें खाने के बाद, तो बस आप वही कर लें, वही बहुत है। आपको जिम में मेरी तरह जाके जोर जमाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने जिम की मेरी एक प्लेलिस्ट होती है, आपने सवाल किया, आप सोचेंगे बातों को घुमाता है, शुगल मेले वाली बातें तो आपको एंटरटेन करने के लिए करते हैं, लेकिन आप काफ़ी सीरियस लग रहे थे मुझे, तो मैं जो आपका प्यार है उसको बिल्कुल जना आपके सवाल को बिल्कुल नहीं गमाएंगे, और वो जो गाने मैं सुनता हूँ ना वो शायद आपके टेस्ट के नहीं होंगे। उसकी मिसाल ये दूंगा कि ये जो गाना है ना अभी हमने लगाया है फ्लैशबैक में, ये गाना आपके लिए, फवाद भाई आपके लिए, चौधरी नूर हुसैन जी आपके लिए। और जनाब इस तरह के गाने मैं सुनता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि शो में किस तरह के गाने लगाता है। और ये गाना मैंने कभी आपको पहले नहीं बताया, कभी मैंने अपने शो में भी नहीं लगाया, लेकिन आज फवाद भाई ने मजबूर किया तो मैं एक कोशिश करूंगा कि आइंदा भी एक दो गाने आपको बताऊं चला के। अगर आपके टेस्ट के हुए तो अपनी प्लेलिस्ट में रखिएगा, वरना ये मेरा जिम का गाना होता है, जिस दिन मैं बड़ा ही लेजी हूँ, बड़ा ही मेरा कोई मूड ना हो। वैसे मेरा जिस दिन मूड हो ना, आप ये किया करें ना, मैं आपको टिप देता हूँ, आप जो है ना 2-3 दिन पहले डिसाइड कर लिया करें, जो आपका डे ऑफ होता है तो उसमें प्लान कर लिया करें, फिर आपका जो दिमाग है ना वो तैयार हो जाता है, फिर जब आप माइंड को रेडी कर लें ना जिम के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो फिर कंप्रोमाइज ना किया करें। जब आप 1 वीक या 1-2 दिन आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपके दिमाग को पता लग जाएगा, दिमाग ना आपको ट्रिक करता है हमेशा। जैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से ट्रिक हो जाते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग उनकी ज़िंदगी में होते हैं और उनको खो देते हैं, लोगों की बातों में आके ज़िंदगी आपकी और वो ट्रक की बत्ती के पीछे दूसरों की बातों में आ जाते हैं, फिर जब उनको एहसास होता है कि हाय हमने क्या हीरा खो दिया, तो तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है, फिर वो हाथ मलते रहते हैं और हाथ मल मल के अपने हाथों के सेक से ना सब्र करते हैं। तो जनाब ऐसे ही आप नहीं हाथ मलते रहा करें, आप 2-3 बार अपने दिमाग को पुश करें और उसको दिमाग को बोले डांटे उसको, आंखें दिखाएं तुम्हारी, ऐसे बोला करें मुझे ट्रिक करते हो, और फिर जिम पहुंच जाया करें या पार्क में या वॉक में या रनिंग में, जो भी करते हैं आप, करना चाहते हैं, आपकी सेहत इजाजत देती है जो भी, तो वो जब 2-3 बार आप करेंगे तो फिर आपका दिमाग आपको जरूरत भी नहीं करेगा आपके सामने खड़े होने की या आपको भटकाने की ऐसे ही रास्ते से। बिल्कुल सही काम और सही लोगों के लिए आपके लिए वो ना सही सही बिल्कुल सीधा हो जाएगा आपका दिमाग। ठीक हो गया फवाद भाई, देख लें हम यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं, आपने हमें जो है ना, हमने क्या लगाना ट्रक की बत्ती पीछे, आपने लगा दिया हमें, देखें कौन सी बातें करवा रहे हैं आप,
कमाल हो गई है वैसे, ऐना भी कोई सादा ना हो जिन्ना मैं सादा वा। सो जनाब फवाद भाई के लिए जनाब ये गाना होगा। हाँ फवाद भाई अगली बार ये गाना सुनिएगा जिम में जाते हुए या जिम में पहुंच के, तो फिर बताइएगा कोई अफाका हुआ है या नहीं हुआ आपको। क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि जब जिस दिन मुझे कोई हो ना परेशानी, मेरा दिमाग मुझे थोड़ा सा मजबूर करे ना कि जनाब आज नहीं, फिर कदे सही, आज मौसम बड़ा, आज बारिश है, आज ऐ है, आज ओ है, तो मैं जनाब हेडफोन लगाता हूँ, ये वाला गाना सुनता हूँ। तो फिर जनाब जो ऐसे खून ना बॉयल होता है, ऐसे ना बाले आते हैं, ऐसे जोश आता है, करंट सा दौड़ता है पूरे जिस्म में, फिर दिल करता है कि आप जिम जाएं, थोड़ा सा पसीना बहाएं, जोर जमाई दिखाएं। आहो कसम है, अभी मजबूरी ये है, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और आपकी वजह से ये गाना लगाना पड़ रहा है, अब एक करंट सा दौड़ रहा है। अब मैं अपने वेट्स और डंबल्स वगैरह साथ ले आया करूँगा आइंदा अगर ये गाना लगाना हुआ। बिल्कुल जनाब आप ये गाना पूरा सुनना पड़ेगा आपको, अब आपने छेड़ा है तो हम छेड़ गए हैं बिल्कुल। और जो कॉलर हमें कॉल कर रहे थे जनाब, उनको कहेंगे सब्र रखो क्योंकि इस वक्त काशिफ छेड़ गया है। तो जनाब ये गाना जरा सुन के देखिएगा आपको, मेरे मेरे नजर से, मेरे दिल से, मेरी समातों के जरिए, मेरी नीयत से आप सुनिएगा, फिर देखिएगा आप अभी दौड़ना शुरू हो जाएंगे जहां कहीं भी आप हैं। एंजॉय कीजिएगा।

जी जनाब, मैं हूँ आपका अपना काशिफ और सनराइज रेडियो आप सुन रहे हैं। जी मैंने बताया नहीं, मैंने पूछा, सुन रहे हैं ना? जी जनाब, आपका अपना काशिफ सनराइज रेडियो पे बिल्कुल आखिरी आवर है हमारी और आपकी आज की इस प्यारी सी खूबसूरत सी मुलाकात का, गल बात का आखिरी आवर है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं तो मेरे दिल को तो हाथ पड़ता है, आपके दिल को कुछ कुछ होता है, नहीं होता ना? मुझे पता है आपके सीने में दिल नहीं होगा, चेक करवाएं आप, स्कैन करवाएं, अपॉइंटमेंट बनाएं, मुझे लगता है आपके दिल में जनाब कोई पत्थर है, आपके सीने में कोई मसला है, क्या है पता करवाएं, फिर मुझे बताएं कि आपके दिल को हाथ क्यों नहीं पड़ता जब हम जाने की बातें करते हैं। हम ऐवें ही फिर वहम और फिर वहम पे वहम और वहम पे वहम पालते जा रहे हैं कि आपको हमारी बड़ी याद आती है, आपको हमारी बड़ी याद सताती है, हमको बद जब जब छींक के आती है, हमारा ध्यान आपकी तरफ जाता है, किसी और की तरफ नहीं। बर्मिंघम से जनाब ड्राइव करते हुए आए हैं, वापस ब्रैडफोर्ड पहुंचे हैं, आपकी बात हो रही है, आपकी। जी जी, आप समझ गए हैं ना, ये जो आप मुस कर रहे हैं ना, आपकी बात कर रहा हूं, मुस करते हुए। हाय, अब तो ज्यादा बड़ी मुस की ना आपने, क्योंकि आपको पता लग गया, किसी को नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो मुस कर रहे हैं ना, ये उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं जनाब बर्मिंघम से ड्राइव करते हुए पहुंचे हैं ब्रैडफोर्ड, आपको सुन रहे हैं। कहते हैं जब ब्रैडफोर्ड के पास पहुंचने वाले थे ना, तो मुझे याद था कि आज काशिफ का शो है। कहते हैं फिर जब ब्रैडफोर्ड के पास पहुंचने वाले थे, फिर हमने शो लगाया, आपको सुना, फिर आपने जो कुछ भी कहा हमारी शान में, क्या बात है, अब तो मुस से काम नहीं, अब तो कह कहा बनता है आपकी तरफ से, जो भी आपने कहा हमारे सर आंखों पे। वो कहते ना बंदा ढीठ होना चाहिए, लोगों का की है, करते रहना गल्ला, तुसी भी कर लो, ठठे चेजे ला लो, साड़ियां गल्लां दे चस्के ला लो। शफीक भाई की बात हो रही है जनाब, आपकी नहीं, आप क्यों पर्सनल हो गए हैं, हर वक्त आपकी बातें थोड़ा करेंगे, आप अकेले ही नजर आते हैं हमें क्या दुनिया में, आप अकेले ही याद आते हैं हमें क्या दुनिया में, जमाने में और भी गम नहीं, और भी लोग हैं आपके सिवा जो हमें याद करते हैं, क्या हुआ आप नहीं करते? शफीक भाई तो याद करते हैं ना, शफीक भाई करते हैं ना, या हमें मेरा दिल रखने के लिए कहा आपने, याद करते हैं, आपने कहा बहुत प्यार करते हैं तुमको, मैंने कहा कसम चुको शफीक भाई, फिर आप बहुत हंसे, मैंने कहा हम भी बहुत प्यार करते हैं आपको शफीक भाई, कहते नहीं। हाय, ये जब आपने नहीं कहा ना, तो मेरे दिल को हाथ पड़ गया, टूटे हुए दिल को मजीद किरची कर दिया काशिफ के आपने, ये कह के कि काशिफ भाई हम गाने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा मैं गाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आप ही को कह रहा हूं कि बहुत प्यार करते हैं हम आपको,
आप करें या ना करें, आप बहुत हंसे और अभी भी हंस रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, ये शफीक भाई को नहीं आपको कह रहा हूं अब मैं, कि बहुत प्यार करता है काशिफ।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
6: We're not having that, are we?
5: No. Oi, Sheila, is water and cans?
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
9: Because when we work together,
10: it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
12: जी जनाब, मदीहा आपने कॉल की दोबारा। राजी हो गई जनाब, आप बहुत हंस रही थी। कह रही काशिफ, आप तो बड़ी जल्दी डर जाते हैं। मैंने कहा कोई भी ही। जनाब कोई भी, वो क्या अंग्रेजी में जेंटलमैन कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, कोई भी इज्जतदार मर्द होगा ना, वो जनाब किसी भी खातून की छोटी से छोटी धमकी पे डर ही जाएगा। तो जनाब आपने नाराज़गी की वो धमकी ऐसी लगाई, आप बहुत हंसी हमारी बात पे, कहती हैं बहुत दिल खुश होता है। आपने ढेर सारी दुआएं दी, अल्लाह आपको भी इसी तरह हंसता बसता रखे। मेरा, मेरी वजह तो नहीं हो सकती आपकी मुस्कुराहटों की, बहरहाल आपने मेरा दिल रखने के लिए जो कुछ कहा, रब आपको उसका जो है ना वो बड़ा सा इनाम दे। आपने मेरा दिल बड़ा करने की बड़ी प्यारी कोशिश की, शुक्रिया। और उसके बाद सोनिया ने जनाब कहा है कि उन्होंने धमकी लगा दी है। कर लो गल जनाब, कोई स्यापा हो तो मैं पूरी पावा ना। तो सोनिया कहती हैं कि आप मुझे टिकटॉक पे जवाब नहीं देते हैं। तो मैंने कहा जी आप मुझे अपना वो बता दें तो मैं, मुझे क्या पता इतने लोग मैसेज करते हैं। तो कहते नहीं, आप टिकटॉक पे, मैं हर बार नाम बताती हूँ, टिकटॉक वाला तो आप कोई नहीं, तो जवाब नहीं देते हैं। तो हम आपकी वो टिकटॉक के स्टेटस और स्टोरियाँ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, आप कोई नहीं आके मेरी स्टोरी देखते, फिर मुझे आके बताना पड़ता है कि मैंने करेले गोश्त बनाए हैं। तो अगर आप मेरी स्टोरी देखेंगे ना टिकटॉक पे जाके, तो वहाँ पे फिर आपको जो है ना पता लग जाया करेगा कि मैं रोज़ क्या पकाती हूँ। यह गल भी ठीक है जनाब, बाद में दम तो है, अब सुनने वाले भी समझ गए होंगे। बताएं अब कल्ला काशिफ ते पूरी मैं किंज बावा, मतलब मैं संडे वाले दिन तो आता हूँ आपसे गपशप करता हूँ, उन बाकी 7 दिन भी मेरी ड्यूटी लग गई है कि मैं टिकटॉक ते एक से अपनी वीडियो भी लानी है, ते नाल जनाब मैंने जाके देखना है कि किस किस ने क्या क्या पका के तो वो अपने टिकटॉक की स्टोरी में डाला है, ताकि मुझे पता हो। अच्छा वैसे आप क्यों चाहती हैं कि मुझे पता हो कि आपने क्या पकाया है? पहला तो सवाल मेरे मासूम से दिल दिमाग में ये आता है। चलो संडे तो मुझे पता होना चाहिए ना, संडे मैं देख लिया करूंगा बकायदा से, आप जितनी नाराज हुई है ना, तो बाकी 6 दिन तो लिहाज का थोड़ा सा मुझे दे दें, गुंजाइश दे दें। ये इतनी लंबी पकड़ी ड्यूटी, मेरे से इतनी सख्त ड्यूटी ना लें आप, क्या कहती हैं? तो थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें, लचक, थोड़ी सी लचक अपने फैसले में पैदा करें प्लीज आप, तो फिर मुझे बताइएगा। तो फिर मैं, अगर आप कहती हैं तो मैं संडे देख लिया करूंगा, याद रखूंगा अब मैं, ठीक है? तो तो आप थोड़ा सा जो ना थोड़ी गुंजाइश पैदा करें थोड़ी सी, ठीक है? क्या बनेगा? हद है यार, हद है भाई, हद है। वो आपने वो एक मीम थी ना, वो एक वीडियो चली थी पिछले दिनों में, मुझे मारो मुझे मारो, नहीं नहीं नहीं आप मुझे मारो, तो वो इस वक्त पता नहीं क्यों मेरे जहन में आई है आपकी जो है ना ये फरमाइशें बातें और ये आपकी जो है ना जिद्दें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में ये बातें। मुझे तो लोग पूछते हैं कि मेरे दिमाग में कहाँ से ये बातें आती हैं, मेरा दिल करता है मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में ये बातें कैसे आती हैं। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हाय ग्रीन गेट्स वाले, ब्रेडफोर्ड में एक जगह ग्रीन गेट्स BD10 के पास, अगर आपको नहीं पता है, BD10 नहीं है ना, है लियाकत भाई, जनाब कहते हैं बड़ा मजा आता है, आपने इतने दिल से कहा ना, और कहते हैं काशिफ भाई गाना छोड़ो, उस वक्त गाना लगा हुआ था बैकग्राउंड में, अब बहुत प्यार करते हैं हम तुमको सनम, तो वो उन्होंने वो कहते हैं नहीं नहीं गाना छोड़ो यार, मैंने कहा क्यों छोड़ें, कहते हैं आपकी बातें सुनने का मजा आता है। जब आपने ये बोला ना तो आप माने या ना माने, मैंने ये जो शर्ट पहनी हुई है ना ये पाटने वाली हो गई है, मतलब ना बखियों से, मतलब मुझे छोटी हो गई है एकदम से, मैंने इतनी महंगी मतलब इतने चाव से ये शर्ट खरीदी है और पहली बार आज पहनी है, और अभी तक सिर्फ आमर भाई ने तारीफ़ की है, सिर्फ बाकी अभी तारीफ बाकी है, सारा दिन तब जाके इसके पैसे पूरे होंगे, तो अब ये बिल्कुल जो है ना मुझे छोटी होगी, आपने इतना चौड़ा कर दिया हमें ये बोल के कि आपको हमारी बातों का मज़ा ज़्यादा आता है गानों से ज़्यादा। कहते हैं यार ग्रीन गेट से निकला हूँ, जॉब उठाई थी तो जॉब फिर उतार भी दी और फिर अगली जॉब पे मानिंगम लेन पे पहुंच गया हूं, तो कसम से पता ही नहीं लगा, हाय कौन न मर जाए आपकी इन दाऊं पे, ये जो आपने बातों से जादू मुझ पे चलाया है और बिल हमारी बातों का आपने काटा है हमारे नाम पे, कोई हमसे पूछे कि हमारा दिल ऐसे अचकोले खाने लग पड़ता है समुंदर में, जैसे कश्ती देखी है कभी आपने, तूफान उठता है ना समुंदर में, तो ऐसे कश्ती अचकोले खाती है, हमारा दिल ऐसे डोल रहा है इस वक्त आपकी इतनी प्यारी, कहां से बनाते हैं कैसे कर लेते हैं आप इतनी प्यारी बातें, मुझे अपनी बातों के जाल में आप कैसे फंसा लेते हैं, और मैं फंस भी जाता हूं आपकी बातों में हंस हंस के, हाय कुछ सादा भी ना हो यार मेरे यार का। अच्छा नुमान भाई से बात नहीं हुई, वो भी अपनी सादगी का कोई कोई ना कोई चंद चढ़ाने आए थे, लेकिन उनकी कॉल मिस हो गई है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो उन्होंने कोई मजे की बात करनी थी। अच्छा जी लियाकत भाई आपने इतना कुछ कहा मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा आप ना भी कहते ना तो मुझे पता था कि आपको हमारी बातें ठा ठा करके लगती हैं आपके दिल पे, ये ठा ठा करके आपके दिल पे जो लगती है ना ये बाल लियाकत भाई के लिए नहीं, ये आपके लिए की है, इधर उधर ना देखें आपको बोला है, कहें या ना कहें आप समझ जाया करें।

जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई आपका, और आपने ढेर सारी दुआएं दी, ढेर सारा प्यार आपकी बातों से हमें मिलता है, और बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने के लिए, और हमारे दिल से ढेर सारी दुआएं आपके लिए हमेशा निकलती हैं। आप कॉल करें या ना करें, मसरूफ होते हैं। अब आप सबकी बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं हमें जनाब, साथ निभाते हैं, कॉल करते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा कॉल नहीं कर पाते, मुझे पता है आपका दिल चाहता है बात करने को, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के हालात, और मैं शो के आखिर में कहता हूँ ना, साजगार हालात, बशर्ते जो साजगार हालात नहीं होते कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में, कुछ इस तरह के काम काज में आप मसरूफ होते हैं, या जिंदगानी की दौड़ में इस तरह से उलझे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन आप बेशक कॉल नहीं भी करते तब भी हमारे सर आंखों पे, और कॉल करते हैं तो फिर तो पूछे ही ना, पर लग जाते हैं हमें। लेकिन अब हमारे पर कट गए हैं क्योंकि जुदाई का टाइम। बहुत सारी बातें करता हूँ, लेकिन शो के आखिर में कोशिश होती है 15-20 मिनट बैक टू बैक आप गाने सुने, जो दोस्त गानों के शदाई हैं, शौकीन हैं। हर कोई आपकी तरह मेरी तरह बातों के शौकीन तो नहीं होते ना, तो जो लोग गानों के शदाई और शौकीन होते हैं, तो मेरे शो में कोशिश होती है कि उनको आखिर में हम बैक टू बैक गाने 3-4 चलाएं, ताकि वो उनकी वो जो कसक कमी, जो तिश्नगी है वो दूर हो जाए, और जो बातों के शौकीन है उनको टका के जनाब 2-2.5 घंटे गाने भी और बातें भी सुनाते हैं। अच्छा, बातें मेरी नहीं होती हैं, बातें आपकी होती हैं, कमाल आपका होता है। तो जनाब, आज वही घड़ी आन पहुंची फिर से जो मुझे अच्छी नहीं लगती। जाने से पहले हमेशा एक दरख्वास्त करता हूँ, एक बात कहता हूँ, बड़े मान से, बड़े ही दिल से, सारी बातें बड़े दिल से करता हूँ, लेकिन ये बात बड़े हक के साथ, बड़े दावे के साथ आपके साथ करके जाता हूँ, और एक गारंटी भी देता हूँ। कभी आज के दौर में कम ही लोग गारंटी देते हैं, ये पागल काशिफ आपको एक गारंटी देता है ना, और एक चैलेंज भी देता है कि जनाब आप अगर, मेरी गारंटी है, किस बात के लिए गौर से सुनिएगा, इस बात के लिए मेरी गारंटी है काशिफ की, कि आप अगर दूसरों की जिंदगियों में कोशिश करें आसानियां पैदा करने की, आसानियां बांटने की, आसानियां पैदा करने का वसीला अगर आप बने, कोशिश करें, रब आपकी नीयत के मुताबिक जरूर आपको वसीला बना देगा। अगर आप नीयत करेंगे और कोशिश करेंगे, रब जरूर आपको उसका इनाम इस सूरत में देगा। अगर आप कोशिश शर्त है कि आप रब की बनाई हुई मखलूक, रब के बनाए हुए कोई भी बंदे, उनकी जिंदगी में मुश्किलात ना खड़ी करेगा। कभी भी किसी की जिंदगी में मुश्किल पैदा करने की वजह आप ना बने, किसी की जिंदगी में दुख की वजह आप ना हो, किसी की आंखों में आंसू की वजह आप ना हो। अगर आप वजह बने तो दूसरों की जिंदगियों में आसानियों की वजह बने आप, दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आपकी वजह से आए। मैं भी ये कोशिश करता हूं, आज भी मैंने यही कोशिश की, आप सब गवाह हैं और मेरा रब गवाह है। तो मेरा रब मेरी नीयत के मुताबिक मेरी आज की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करे, मेरी नीयत के मुताबिक उसकी मखलूक को खुश रखने की कोशिश की 2.5-3 घंटे। तो जैसे मैं कोशिश करता हूं, बेशक आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका ओहदा, आपकी उम्र, आपकी एज डिफरेंट होगी, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, आपकी जात पात रंग नस्ल मजहब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बनाए हुए बंदे सब रब के होते हैं,
रब के बंदों को कोशिश करें आसानियां बांटें बिना किसी जात पात रंग नस्ल मजहब के फर्क के बगैर। अच्छा फिर देखिएगा रब आपकी जिंदगी में आपको मोजज़े दिखाएगा, मोजज़े आसानियां वो पैदा करेगा आपकी जिंदगियों में वहां वहां से जहां से कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो आपको ऐसी ऐसी आपकी जिंदगी में आसानियों के असबाब दिखाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इतनी सी बात होती है, बाकी आप तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, सियाने हैं, आपसे हमेशा सीखने आता हूं मैं हकीर फकीर आपका काशिफ। आज भी आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ आपने दिया, प्यार मोहब्बत और दुआएं, क्या बात है आपकी, आपको पता ही नहीं आपकी क्या बात है। चले जनाब बगड़ी आन पहुंची जुदाइयों की व छेड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास बिल्कुल आपके पास आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची। जी जनाब, अपनी यादों में, अपनी बातों में और अपनी चाहतों में। हाँ एक और बात, सबसे बढ़ के, जी जनाब सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा, रखेंगे ना। अरे इतने प्यार से तो लोग कहते हैं कुछ जान मांगे तो दे देंगे, मैं तो आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा, इतनी छोटी सी तो दरख्वास्त है, मानेंगे ना, मानेंगे। आप बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, आपसे सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं और कुछ नहीं चाहिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश, मैथ्स, ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: It's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
2: We're not having that, are we?
1: No. Oi, hear that? It's water and cans.
3: And fix those drips and drops.
4: And take shorter showers, yeah?
3: Because when we work together, it all adds up.
4: So come on, you lot, search Let's Save Water.
5: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: evil in the place to be. All you listeners.
1: Salaam namaste. Salaam namaste.
2: कौन है ये जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
3: Hamid Khan.
4: हम शरीफ क्या हुए?
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश
5: हूँ.
3: देखो मैं हूँ कहाँ.
6: Hamid Khan.
4: आ रहा

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते श्रीकाल खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 FM में आपका होस्ट दोस्त यहाँ पे हाजिर है मेरा नंबर आम ही है ठील अलमगर बीर शाम और आप सबके नाम रंग महफिल का प्रोग्राम है 01274306 अमेजिंग डे आज यू नो टुडे संडे इवनिंग गुड इवनिंग टू यू एंड टुडे इज 23rd of August 2026 द वेदर हैज बीन सच अ लवली डिवी रोमांटिक मौसम है कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं What is your beautiful plan for this beautiful evening? If you want to give me a shout out, 01274306 and if you want to give me a call, Baba Shukriya, aap sab ka apni apni hazri lagane ke liye number wahi hai, 01274306 aur sab to pehle hum shukrgazar hum mamnoon hum aap sab ka ke aapne hamara saath de rahe hain aur bahut hi khushiyon ka din hai aur aapko aur hamari taraf se aur hamari family ki taraf se Sunday team ki taraf se aap sabko mubarakat मुबारखा ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद पेश करता हूँ और काफ़ी माशाल्लाह रहा पे रौनक है यूके में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबको मेरी तरफ से मुबारखा देर से मुबारखा एनीवे यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून हिट ऑफ द आवर फॉर ऑल दोज ब्यूटीफुल लिसनर्स ऑल द होमोश लिसनर्स नॉट फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वाल ऑल द न्यू आने वाले जो आ चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोस्तों के लिए सरप्राइज होगी आज क्योंकि आज जो है ना धमाका होगा यहाँ पे सुनना रेडियो में और धमाका होगा डेफिनेटली ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर एंजॉय
1: सनराइज रेडियो हिट आफ्टर हिट द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो सनराइज रेडियो हिट ऑफ द आवर

0: That was the hit of the hour. और आपने पसंद किया, enjoy किया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और जो आप हाजिरी लगा रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहां पे हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right time in the studio is 16 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Power Vision. यहां पे छोटी सी नन्ही मिनट की ब्रेक की ब्रेक के फौरन बाद I will mention you all your name. जो खूबसूरत नाम यहां पे लिखे आ रहे हैं, आप हमें फ्लश कर रहे हैं, आप हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया. क्या कहने जी, क्या कहने. हमारी खुश नसीबी है कि आप अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है. यहां पे निक्की जी ब्रेक, छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक हो गई. और कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's
9: सिर्फ दो पौंडा कनस लाने ना, एक पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी. ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है. जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
10: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता.
9: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेफोर्ड 9, टेलीफोन 01274 488-935.

Right, welcome back, listeners. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM, Crossbeck, Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Minton, Keenmay, or very, very soon is going to be launching on Derby and West Midlands, May, and very, very, very, very soon we'll be launching on London, West London, May. I'm aapke ghar mein aa rahe hain, aapki factory mein, aapke bazaar mein aa rahe hain, aur keep it locked with the Sunrise Radio. And don't forget, you can download the Sunrise Radio app on Apple Play Store and Google Play Store, and not forgetting www.sunriseradio.fm and www.sunrise.radio. That is all about, and so many ways to get connected with Sunrise. Keep it locked. Anyway, moving on to the callers. MashaAllah, you're my apne hai. Ye ek khubsurat family hai. MashaAllah, hamare saath dene bahut shukriya. Sabse pehle aaj call aahi hamare mohtaram Wajid bhai, bahut shukriya. Aapka bhi aapne hamara saath dene to bahut bahut shukriya. Aapka bhi Raja Shwe bhai, bahut shukriya. Aapka bhi aap hamara saath dene. Thank you very much. Hamare Gidan bhai हैं, हमारे पापी जन सुमित्रा जी हैं, भाई रुखसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और याली मदद बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी कमाल ही करते हैं और कमाल ही कर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अतिका साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी फरियाज साहब पाकिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अतिका साहब हैं, आपने दोबारा फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रुखसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम चौधरी फरियाज साहब पाकिस्तान से, याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यासमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारा साथ रहे, थैंक यू वेरी मच। और आने वाला गीत में पेश करूंगा सबसे पहले हमारे वाजिद भाई, उनके लिए और उनकी पूरी दोस्त अहबाब अजीज हैं, उनके लिए गीत होगा। मुझे उम्मीद है यकीन के आप एंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत। ये आपके लिए भी पेश करूंगा, और ये गीत मैं पेश करूंगा शिवे भाई, ये गीत आपके लिए भी। आई होप यू गन एंजॉय द ट्रैक एज़ वेल। एफ रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। शुक्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ दे रहे हैं। डॉक्टर मलिक साहब, आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। आई होप यू गन एंजॉय द वंडरफुल ट्यून। एंजॉय

वाओ दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और यहां पे रोशनी होगी स्टूडियो में माशाल्लाह आप सब आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शेयर और आप भी हमारा साथ देने की वेरी मच और हमारे भाई हैं दोस्त हैं और मित्र हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी बड़े प्यार करने वाले हैं भाई रुखार भाई हैं बहुत बहुत शुक्रिया मीठा भाई जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगे आप हमारा साथ देने यहां पे हमने क्या करना है कि सब कुछ यहां पे रोकेंगे क्योंकि यहां पे बड़े अदब अदार से बड़े प्यार के साथ हमने यहां पे माशाल्लाह आप सब दोस्तों की एक पकार है और वो पकार सुनाएंगे आप सबको और आप सब के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच फ़ोन करने का उजाफ जाई करने का जो मुझे लाने यहाँ पे चमक रही हैं धमक रही हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दें थैंक यू वेरी मच आप सबका भी और हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ हमने अजान पेश करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में शो नहीं हो रही है पता नहीं क्या वजह कोई बात नहीं कि वो उन्होंने शायद मेरे हाल में भूल गए हैं तो वो भी मेरे भाई हैं माशाल्लाह और भाइयों का मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ आप दोस्तों के लिए और हमारा भी फ़र्ज़ है और हम खुद कर लेंगे माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमने अजान पेश करेंगे मगरिब की अजान होगी ब्रैडफोर्ड यूके में अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करें स्पेशली जो बीमार हैं उनके लिए खसूस दुआ करें और हमारे मुर्शिद हैं उनके लिए खसूस दुआ करनी अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करे अल्लाह ताला उनको लम्बी ज़िंदगी दे और हमेशा ही मैं कहता हूँ और आज भी मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी कीप इट लॉक्ड विद सनराइज़ रेडियो

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
5: Because when we work together, it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
7: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
8: Right, welcome back and listen to your listening to Radio 103.2 FM. I'm moving on to a beautiful attack और ये गीत में पेश करने जा रहा हूँ शुएब भाई, राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए होगा और हमारे मोहतरम हैं चौधरी फरियाज साहब हैं उनके लिए होगा, गिदन भाई हैं, सुमित्रा जी हैं उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है आपकी तरफ से होगा, शुक्रान के लिए भी होगा, बहुत बहुत शुक्रिया और सब सुनने वाले को आपने सलाम पेश किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा और आपके दोस्तों के नाम भी होगा जो आपके साथ हैं उनके नाम होगा शबरेज भाई, ये गीत आपके लिए भी होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगे आप हमारा साथ दे रहे हैं और राजा साहब हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फोन करने का, उजरा अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और सिमी जी ये गीत आपके लिए भी होगा, मुझे उम्मीद है यकीन आप इन्जॉय करेंगे। नदीम मंसूर साहब है ये गीत आपके लिए भी, आई होप यू गोना एंजॉय द ट्रैक एज़ वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिनकी कॉल मिस हो चुकी है आप मुझे दोबारा फोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, काफ़ी कॉल्स मिस हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अजान माशाल्लाह यहाँ पे प्ले हो रही थी और अजान के दौरान में मैं बात नहीं करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी आपको मौका मिला दोबारा हम फोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकअल्लाह खैर। नदीम मंसूर साहब ये गीत आपके लिए भी गया, आई होप यू गोना एंजॉय द वंडरफुल ट्यून एज़ वेल, और बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारे चौधरी साहब सुन रहे हैं प्रोग्राम बर्मिंघम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच ट्यून करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे मोहतरम भाई हैं जो हैलिफैक्स में हमारा प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शहजाद हमारे मोहतरम राजा शहजाद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है, एंजॉय द ट्रैक एज़ वेल।
9: के आ गई रुत

Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, बहुत शुक्रिया आपने गाने को पसंद किया, enjoy किया, दोबारा आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए था, आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Moving on to another beautiful track which I'm going to be playing for हमारे चौधरी फ़रियाज़ साहब, उनकी टीम के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि वो enjoy करेंगे. बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें दोबारा फ़ोन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा कि आप खैर खैर से हैं, ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमें अच्छा लगे आप हमारा साथ दे रहे हैं, और शुक्रिया फ़ोन करने का. और ये आने वाला गीत मैं आपको पेश करूंगा, आपके दोस्तों के नाम हैं, चौधरी आसिफ विराज साहब हैं, चौधरी साहब हैं, हमारे मोहतरम हैं, मनीर चक्की वाले हैं, परवेज़ खान हैं, महबूब लाइक साहब हैं, तारिक जुल्फ़ी साहब हैं, जावेद मीर साहब हैं, तारक भट्ट जी हैं, शकील साहब हैं, ईरा खान जी हैं, और चौधरी अहम उस्मान हैं, शफीउल्ला हैं, और वाजिब भाई फ्रॉम हॉट स्कूल्स हैं, और हमारे शफीद्दीन हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, और महमूद रफ़ी साहब हैं, अतिका साहबा हैं, जंगीर फ्रॉम जीर बिर्स हैं. ये गीत आपके लिए गा, और स्पेशली ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं उनके लिए गा, अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और मदरसा कियानी साहब ये गीत आपके लिए भी होगा, और एफ रहमान साहब ये गीत आपके लिए भी होगा. आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून, और शुक्रान भाई ये गीत आपके लिए गा, और यही गीत मैं पेश करूँगा जो जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है विद हेल्प नंबर, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने भी हमें याद करें. मुझे नहीं पता वो कौन है और कहाँ से है, वो यू आर, ये गीत आपके लिए होगा, और आपने इस गीत को एंजॉय करेंगे. एंड ऑल दोज लवली लवली कॉलर्स जो हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड पर्सन बिहाइंड यू, उसके लिए भी गीत, और फिर ड्राइविंग, ये गीत आपके लिए भी होगा. एंड मैं हमेशा में बात करता हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ऑन हाउ यू गोना सेलिब्रेट एंड हाउ यू गोना लुक आट इट. एंड दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट. आई ऑलवेज सेड टू यू, मूव अप एंड मूव फॉरवर्ड, दैट इज ऑल अबाउट, मूव अप एंड मूव फॉरवर्ड. एंड दिस इज द ट्रैक, एंजॉय द ट्रैक एज वेल, और बहुत अच्छा लगा, आप हमारा साथ दे रहे हैं, एंजॉय द ट्रैक.

Random, that was a very very popular track. आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you very much. आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने काफ़ी दोस्तों को सलाम पेश किया, हम कहने वाले सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. मिस्टर मिस्टर पटेल, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी सलाम पेश किया और सब सुनने वालों के लिए गीत की रिक्वेस्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. और सोनी जी बर्मिंघम में प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे. और ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ आप सबके लिए. और ऑल द खामोश लिसनर, नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर, एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून. एंजॉय.

right, now that was one of my all-time favorite gigs. आपने सुना है प्रशांत भी किया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी. And that was for you as well. And if you are driving, and drive with a care. And if you're out and about, make sure stick around with the Sunday Radio. आने वाला गीत आपके लिए भी होगा. And I hope you're going to enjoy this wonderful tune. Moving on to the track which I'm going to be playing for. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया है. और बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया. जिलखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत आपके लिए भी पेश करूँगा और आपकी सखियत से लिए हैं आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, उजरा जारी करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाला गीत आपकी तरफ से होगा. अतिका साहब आपके लिए भी होगा और सुमी जी हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. और हमारे पापी जन सुमित्रा जी, ये गीत आपके लिए भी होगा. सितारा जी हैं, ये गीत आपके लिए. आई होप यू एंजॉय द वंडरफुल ट्यून. नदीम मंसूर साहब हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. और यही गीत मैं पेश करूँगा. हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं मुनीर साहब चक्की वाले, ये गीत आपके लिए. आई होप यू एंजॉय द वंडरफुल ट्यून एज वेल. और ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब पापा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पापा जी. ये गीत आपके लिए होगा. आप क्या याद करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. साजिद पलवान फ्रॉम मैनचेस्टर से, ये गीत आपके लिए होगा. और साजिद साहब हैं फ्रॉम शफीर से हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. और साजिद साबरी साहब जो हमारा मोहतरम भाई दोस्त हैं इन स्कॉटलैंड में, हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, ये गीत आपके लिए भी होगा. राय अजहर हुसैन साहब, डॉक्टर राय अजहर हुसैन साहब, ये गीत आपके लिए होगा. आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून. बहुत ही खूबसूरत गीत है और मेरा फेवरेट गीत है. उन गीतों में एक गीत ये भी है और क्या कहेंगे इसके बारे में, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है. Wow, what a beautiful track, and that was a wonderful tune, one of my all-time favorite. Geet bhi hai, movie bhi hai, aur uske bare mein jitni bhi main tareef karu kam hai. Aur hame acha lage ki aap hamara saath de rahe hain. Thank you very much, aapka bhi aur aapka bhi shukrgazar hu, mamnoon hu ki aapne bhi hame yaad kiya hai aur phone karne ka, uzra afzai karne ka. Bahut bahut shukriya. Sheffield mein hamara program suna ja raha hai, bahut bahut shukriya. Chaudhary Kiram sahab, bahut bahut shukriya aapka bhi. Thank you very much phone karne ka, uzra afzai karne ka, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. और ये जो मूवी थी, मेरी पहली मूवी थी, मैंने देखी है और मेरी फेवरेट मूवी है और इसमें ये गीत है. और वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी. और ये इस मौसम के बारे में हो रही है. एंड दैट वाज द फर्स्ट मूवी वी एवर वॉच्ड एंड दिस वाज द मूवी. और व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी. एंड दिस इज मेरे दिल के करीब है. और क्या मूवी थी. एंड दैट वाज गोइंग बैक इन मेमोरी लेन. And that was Aamir Khan's first movie, Juhi Chawla thi. Aur isme, aur Aamir Khan. And ye jo movie hai, isme itni memories hain. And going back in time when we were in university. And yes, and uni, college. And that was the time when we had this movie came out. And it was something unique, something different. And wow, what a beautiful. And that was the movie. And then now in 2026, it was the movie Sayara. And if you're not seeing the movie, you need to watch. These are the movies that are something different, something unique and wonderful, a storyline, a wonderful movie. And this is the movie that I'm going to be talking about, and I can talk about all day long. I could tell you everything what happened in this movie A to Z. What an amazing movie. Enjoy.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 103.2 FM. Baba Shukriya, aap sab doston jo bhi mere bhen bhai hain, saathi hain, doston baba aziz hain. Baba Shukriya, and you kept me busy between hours of 8 and 9. Bahut bahut shukriya jinhone mujhe busy rakha aur jinhone phone kiya, hazri lagayi hai. Bahut bahut shukriya aap sab ka bhi. Anyway, moving on to the beautiful track yahan pe hoga aur hamara saath de rahe madrasa ke anisab hain, hamara saath de rahe hain, baba shukriya inka bhi aur atika sahiba hain और नदीम मंसूर साहब हैं और बहुत शुक्रिया आप साहब का भी आने वाला गीत आपके लिए भी होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हमने पेश करना है और सब सुनने वालों के लिए पेश करना है और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे बहुत खूबसूरत गीत है ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्नर ऑल द साइलेंट लिस्नर्स वाले ऑल द नए आने वाले जो आ चुके हैं सबके लिए गीत होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे और ये वो गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून है और इसको आप एंजॉय करेंगे ऑन व्हाट अ अमेजिंग ट्यून व्हाट अ अमेजिंग track what amazing a movie and what a amazing acting in the movie as well aur ye wo gana hai jo main pesh karne ja raha hu aur enjoy
1: the hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry Sophie Jewelers 119-21-21 Oak Lane Bradford 9 call 01274 056 014

0: Right, that was the hit of the hour. I've been enjoying it. What an amazing tune that was. And yes, every track of Kumar Sanu is amazing and beautiful. Or किसी मुझे फोन के कहते हैं यार वो जो नॉर्मल गाना पेश करते हैं वो आपने आज पेश नहीं किया है तो मेरे भाई मौका ही नहीं मिला है पेश करने का. बहुत शुक्रिया आपका. वो मेरा फेवरेट गीत है. बड़ा बड़ा ही प्यारा गीत है और डेफिनेटली आपके लिए पेश करूँगा जब भी मौके मुझे मौका मिला. बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू. दैट इज़ अमेजिंग ट्रैक. बहुत मशहूर मकबूल गीत है और बड़ा ही कमाल का गीत है. कमाल कमाल है और क्या कहने. बहुत शुक्रिया आपका भी. एनीवे यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is 12 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep a lockdown with the power of his gun. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी. ब्रेक के फौरन बाद वी गोना गो बैक विद अ लाइव कॉल का सिलसिला होगा. एंड यस आज धमाका होगा और धमाका धमाका होगा क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं और क्या कहें आप सब हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और एक से बढ़कर एक कॉलर हैं हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा साथ मधु है हमारे साथ जुड़े हुए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Keep it locked.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
7: it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: गलियां गलियां घूमी ते पैरां ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
10: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना.
9: चाचा केड़ा चाचा?
10: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
9: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता.
10: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला है और हमारा साथ देने अतिका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से। वेलकम कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: कैसी तबीयत? ठीक ठाक से? ठीक है आपकी?
1: सब आपकी दुआएं हैं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
1: तो आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, करम करम करम है
1: जी, अल्लाह पाक हमेशा करम रखे,
0: आमीन।
1: और सबसे पहले तो आप आगाज करते हैं, इन नगमों की बात करते हैं हम।
0: जी वाजिब क्या कहना
1: आप, ये जो हसीन रात आती है
0: जी,
1: दो वीक में दो दिन
0: जी जी वाजिब क्या कहना,
1: और नंगे महफिल की जब महफिल सजती है तो हसीन नगमों से उसका आगाज होता
0: है, वाजिब।
1: तो ये जो आप आगाज करते हैं ना उसको, ये आपकी जो रंगे महफिल की महफिल है उसको चार चांद लगा दे,
0: वाह जी वाह क्या कहने, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, क्या कहने।
1: खूबसूरत नगमे होते हैं, इतने खूबसूरत कि मैं उनको सॉन्ग नहीं कहती, नगमे कहती,
0: नगमे कहते हैं, वाह जी वाह क्या कहने, वाह।
1: सॉन्ग कहते हुए थोड़ा सा अच्छा है लेकिन नगमे कहने से मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है,
0: वाह जी वाह क्या कहने।
1: बहुत खूबसूरत नगमे आप लगाते हैं कि जिसकी मैं सोचती हूँ कि दोबारा सुनने को मिलते हैं बहुत मुश्किल से आपकी महफिल में।
0: जी वाह जी वाह,
1: बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी वाह जी, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल पे कमाल हो गया,
1: कमाल करते हैं,
0: कमाल हो गया जी। और हमारे अरशाद भी आ गए, कमाल भी आ गए, और क्या कहने,
1: आपका कमाल बहुत मशहूर हो गया।
0: कमाल तो मशहूर है, दुनिया में मशहूर हो गया, क्या है ना, कमाल साडा मशहूर हो गया और कमाल कमाल ही हो गया,
1: क्योंकि कमाल करते हैं तो कमाल होता है।
0: हाय हाय क्या कहने, कमाल करते हैं तो कमाल होता है। और वाजिबा
1: इस रंगे महफिल के सब इस जो सितारे हैं चांद है सबको बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले तो हमारी सुमित्रा जी हैं, गिदर भाई हैं, जो के आते ही धमाल मचाते हैं,
0: धमाल मचाते हैं, आज कमाल करेंगे डेफिनेटली, वाह।
1: वो हमेशा ही कमाल करते हैं,
0: वाकई इसमें कोई शक नहीं है।
1: कमाल उनके घर में रहता है।
0: कमाल उनके घर में रहता है। वाह जी वाह क्या कहने। और हमारे शकील साहब हैं, और शकील साहब क्या कहने आपकी भी, कमाल कमाल।
1: शकील साहब तो कमाल से कमाल ऊपर चले जाते हैं।
0: वाह जी वाह क्या कहने, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, क्या कहने, वाह।
1: उनको बहुत बहुत सलाम। तो सुमित्रा जी हैं, गीदर भाई हैं, उनके मैसेज का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि कभी नहीं भूलते, हमेशा मैसेज करके बुलाते हैं कि चले गाड़ी में बैठ जाए।
0: वाह जी वाह।
1: तो अपनी रेखा जी हैं, नसीम जी हैं, शाहपरी हैं, रेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, चौधरी फयाज साहब हैं जो कि आएंगे, और हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत अपनी सॉन्ग तो वो नहीं अब सुनाते
0: जी,
1: खैर वो जो
0: शायद आज सुना दें, देखते हैं क्या होता है कि दो उनकी फरमाइश आ चुकी है, दो बंदे उन्होंने कहा कि गाना गाएंगे, देखते हैं क्या होता है।
1: नहीं अभी वो गाने गाते नहीं है
0: जी,
1: बस वैसे ही सब लोगों को टरका देते।
0: अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है।
1: तो हो सकता है शायद सुना भी दें
0: जी।
1: तो अपने नदीम मंसूर साहब हैं, जो कि अपनी मिसाल आप हैं।
0: आए हा हा क्या कहने, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं आज, वाजिब क्या कहने उनका,
1: खूबसूरत नगमे सुनाते हैं वो भी,
0: बहुत खूबसूरत। अभी भी मुझे याद है, मुझे पिछले माशाल्लाह हफ्ते से, दो हफ्ते हो गए, वो अभी भी वो गाना गूंज रहा है और बड़ा ही कमाल का गीत गुनगुनाते हैं जी,
1: हमेशा ही उनकी अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे,
0: आमीन।
1: खूबसूरत सुनाते हैं नगमे। पापा जी हैं, पापा जी का बहुत वेट करते हैं,
0: पापा जी आज आएंगे, उन्होंने हमें फोन किया है, वो कहते हैं हम आएंगे, आप फोन उठा रहे हैं क्या करें, तो आएंगे आएंगे वो, आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे वो हमारा साथ देने,
1: वो जरूर आएंगे
0: जी,
1: साहब हैं
0: जी,
1: वो महफिल लूटेंगे आके,
0: लूटेंगे जी, क्यों नहीं, क्योंकि उनका पूरा मौका है, पूरा मौका।
1: अब बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि उनके एक गाना है तस्वीर बनाता हूँ, आज मैं थोड़ा सा उनके लिए और सबके लिए थोड़ी लाइनें सुनाऊंगी
0: जी जी, गो अहेड।
1: सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, वाजिद भाई हैं, सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, ऐसे रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, वो भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं, इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। तारिक भट्ट साहब हैं, राना नवीस साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, ईशान भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, और राव अजहर हुसैन साहब हैं, उनका भी बहुत वेट है कि वो आए और अपनी आवाज सुनाएं
0: जी जी,
1: तो इंशाल्लाह सब आएंगे
0: जी।
1: तो ये हैं अशआर, सबकी नजर करेंगे
0: जी जी,
1: कहते हैं कितनी हसी रात थी जब जिंदगी से मुलाकात हुई।
0: वाह क्या कहने,
1: चांद भी ठहरा हुआ था दिल की हर बात हुई।
0: वाह,
1: चांद भी ठहरा हुआ था दिल की हर बात हुई।
0: वाह,
1: आंख ने चुपके से देखा ख्वाब सा चेहरा आया।
0: वाह,
1: फिर पलकों की चिलमन से करामात हुई। फिर पलकों की चिलमन से करामात हुई।
0: वाह,
1: जिंदगी हाथों में मेरे रख गई कुछ रोशनी।
0: वाह,
1: जिंदगी हाथों में मेरे रख गई कुछ रोशनी, शबे वसल थी मेरी तकदीर से बात हुई।
0: वाह,
1: दर्द के सहरा में जैसे अब्रे रहमत आ गया, दर्द के सहरा में जैसे अब्रे रहमत आ गया, प्यास बुझती गई मट्टी से मनाजात हुई। एक लम्हे को लगा जैसे हर एक गम सो गया।
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: एक लम्हे को लगा जैसे हर एक गम सो गया। गमजदा दिल को खुशी की फिर मराआत हुई।
0: वाह,
1: रात डलते ही वो मंजर ख्वाब बन कर रह गया। रात डलते ही वो मंजर ख्वाब बन कर रह गया।
0: वाह,
1: सुबह ने पूछा बताओ रात क्या बात हुई।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: सुबह ने पूछा बताओ रात क्या बात हुई। मैंने हंसकर बस यही कहा सुने वक्ते नवा।
0: वाह क्या कहने,
1: मैंने हंसकर बस यही कहा सुने वक्ते नवा।
0: वाह,
1: बहुत हसी रात थी जब जिंदगी से मुलाकात हुई।
0: वाह क्या कहने,
1: बहुत हसी रात थी जब जिंदगी से मुलाकात हुई।
0: वाह,
1: कितनी हसी रात थी जब जिंदगी से मुलाकात हुई।
0: वाह,
1: चांद भी ठहरा हुआ था दिल की हर बात हुई। मत पूछ मुझसे नाम मेरा मैं बिन मौसम की परवाही।
0: वाह,
1: मैं दरियाओं की गहराई।
0: वाह,
1: मैं हूँ पर्वत की ऊंचाई। मैं कोसे कजा की रानाई।
0: वाह,
1: मैं नखलिस्ताने सहराई। पाबंदी से क्या काम मेरा।
0: वाह,
1: मत पूछ मुझसे नाम मेरा।
0: वाह,
1: मैं अकलो अमल में दानाई। मैं इश्के जनों में सौदाई।
0: वाह,
1: मैं शोहरत इज्जत रसवाई। मैं खुद महफिल में तन्हाई। है दुनिया मेरा अलहाम मेरा।
0: वाह,
1: मत पूछ मुझसे नाम मेरा।
0: वाह,
1: मैं ख्वाबीदा सी खुशबू हूँ। मैं एक आसेब हूँ जादू हूँ।
0: वाह,
1: मैं शोला हूँ मैं जुगनू हूँ।
0: वाह,
1: मैं दश्तो दामन का आहू हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैं हर जा हूँ मैं हर सू हूँ। सह पाए ना कोई दाम मेरा।
0: वाह,
1: मत पूछ मुझसे नाम मेरा।
0: वाह,
1: हैरत की ओज कमाल हूँ मैं। अनदेखी सुनी तमसाल हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैं राहते हजनो मलाल हूँ मैं।
0: वाह,
1: मैं हासिल एक ख्याल हूँ मैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: अब भी है तुझे अबहाम मेरा। मत पूछ मुझसे नाम मेरा।
0: वाह वाह,
1: मत पूछ मुझसे नाम मेरा।
0: वाह,
1: गजल को जब सजा के सूरते महबूब लाया हूँ। सुनो ए अहले सुखन, मैं फिर नया सलूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: कहो दस्ते मोहब्बत से हर एक दर पे ये दस्तक क्यों। कहो दस्ते मोहब्बत से हर एक दर पे ये दस्तक क्यों।
0: वाह,
1: कहा सबके लिए मैं प्यार का मकतूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब,
1: कहो क्या दास्तां लाए हो दिल वालों की बस्ती से। कहा एक वाकिया मैं आपसे मंसूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: कहो ये जिस्म किसका जान किसकी रूह किसकी है। कहा तेरे लिए सब कुछ मेरे महबूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब,
1: कहा तेरे लिए सब कुछ मेरे महबूब लाया हूँ।
0: वाह,
1: कहो कैसे मिटा डालू अना मैं इल्तिजा करके। कहा मैं भी तो लब पर अर्ज़े ना मतलूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: कहो सारा जहाँ कैसे तुम्हारे घर के बाहर है। कहा सब जिसके दीवाने हैं वो महबूब लाया हूँ।
0: वाह,
1: कहो पनहा क्या है क्या दिल पर्दा नशी हमसे।
0: वाह क्या कहने,
1: कहा वसले निहा की ख्वाहिशे महबूब लाया हूँ। कहो टूटे हुए शीशे पे शबनम की नमी कैसी।
0: वाह,
1: कहा कल्बे शिकस्ता दीदाए मर्तूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: कहो गम लाए हो कितना मोहब्बत में बिछड़ने का।
0: वाह,
1: कहो गम लाए हो कितना मोहब्बत में बिछड़ने का।
0: वाह,
1: कहा बस ये समझ लो गिरियाए याकूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कहा तकलीफ लाया हूँ नहीं है इंतहा जिसकी। कहा मैंने भी तो वहीं से दामने अयूब लाया हूँ।
0: वाह क्या कहने।
1: कहो गवाज क्या लाए हो हिजरे बहरे दिल के होते से। कहा लाया हूँ जो कुछ भी बहुत ही खूब लाया हूँ।
0: वाह।
1: कहा क्या लेके आए हो जहाने बेवफाई से।
0: वाह।
1: कहा एक चश्मे हिरा एक दिले मजरूब लाया हूँ।
0: वाह।
1: कहो तोहफा अशार में क्या लेके आए हो। कहो तोहफा अशार में क्या लेके आए हो।
0: वाह।
1: कहा शेरों की सूली पर दिले मतलूब लाया मसलूब लाया हूँ।
0: वाह क्या कहने।
1: गजल की फिर सजा के सूरते महबूब लाया हूँ।
0: बहुत खूब।
1: सुनो अहले सुखन मैं फिर नया सलूब लाया हूँ।
0: क्या कहने।
1: तो थोड़ा सा अपने अब्दुल कय्यूम साहब का खूबसूरत वो गाना गाते हैं और मेरा भी पसंदीदा है
0: जी जी।
1: तो अक्सर ही उन वो गाते रहे हैं तो मैंने भी दो दफा ये गाया
0: जी।
1: तो आपकी अगर इजाजत हो
0: जी जी जी क्यों नहीं जी गो अहेड।

0: बनती
1: बहुत खूब
0: तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती तस्वीर नहीं बनती
1: बहुत खूब
0: एक

दुनिया में चले आओ, तरसती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ।

0: वाह, कमाल का दिया, कमाल का दिया, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई हैं और अशआर भी पेश किए और गाना भी गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और बहुत खूबसूरत गीत आपने चुना, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, दैट वाज अतीका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे नदीम मंसूर साहब दे रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: सोनक की हाल चाल ठीक है, ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ की हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, करम करम करम मौला दा करम है और आप भाइयों की दुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: जरूर जरूर जरूर
0: माशाल्लाह। और आज क्या लेके आए हमारे लिए? आज
1: आज गीत है कि बहुत जिताते हो चाहते,
0: हाय हाय हाय हाय बहुत
1: कुछ पैसे निवाह हमसे
0: हमसे, हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने मेरे भाई, और अपने जमाने का बहुत खूबसूरत गीत है
1: जी जी। ऐसा ही एक तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आपको इंडिया की वादियों में लिए
0: जाए, हाय हाय बहुत खूबसूरत, और गोविंदा की मूवी है और इसमें जो नीलम है और क्या कहने की खूबसूरत जोड़ी थी उस दौर की और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्या कहने आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आजकल जो चॉइस की आपकी म्यूजिक की बड़ी खूबसूरत है, बड़ा ही कमाल के गीत गुनगुनाते हैं और आजकल छा गए मेरे भाई, छा कमाल हो गया, कमाल हो गया,
1: जजाकल्लाह शुक्रिया,
0: वाह जी वाह, क्या कहने जी।
1: चले मैं इसको इसको कोशिश करता हूँ
0: जी जी जी, गो अहेड।
1: ओ
0: हाय हाय
1: ओ
0: हाय हाय हाय हाय,
1: बहुत जताते हो चाह हमसे,
0: हाय हाय वाह,
1: बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे

0: वाओ।
1: ये दर्द क्या है करार क्या है,
0: वाह,
1: तुम्हें पता है ये प्यार क्या है, दीवाना

नजर में चेहरा तराश लूंगा, तुम्हारी सांसों की प्यास लूंगा।

0: है मेरी तो हाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे थी कब से तुम्हारी हसरत,
1: वाह।
0: मिला

0: हुआ।
1: तुझे तो चाहा है अपने दम पर, किसी ने हमको जुदा किया तो खुशी के मौसम में गम दिया तो।
0: वाह।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कमाल कर दिया मेरे भाई, कमाल कमाल कमाल कमाल, क्या गाना गुनगुनाया मेरे भाई। 1993 का गाना था और क्या मूवी थी और क्या गाना आपने चुना है, और आपकी आवाज़ को हम सल्यूट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पे। और मिशन, क्या आवाज़ मेरे भाई ने पाई है, बहुत ही खूबसूरत है और किसी की नज़र ना लग जाए। और हम हमेशा ही आपके लिए दुआएं करते हैं मेरे भाई, और वैसे भी आपकी कल छुट्टी है, देखते हैं कि नेक्स्ट आवर में कौन सा गीत लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई आप आए और बाहर आ गई है, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। और जो गाना आपने चुना है, वाओ, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने।

0: वो भी दौर था जब ये कसर को फॉरवर्ड करना था ना, तो आगे से फॉरवर्ड कर रहे हैं। आजकल ये टेक्नोलॉजी है और क्या कहें,
1: एक क्लिक पे गाना तैयार,
0: एक मिनट में, एक सेकंड में वो उसको हाथों से वो फॉरवर्ड कर सकते थे। और आजकल जो है ना, यहाँ पे कंप्यूटर राइज है, वो यहाँ पे हाय हाय

0: कमाल का दी मेरे भाई और मोहम्मद अजीज साहब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और उनके लिए हम दुआ गो हैं माशाल्लाह। और क्या बात है, क्या बात है, उनकी भी वो अपने दौर के एक बादशाह थे माशाल्लाह, क्या कहने वो और शबीर कुमार साहब, किशोर कुमार साहब, और उस तो बाद जब से आए कुमार सानू जी ने, आए हाय हाय क्या कहने, कुमार सानू ने तो मैंने कहा और धूम मचा दी और क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारा दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। हमारा साथ देने गिदन भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं
0: आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास A1। आप सुनाए, कैसे ठीक है आपकी?
1: हाँ जी एकदम ठीक ठाक है। जब अतिका जी ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया।
0: हाय हाय रिकॉर्ड तोड़ दिया, कितना खूबसूरत गीत गुनगुनाया, वेरी नाइस ब्यूटीफुल।
1: हाँ वही हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सभी।
0: और सभी आज, आज हमारे हमारे मोहतरम भी गाना गुनगुनाएंगे, हमारे चौधरी फरियाद साहब
1: है?
0: हाँ वो गाना गुनगुनाएंगे, उनको उनको मैं कह रहा हूँ गाना गुनगुनाएंगे, एक सेकंड उनको होल्ड करेंगे, उनको कहेंगे वो गाना तैयार करें।
1: आज आज आज वो गुनगुनाएगा तो मैं उसको डबल उस्ताद मानूंगा।
0: ठीक है, मैं एक एक सेकंड होल्ड करें, मैं उनको कहूंगा गाना तैयार करें। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। और यहाँ पे हमारा साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू चौधरी फरियाद साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी फरियाद
2: बिस्मिल्लाह।
0: और बिस्मिल्लाह आपकी फरमाइश है, आपने गाना तैयार करें, गाना तैयार करें, गाना आपको गुनाएंगे, गुनगुनाएंगे हमारे, आपकी फरमाइश है। दो तीन आप हवा के दोष में, आप हवा के दोष में, हवा के दोष में, हवा के दोष में है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा होल्ड करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: हाँ जी बोलो।
0: हाँ जी जी जी बिस्मिल्लाह करें चौधरी साहब, बस देखते हैं क्या होता है, उनको हमने पैगाम पहुँचा दिया जी।
1: तो आप मेरे साथ बात करते हैं ना?
0: जी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी जी, वो आपको सलाम पेश करें, सलाम पेश करें जी जी।
1: तो सबको पहले सलाम मैं बोल दूँ, जो हमारा शकील भाई बनली वाला है
0: जी,
1: जावेद मीर भाई है
0: जी,
1: मोहम्मद हनीफ भाई है, साजिद भाई है, वाजिद भाई, हमारा उस्ताद चौधरिया चौधरी फरियाद भाई है
0: जी,
1: सजाद तिरवान है, इकबाल भाई है
0: जी,
1: सईद एहसान साहब है,
0: वाह
1: शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब है
0: जी,
1: हमारा मोहम्मद रफी जी है,
0: वाह,
1: फिर हमारा परवेश खान भाई है
0: जी,
1: हमारी बीना समीमा खान है
0: जी,
1: फिर आसिया जी है, अतिका जी है, जमीना जी है
0: जी,
1: समा जी है हमारी यकीन से,
0: वाह जी वाह,
1: सिमी जी है, रेखा जी है, हमीदा जी है,
0: जीतारा
1: जी है, मिस्टर पटेल है, और अतिका जी का जितने जितने लिस्ट है उन सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो आज जो गाना है आज लता जी का है।
0: हाय हाय क्या कहने जी।
1: तो मैं भी लता जी का और आपकी भाभी जान भी लता जी की जाएगी
0: जी जी, कोई कोई कोई को, को, को बात नहीं, लता जी वेरी पॉपुलर सिंगर है जी जी, बहुत अच्छी सिंगर है।
1: कोशिश करता हूँ क्योंकि वो तो आवाज आए निकलेगी नहीं हमारे से।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, गो अहेड, क्यों नहीं, आप अच्छे सिंगर हैं।
1: सिर्फ

0: ना जुदा करना,
1: वाह
0: बचपन की मोहब्बत को
1: वाह,
0: दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए
1: वाह
0: मिलने की दुआ करना,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना,
1: वाह।
0: जब याद

0: लूटने लिए जाते हो, जो गम दिए जाते हो उस गम की दुआ करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना।
1: क्या कहने क्या

0: बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। थैंक यू जी।
1: कमाल कर दिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या गीत आपने गुनगुनाया, और वेरी वेरी पॉपुलर मूवी, वेरी ब्यूटीफुल। और अतिका साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हमारे पापा जी का ये फेवरेट गीत है, उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह, ये बहुत मशहूर गीत है।

0: राइट वेलकम बैक लिस्टनर, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारी भाभी जान सुमित्रा जी हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, और माशाल्लाह क्या कहने, और बहुत ही खूबसूरत हमारी फैमिली है माशाल्लाह, और उनको हम थोड़ी देर के बाद कहेंगे थोड़ा जो होल्ड कर लें क्योंकि मैंने यहाँ पे अजान भी पेश करनी है, वो भी हमारे लिए और सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम भाभी जान को कहेंगे, वो भी माशाल्लाह हमेशा ही कहती हैं कि अजान नहीं आई है, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी माशाल्लाह, और आज उनकी मुराद पूरी होगी है और उनकी मन्नत पूरी होगी माशाल्लाह, क्योंकि अजान भी यहाँ पे होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हम भाभी जान के कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और भाभी जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम भैया।
0: भाभी जान बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई हैं, आपने थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे अजान पेश करनी है, तो आपकी भी जो हमेशा आप कहते हैं कि हम सुनने के लिए हाजिर हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज हम अजान भी सुनेंगे साथ में, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: खुदा का नाम आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है
0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह, देखो ये खूबसूरत

बात आपने की है और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड यू नो व्हाट यू मेड माय इवनिंग टुडे एज़ वेल बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा कि इतनी आपने अच्छी बातें करती हैं गुफ्तगू करती हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे थोड़ी देर के बाद दोबारा हम कलाम होंगे और यहाँ पे 5 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे और फौरन उसके बाद हम नेक्स्ट आवर में आपको लेके जाएंगे क्योंकि आपने हमें टाइम देने बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जान थैंक यू वेरी मच एंड वी ऑल अप्रिशिएट योर वैल्युएबल टाइम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच दैट वॉज हमारे भाभी जान सुमित्रा जी और हमारे गिदन भाई एंड थैंक यू वेरी व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह देखो कि अजान अभी हम पेश करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अजान शो नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं यहाँ पे मैं हूँ और मैं यहाँ पे अजान पेश करूँगा और अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल देख के सुन के अपने नमाज अदा करेंगे मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करेंगे और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबको और हमारे मुर्शिद के लिए दुआ करें उसके लिए बेहतर हो जाए कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा हो जाए हम सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे वाजिद भाई हैं मोहम्मद नीर साहब हैं वो बीमार हैं उनकी खसूसी दुआ करनी है और सबको जो भी बीमार हैं उनके लिए खसूसी दुआ करनी है और मेरे लिए दुआ करनी है और हमारी फैमिली के लिए दुआ करनी है मेरी पूरी टीम के लिए दुआ करनी है मेरे सनराइज जो लिसनर की दुआ करनी है खीप ए लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 FM

الكبار و... أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिस्टनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं हमारे पापी जान हैं सुमित्रा जी हैं वेलकम कहेंगे जी हैं कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सर बिस्मिल्लाह कहेंगे उनको उन्होंने इंतज़ार भी किया वेट भी किया बहुत बहुत शुक्रिया उनका और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी पापी जान जी पापी जान हाउ आर यू आर यू गुड माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच आप जी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह कि ये भी आप केनिया में माशाल्लाह उन्होंने परवरिश हुई आपकी माशाल्लाह वहाँ पे तो बहुत और जम्बो जम्बो जम्बो हमारिया क्या कहने वाह जी वाह क्या कहने बहुत अच्छा लगा बड़े दिनों के बाद जी जी
1: चलो मैं सबका नाम बोल दूं पहले
0: जी जी गो अहेड
1: हमारा शकील भाई बल्ली वाला जागीर भैया है
0: जी
1: मोहम्मद हसन भैया को खुदा दुआ करेंगे
0: जी जी
1: राजीव भैया के लिए
0: जी
1: जितने लोग बीमार है सब खुदा हम
0: जी जी
1: साजिद भैया
0: जी
1: चौधरी फरियाद भैया है सलमान भैया है इकबाल भैया है
0: जी
1: सैयद एहसान भैया लंदन वाला है
0: जी जी माशाल्लाह उन्होंने गाना गुनगुनाया था लास्ट प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में तो उन्हें आपके लिए उन्होंने पेश किया था जी
1: बहुत अच्छा गाया हमेशा आया करे तो अच्छा लगता
0: है जी जी माशाल्लाह
1: शफीक भैया है डॉक्टर मलिक साहब है मोहम्मद रफी भैया है
0: वाह
1: अब्दुल कयूब साहब है
0: वाह
1: हमारे सती सहल में आशिया जी है हमारे अतिका जी है
0: जी
1: सिमी जी है
0: जी
1: समाज
0: जी
1: रेखा हमीदा जी सारा जी जितने लोग सुनते सबका मेरा बहुत बहुत
0: वालेकुम अस्सलाम
1: सलाम भैया
0: जी वालेकुम अस्सलाम
1: तो मैं छोटा गाना गा लेती हूँ
0: जी जी
1: एक भैया ने गाना गाया था लास्ट वीक मेरे को नाम नहीं किया
0: जी जी
1: टावर हाउस का गाना
0: हाँ हाँ हाँ टावर हाउस का अब्दुल कयूम साहब अब्दुल कयूम साहब
1: अब्दुल कयूम साहब ने
0: जी जी
1: तो मैं वही गाना
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने तू बहुत खुश फिर गीत जी जी जी
1: बहुत पसंद
0: जी
1: ये मेरी दिले
0: हाय क्या कहने
1: गम से न घबरा
0: वाह
1: मेरे दिले नादाना एक दिन तो समझ लीजिए दुनिया तेरा अफसाना मेरे दिले नादा दम से न
0: क्या कहने
1: पर के हुए शोलो को
0: वाह
1: और हवा दे दे
0: वाह
1: तो बन जाए
0: वाह
1: ये जिंदगी अफसाना ये मेरे दिल ना
0: वाह
1: तू गम से न घबराना
0: क्या कहने क्या कहने
1: पर याद से क्या हासिल
0: वाह
1: होने से नतीजा क्या बेकार की बातें इन बातों से होना क्या
0: वाह क्या कहने
1: भी करी घर में बन जाता है भी गाना मेरी दिल नादा समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना मेरे दिल नादा
0: वाह
1: एक साहब के लिए गाया।
0: वाह जी अब्दुल साहब के लिए लकी यू अब्दुल कीम साहब क्या कहने क्या गीत आपने चुना है और बड़ा ही मशहूर मकबूल गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमें अच्छा लगा और दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्या कहते हैं कि महफिल लूट लिए। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। नदीम साहब ने तो कमाल ही करते हैं उन्होंने तो वाकई कमाल करते हैं बहुत आप भी कमाल कर दें। वालेकुम सलाम और आपका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं शमा जी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं टिकट साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं सिमी जी शुक्रिया अदा कर रही हैं आपका वो फूल भेजे उन्होंने और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हैं और इतना खूबसूरत है आपने गाना चुना है और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत आवाज़ है बड़ी प्यारी आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया। That was amazing a couple और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और यहाँ पे हमने क्या करना है छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारे साथ माशाल्लाह हमारे मोहतरम हमारे भाई आ गए हैं और छा गए हमारे चौधरी फरियाज साहब आ गए मोहम्मद रफी साहब आ गए रफी साहब जी आपने खुश आमदीद वेलकम है और वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: At 10. Forever loved, forever missed, forever our superhero. That's how PC Matthew Blades has been remembered in a tribute from his wife. He died alongside PC Tom Clough when their patrol car was hit by a Volkswagen on the wrong side of the A66 near Middlesbrough. Five males aged between 17 and 23 who were also travelling in the Passat were killed. Our North of England correspondent Tom Parmenter summarises the police watchdog's early findings.
4: The independent investigators have revealed that the Volkswagen Passat had cloned number plates. That's why they were alerted to it. Multiple police teams pursued it for 7 minutes through the streets of Middlesbrough.
3: Cross Country says it expects to run a full service tomorrow after a power cut resulted in almost all trains being cancelled today. Passengers are being asked to check before they travel. Two men aged in their 20s and 50s arrested in connection with a stabbing in County Antrim have been released. It happened in Newton Abbey just before 8:30 yesterday morning. A British energy site was reportedly attacked by Iranian hackers and shut down for 4 days last month. In a statement, the government insists there was no risk to the UK's energy system, which it's described as highly resilient. The England and Wales Cricket Board are investigating after footage showed Bride and Carse in handcuffs outside a nightclub in Derby last night. It's understood the Durham fast bowler was briefly detained by police, but not arrested. In sport, Liverpool rescued a point with a very late penalty as they drew their Premier League opener 2-2 at Newcastle. New boss Andoni Iraola feels it was a fair outcome.
5: It's not the result you wanted before the game, but obviously finishing scoring in the last minute, it gives you a better taste probably. I don't think we deserve to lose.
3: Manchester City began life under Enzo Maresca with a 2-1 win against Bournemouth thanks to an injury time goal. Brighton thrashed Aston Villa 4-0 in their first game, but Villa were reduced to 10 men. That's the latest. I'm Connor Sefton.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम बाबा शुक्रिया खबर दोस्तों का। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फियाज साहब, वो पाकिस्तान से फ़ोन कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया उनका भी। और हमने यहाँ पे सोचा कि क्योंकि हम लोग की क्रेडिट वेस्ट ना हो, और यहाँ पे
1: सनराइज रेडियो your soundtrack your
0: time in the studio is 6 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the power is gone. Aur bahut acha laga aur aap hamara saath de rahe hain, aur yahan pe kahenge assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hamare ladle aa gaye aur acha gaye
2: bismillah
0: karam alaikum salam ji karam aur ji ano khush amdeed shone the mon mon अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र करम करम करम मौलाना ने करम है क्या कहने माशाल्लाह
2: जी सलाम शुरू करा
0: बिस्मिल्लाह करो जी मैं तो पहले सोचा शायद हमारे लेन कटी गई है ना मैं कोशिश की थी कि कनेक्ट करा मैं दो तो फोन की था गिदन भाई की तो मैं ऑन एयर खड़े ना तो ज़ाहिर है वो पीछे आवाज़ नहीं सुनी है ना तो पीछे तो खड़े हुए उधर आवाज़ नहीं आई है फिर मैं होल्ड कर दी हो गया मैं चलो तो को ना है कि गाना गाना गनाओ तो आज बड़ी फरमाइश आई है कि गाना जो ना गुनगुनाओ ज़ाहिर है तो वहाँ क्या कि नहीं क्योंकि और टाइम तो आज
2: मैं माफ़ी मांगना,
0: माफ़ी नहीं कह मैं कोई बात नहीं चलो मेरे भाई उन्होंने अपना प्यार किया तो उन्होंने कि चौधरी साहब गाना गाशन तो आज मनी जैसा क्या हाल है तो वैसे तुम्हें सारे मनने क्या हाल है कोई बात नहीं क्या हाल है कोई बात नहीं जी जी
2: सब वाला शुक्रिया
0: जी
2: सब तो पहले अतिका बाजी ने उन्हें की मेरा बहुत बहुत सलाम नशीन जी ने उन्हें की मेरा बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम
2: सलाम सलामत रखन
0: जी आमीन
2: सिमी जी ने और उन्होंने अम्मा जी ने गजाला बाजी ने उमर कुसुम जी ने
0: जी
2: सीमा जी ने शाहपुरी जी ने दिलेखा जी ने सारा जी
0: जी
2: बाबे साहिबा गिदर भाई फरजाना जी ने सहमा जी और सानिया जी इन्हें सहमा की मेरा बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम सलाम
2: मोहतरम अमर भाई ने महबूब लाई साहब ने मुदस्सर साहब ने अजी सलीम साहब ने चौधरी मीर सिंह चक्की वाले ने शकील साहब ने हीरा साहब ने वाजिद भाई ने अयूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई अब्दुल किजोम भाई नवीद राणा साहब ने जनाब तारक बाग साहब ने चौधरी मुजफ्फर साहब ने चौधरी आसफ रियासत साहब ने और डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने चौधरी रखार साहब ने एम खान साहब ने नदीम मंसूर साहब ने राजा वकार साहब ने राजा साहब ने चौधरी मनीर सैन मेरा भरा और मुजफ्फर अली साहब ने महमूद साहब ने राजा शोएब साहब ने
0: जी
2: और मनीर सैन अली और भी जितने संगीत साथी ने भाई मोहम्मद हनीफ साहब ने लीज
0: जी
2: और भी जितने संगीत साथी ने सब की मेरा बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहु
2: बिस्मिल्लाह करा
0: बिस्मिल्लाह
2: किसने के आका आओ जे सबा पैगंबरां दे
0: सुभान अल्लाह
2: आका आओ जे सबा पैगंबरां दे रखियां होयां और दीखा ने देर दिया
0: आहा हा हा क्या कहने
2: तेरी आमद दियां खबरां किताबां सचियां तेरी आमद तो पहले ही केर दियां सोना नाम मोहम्मद ओ कशिश वाला लगन जुरता की जबर देर दियां रीसा करण सवेरा रहीम साईयां 12 रबी अलावल सवेर दियां
0: सुभान अल्लाह क्या कहने
2: बिस्मिल्लाह करा खालक ने अपने मखलूक ताई 12 रबी अलावल अनाम दिता अनसनियत दा पौधा परवान चढ़िया ते खलूस दा ए फैज आम दिता हथ रखिया यतीमा दे सरा उते अथरू पूंज दिलासे दा जाम दिता आगे मोहम्मद रहीम ताईया जिना दुनिया दा बदर निजाम दिता
0: क्या कहने
2: मजाज ने रंग
0: जी जी
2: एक दो शेर उर्दू च अली हमजा साहब ने
0: हाय हाय हाय क्या कहने
2: सरकार लिखने ने के जी बिस्मिल्लाह महबूब बिछड़ गया
0: जी
2: ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ
0: ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ
2: लिखने के मुद्दत बाद वो मिल जनाब बोले मुद्दत बाद वो मिल जनाब बोले वल्ला बड़ा सताती हैं तेरी यादें ना था सोचा ना तुझे बुला पाएंगे अब तो हर पल आती हैं तेरी यादें कुलफत बड़ी यादें हैं याद आती दिल मेरा सलाती हैं तेरी यादें तेरे नाज अंदाज हैं याद आते क्रिया क्रिया रुलाती हैं तेरी यादें
0: वाह जी वाह क्या कहनी
2: तेरा गिले तेरा गले लगाना चूम लेना सीने दर्द जगाती हैं तेरी यादें अपना जुल्म और सितम है याद आता सितम मुझ पे दगाती हैं तेरी यादें याद आती हैं तेरी वफाएं याद आती हैं इतनी वफाएं तेरी बिजली कैर गिराती हैं तेरी यादें तुम ही रहता है ख्यालों में अली हमजा मुझे भूलना पाती हैं तेरी यादें
0: हाय हाय हाय क्या कहने
2: दीवाना आखना मैं उस वे कितने तरले मिंटा कितिया सर
0: जी जी
2: क्या होया कहा था जाओ ना रुक जाओ कहा था जाओ ना रुक जाओ छोड़ जाओ ना जाएंगी मेरी यादें बैठा कदमों में गिर गिराया था मैं बैठा कदमों में गिर गिराया था मैं चला गया तो आएंगी मेरी यादें
0: वाह वाह वाह वाह क्या
2: जिद जुदाई था लिए बैठा अब तो तुझे सताएंगी मेरी यादें
0: वाह
2: मेरी उल्फत वफाएं याद आएंगी शाम और सर तड़पाएंगी मेरी यादें
0: वाह वाह वाह वाह
2: मैं तो सह गया था सितम दर सितम तेरे अब तो तुझे रुलाएंगी मेरी यादें दिल पत्थर दिल मेरा जलाया तूने दिल तेरा जलाएंगी मेरी यादें
0: वाह जी वाह क्या कहने
2: रोते रोते हो जाएंगे खुश कांसू ऐसा कहर उठाएंगी मेरी यादें याद रहेंगी उम्र भर अली हमजा कभी भूल ना पाएंगी मेरी यादें
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने
2: है क्या फिर यादा यादा विच उम्र गुजार बैठा
0: हाय हाय हाय
2: यादा यादा विच उम्र गुजार बैठा शायद तो भुलिया यादा मेरिया नी
0: वाह
2: यादा यादा विच उम्र गुजार बैठा शायद तो भुलिया यादा मेरिया नी
0: वाह
2: आवे रूबरू ते जरा करन दर्शन रइया विच फरकत अखां बतेरिया नी
0: वाह जी वाह क्या कहने
2: ਹੋਇਆ ਆਲੂ ਵੀ ਆਲ ਦੀਦ ਖਾਤਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬਖੇਰੀਆਂ ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਤ ਮਜਜ਼ੂਬੀ ਵੀਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ
2: ਖਲੀਲ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ
0: ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ
2: ਲਿਖਣੇ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਦੁਖੜਾ
0: ਵਾਹ
2: ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਦੁਖੜਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
0: ਵਾਹ
2: ਜਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰ ਜਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
2: ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤੀ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
2: ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲੂ ਐਡਾ ਡਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਵਾਹ
2: ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਵਾਹ ਚੁਰੀ ਕਮ
2: ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ
0: ਵਾਹ
2: ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ ਐਸਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਭੁਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਵਾਹ
2: ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ
0: ਹੋਇਆ ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਨੇ
2: ਕਦੀ ਸੁਣ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ
0: ਆਹਾਂ
2: ਕਦੀ ਸੁਣ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੀ ਦਰਦ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਵਾਹ
2: ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਵਾਹ ਚੁਰੀਖਾ ਵਾਹ
2: ਪਲੀਓ ਪਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਪਲੀਓ ਪਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ
0: ਵਾਹ
2: ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਮਾਰੇ ਆਸਮ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ
0: ਵਾਹ
2: ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਆਸਮ ਰੱਖੇ ਮਾਰੇ ਆਸਮ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ
0: ਵਾਹ
2: ਮੈਂ ਐਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ
0: ਨਾਲ
2: ਆਖਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਤਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖੀ ਕਾਸਤਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਕਰ ਭਲਾ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਭਲਾ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾ ਲੋੜਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀ ਪਲਦਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀ ਪਲਦਾਈ ਮੁੱਖ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਸਦੀਕ ਸਾਈਆਂ और बिछड़े मिले आकर टूटे जोड़े आकर
0: हाय हाय हाय वाह वाह चलिश वाह बड़ी मेहरबानी शुक्रिया नवाज़ जो आए और बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इस वक्त टाइम निकाला फ़ोन किया और हौसला अफजाई की है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे शादाबाद रखे
2: जनाब मैं अर्ज करा के
0: जी जी
2: कहना के दिल रवे वकरा ते अख रवे वकनी
0: हाय हाय
2: दिल रवे वकरा ते अख रवे वकनी जदू लग दिए अख तेरे लग दी नी अखनी इना अखिया विच रावी ते चना पार के इना अखिया विच रावी ते चना पार के दस रोया करेंगी सानू याद करके दस रोया करेंगी सानू याद करके रब ना करे रब ना करे
0: वाह वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया नवादिश बहुत बहुत शुक्रिया आपके फराज आपने दी है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का वाह
2: वाह कुछ बंदे कुछ ऐसे
0: ना गिदन भाई आपके लिए था और अतीका साहब आपके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच की आपने रिक्वेस्ट की है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच नशीन साहिबा के लिए उनके लिए वाह जी वाह शिमी जी के लिए और सबके लिए वाह जी वाह कमाल के लिए कमाल कमाल कमाल और स्पेशली कमाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू राम रखा राम रखा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वाओ ये थे हमारे अपने हमारे मित्र बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगा हमारा साथ देने और ये थे हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया इनका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमारा साथ दे रहे यहाँ पे और जितनी भी मैं इनकी तारीफ करना काम है और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ दे रहे हैं वन एंड ओनली वन मोहम्मद रफी साहब बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश हूँ आपकी दुआओं से
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे टाइम दिया और बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे शाद आबाद रखे कि आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा
2: हमारा काम ही है ना जी
0: वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच
2: और तो हम किसी को सपोर्ट करते नहीं
0: हाय सदके जावा कुर्बान जावा मेरे भाई आई सलूट यू माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का कि आप आए
2: और ना ही लगता है कि हम किसी और को सपोर्ट करेंगे सिवाय आपके
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने माशाल्लाह टाइम निकालते हैं फोन करते हैं हौसला अफजाई करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया
2: क्यों नहीं जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया आई लव यू सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकालते हैं माशाल्लाह मुझे पता है कितने बिजी हैं फिर भी आप आ रहे हैं और ये खुशी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: आपकी अनायत है
0: जी
2: तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
2: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम
0: वाह
2: सभी से जुदा जिसका अंदाज है
0: वाह
2: फलक ताजमी जिसकी परवाज है
0: आहा क्या कहने
2: वही जिन पे हमको नाज है
0: वाह
2: वही जिन पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है
0: आहा हा क्या कहने
2: परवेज खान जी आप ही की तो वो आवाज
0: हाय हाय हाय सदके जावा सदके बहुत बहुत शुक्रिया सर नवादिश
2: और ये जो गीत हैं आपके लिए मुबीन साहिल अमीर साइम डॉक्टर पाशा गुरु भाई भाभी सेबा माजद साहब और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए
0: जी
2: रहमान रहमान रहमान ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले श्याम को ढूंढे
3: पागल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। रहमान करम हो तेरा, हो किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले हो, दुनिया के रखवाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागिन बने गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले।

महल उदास और गलियां सोनी, महल उदास और गलियां सोनी, महल उदास, महल उदास रे, महल उदास और गलियां सोनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन बन सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द

0: रखवाले रखवाले रखवाले।
1: वाह वाह,
0: न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा, न जाने क्यों। हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, मोहब्बत का जुनू हमको कहाँ तक ले चला देखो, तुम्ही ने जान ले ली, हाय हाय, तुम्ही ने जान ले ली और तुम्हें कातिल नहीं समझा, न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों। तड़प भी दी कुछ ऐसी दी के मुश्किल हो गया जीना, चलाए तीर वो तुमने के छलनी हो गया सीना, और उस पर ये सितम है, हाय हाय, और उस पर ये सितम है के हमें घायल नहीं समझा, न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा, न जाने क्यों। ओके सर जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाना आपने चुना, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
0: जज़ाकअल्लाह
1: खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दैट वॉज अ मोहम्मद रफी का वन एंड ओनली वन, मोहम्मद रफी का वाजिबा कमाल कर दिया। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करना कम है, और बहुत बहुत शुक्रिया अनिश साहब पहले, और मैं शुक्रिया करता हूँ, यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं मुदस्सर की अनिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's
8: save water.
10: Looking for a quality home to rent?
11: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
10: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
12: Sunrise and music.
1: Right, welcome back and listening. You're listening to Radio 103.2 FM. And yahan bhi mera saath hai madrasa kyani sabhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh janab.
1: Janab wale kya hal hai theek hai aapki?
13: Alhamdulillah dua suni janab.
1: Mashallah mashallah.
13: Sabse pehle to janab main sare doston ka shukriya ada karta hu jinne is pyari mehfil mein aaye aur na apne hi kuch shayari bayan ki thi, kuch ghazal padhi.
1: Hai hai.
13: اور ندیم منصور ہے سارے بھائی جان اور اتنی سونی آواز ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بڑی سونی آواز دیتی ہے
1: بڑی پیاری آواز
13: میں پہلے بھی پروگرام سننا سا پیا امر بھائی نے پروگرام پرانی غزل پڑھی سی اور ہوں تو پروگرام جی میں سنتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت سونی سریلی آواز ہے
1: بڑی پیاری آواز ہے بڑی خوبصورت جی جی جی
13: اللہ تعالیٰ نے بہت سریلی آواز دیتی ہے اس نے بہت سارے چودھری فریاض صاحب آئے ماشاء اللہ انہیں شاعری پیش کی ہے اور سارے میں سننا سا پیا ماشاء اللہ سارے سونے پروگرام پیش کیتا اچھا جناب سارے کی سلام دعا اکثر جتنے بھی دوست سنگی ہیں سب آئے سننے پہ رجوع کری رہے جناب سارے کی دستک کے لیے سلام اکثر اور سارے تو نیک تمنا اکثر
1: جی جی
13: خدا کرسا اپنے رب جلیل نے بابرکت نام سنو جڑے نہایت ہی مہربان رحیم اور رحمان ہے تے پہلے میں دو نعت نے شعر اکثر
1: ماشاء اللہ سبحان اللہ
13: شاعری پوچھ کرسا
1: جی جی
13: تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول
1: اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
13: تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناوا
1: ماشاءاللہ
13: رسول اللہ
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
13: سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں
1: ماشاءاللہ
13: سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول
1: اللہ
13: میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول
1: ماشاء اللہ
13: اور ایک تسا نے ماشاء اللہ جی میں سنتی ہے اس نے جڑا نا تیرے رنگ رنگ بولا میں دو پر تھا
1: جی جی
13: تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ مولا تیرے رنگ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ ہر سو ہر جا
1: واہ کیا ہر سو
13: تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ
1: بولا تیرے
13: رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا تیرے رنگ بولا
1: ماشاء اللہ کیا
13: رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ بولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے کیا کہنے واہ
13: शेरा के जो मुतमिन है तुझको अजियत में डालकर
1: आहा क्या कहने
13: जो मुतमिन है तुझको अजियत में डालकर
1: वाह
13: वो शख्स तेरा है ही नहीं
1: हाय हाय
13: मत मलाल कर
1: हाय हाय हाय मत मलाल कर वाह
13: जो मुतमिन है तुझको अजियत में डालकर वो शख्स तेरा है ही नहीं मत मलाल कर
1: वाह
13: खुश हो रहा है तुझ पे जो कीचड़ उछाल कर
1: हाय हाय
13: खुश हो रहा है तुझ पे जो कीचड़ उछाल कर
1: वाह
13: कब तक रखेगा अपना गिरेबान संभाल कर
1: वाह वाह क्या निशा
13: खुश हो रहा है तुझ पे जो कीचड़ उछाल कर
1: वाह
13: कब तक रखेगा अपना गिरेबान संभाल कर
1: वाह
13: और शेरा के एक दोस्त मेरे दुश्मनों के साथ जा मिला
1: वाह
13: एक दोस्त मेरे दुश्मनों के साथ जा
1: मिला वाह
13: लाजिम है अब बराना कदम देखभाल कर
1: हाय हाय हाय हाय वाह
13: एक दोस्त मेरे दुश्मनों के साथ जा मिला लाजिम है अब बराना कदम देखभाल कर
1: वाह
13: आधे वफा में एक मुनाफिक के वास्ते
1: हाय हाय
13: आधे वफा में एक मुनाफिक के वास्ते मैंने रख दिया था कलेजा निकाल कर
1: हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह क्या निशान कमाल कर दिए वाह कमाल
13: और शेरा के नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं
1: हाँ
13: नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं करीब इनके आने के दिन आ रहे हैं
1: वाह वाह क्या निशान
13: जो दिल से कहा था जो दिल ने सुना था
1: हाँ
13: सब इनको सुनाने के दिल आ रहे हैं
1: वाह क्या निशा वाह कमाल
13: और अभी से दिले जान सर रख सरे रख रह दूं के लटकने लटकाने के दिन आ रहे हैं
1: वाह वाह वाह वाह वाह
13: सबा फिर हमें पूछती फिर रही है
1: वाह
13: सबा फिर हमें पूछती फिर रही है
1: वाह
13: चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं
1: वाह
13: चलो फैज फिर से कहीं दिल लगाएं
1: वाह
13: चलो फैज फिर से कहीं दिल लगाएं
1: वाह
13: सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब
13: और चेहरा के
1: जी जी
13: नसीर दीन नसीर साहब ना शेरा के
1: माशाल्लाह
13: दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठा है अलग बैठे हूँ
1: बैठे हो वाह
13: दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठे हूँ तेरी दलील पे हूँ सबसे अलग बैठा हूँ
1: कमाल का दिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या कहने वाह वाह
13: दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठा हूँ
1: वाह
13: तेरी दलील पे हूँ सबसे अलग बैठा हूँ
1: वाह
13: और डंके की बात कहे कोई तो बोलूं मैं भी
1: हाँ
13: डंके की बात कहे कोई तो बोलूं मैं
1: भी वाह वाह
13: मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ
1: कमाल का दिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह वाह वाह
13: बज़्मे इबाब में हासिल ना हुआ चैन मुझे
1: हाँ
13: बज़्मे इबाब में हासिल ना हुआ चैन मुझे मुतमिन दिल है बहुत जब से अलग बैठा हूँ
1: वाह कमाल
13: गैर से दूर मगर इनकी नगाहों से किरे महफिल यार में तब से अलग बैठा हूँ
1: बहुत खूब
13: और यही मसला है मेरा यही मेरा मकाम
1: वाह
13: आज तक ख्वाहिश मनसब से अलग बैठा हूँ
1: वाह कमाल कर दिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
13: उम्र करता हूँ बसर गोशाए तनाई में
1: वाह
13: उम्र करता हूँ बसर गोशाए तनाई में
1: वाह
13: जब से वो रूठ गए तब से अलग बैठा हूँ
1: कमाल कर दिया ब्यूटीफुल क्या कहने वाह
13: और लाश रखता कि मेरा अंदाज नसीर अहले जहां से जुदा
1: वाह
13: मेरा अंदाज नसीर अहले जुदा अहले जहां से जुदा
1: वाह
13: सब में मैं शामिल हूँ मगर सबसे अलग बैठा हूँ
1: हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह क्या निशान कमाल कर दिया वाह
13: थैंक यू वेरी मच सर
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और बहुत खूब करे शायरी की
13: कोई गलती हुई मैं तो चाहना अगर कोई किसी किस्म की कोई गलती हुई तो हाथ जोड़ी तो माफी
1: नहीं नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं नहीं बड़ी खूबसूरत बड़ी खूबसूरत वाह कमाल ये थे हमारे मोहतरम और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज हमारे अपने और कि जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ और यहाँ पे हमारा साथ देने और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु चौधरी रुखसार साहब
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب بہت زیرک بہت معلم بہت متعلم صاحبان عقل صاحبان دانش و بہت اعلی با عزت
1: واہ
14: شوق ہر دل عزیز شخصیت میرے پیارے بھائی چیمپئن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور کیسی تفید ہے میرے بھائی کی
14: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे भाई आप सुनाओ आप कैसे हैं आपकी फैमिली संगत साथ
1: मेरे भाई आपकी दुआएं हैं और वो दुआएं हम अमीन अमीन करते हैं जब आप हमारे लिए दुआएं करते हैं तो हमें क्या हो सकता है कि हल आप हमारे पीछे हैं सर पे आपका जो शरकत है माशाल्लाह आपके सर पे हमारे सर पे जो आपका हाथ है आपकी दुआएँ हैं तो और क्या चाहिए हमें
14: माशाल्लाह ये सब भी हम सभी पे जो है ना आका हजरत मोहम्मद
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
14: का दुआ मुबारक है और हम उन्हीं के दर पे झुके हुए हैं
1: हाय हाय हाय हाय सुभान अल्लाह माशाल्लाह पाइन ते पा के हम गुलाम हैं गुलाम हैं गुलाम हैं माशाल्लाह क्या कहने वाह
14: और सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को माशाल्लाह और जितने भी सुनने वाले आए थे माशाल्लाह अतीका आपी से लेकर जो आखिरी साहब आए थे माशाल्लाह
1: वो कियानी साहब मुदस्सर कियानी साहब जी माशाल्लाह जी
14: मैं तो सुन नहीं सका मैं तो क्योंकि वो कहते ना वेटिंग लिस्ट में था
1: ओके यहाँ पे खामोशी हो जाती है ये बड़ा मसला हो जाता है कि खामोशी हो जाती है जी
14: यहाँ पे तो वो कहते हैं सुमुन
1: बुक सुमुन
14: बुक
1: में ओए ओए ओए क्या कहने जी
14: उनको तो नहीं मैं उनको तो सुनने से
1: वाह जी वाह
14: मैं जी आपका पूरा प्रोग्राम मैं सुन रहा था माशाल्लाह शुरू से लेकर एंड तक माशाल्लाह सभी जो आए थे काफी से लेकर आखिरी साहब तक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बहुत आला बहुत म्यारी बहुत उम्दा माशाल्लाह वो कहते हैं ना अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जनाब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी शेरो शायरी की है और माशाल्लाह इतनी गजलें इतनी नातें इतनी नज़में और इतने सॉन्ग सुनाए माशाल्लाह लाजवाब है
1: हाय हाय हाय इसका मतलब है कि आपने कह दिया इसका मतलब सब कमाल ही कह दिया उन्हें कमाल कमाल ही हो गया वाह जी वाह क्या कहने क्योंकि जो आपका खूबसूरती है जो आपके जो सुनाते हैं जो आपके अल्फाज हैं हाय हाय सदके जमा पे सदके कुर्बान जमा
14: यकीन करें कि आप सारे मेरे उस्ताद हैं आप मुअल्लम हैं मैं तो एक मुतअल्लम की हैसियत से आता हूँ यकीन करें
1: काश काश काश दुनिया में ऐसे ही होते आप जैसे होते पूरी दुनिया में और स्पेशली मैं कुछ नहीं कहूँगा बस यही पे लेने दो ठीक है यही पे लेने दो
14: यकीन करें कि ये आपकी मोहब्बत है और सामीन ये जितना भी हमारे चैंपियन भाई कहते हैं ना ये उनकी मोहब्बत और चाहत है वरना तो वो मेरे लिए वो अल्फाज बयान करते हैं ना मैं उन काबिल नहीं हूँ
1: मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना कि मैं क्या कहूँ मैं थोड़ा मजबूर हूँ कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कहता हूँ कि काश आप वहाँ पे होते तो कुछ न कुछ मसला हल हो जाता और कुछ ना कुछ हो जाता माशाल्लाह हमारे लिए और सब के लिए और वो जो हमें हक मिल जाता और ये बहुत ज़रूरी था बस क्या करें हम दुआ कर सकते हैं और आपको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआ करें और मुस्लिमीन के लिए दुआ करें मुस्लिम के लिए दुआ करें मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करें रुखसार भाई ये क्या हुआ रुखसार भाई मैं बात कर रहा हूँ आप चले गए और मेरे ख्याल आपकी लाइन ड्रॉप होगी आप दोबारा मुझे फ़ोन कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम बात कर रहे हैं और ये क्या हुआ है रुखसार भाई ये नज़र लगी है नज़र लगी है नज़र लगी है इसमें कोई शक नहीं है नज़र लगी है यहाँ पे और नज़र लगी है कि हम बात कर रहे थे और यहाँ पे ये क्या हुआ है ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है रुखसार भाई ये क्या हो रहा है और रुखसार भाई ये क्या मसला हुआ है और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम शुक्रान भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु मैं ठीक ठाक हूँ मैं फर्स्ट क्लास हूँ A1 मुझे मलाल हो रहा है कि मेरे भाई की लाइन ड्रॉप हो गई है हमारे भाई हमारे मित्र हैं माशाल्लाह और रुखसार भाई उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है ये मुझे दुख हो रहा है
15: जी जी पता नहीं वो बातें करते करते एकदम में वो पंजाबी में करनी चुभी मार गए
1: और पता नहीं वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे माशाल्लाह और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या हावी हो गया वहाँ पे बस वो चले गए चल
15: बहुत ज्यादा दवाएं दे दी है ना तो उन्होंने बोला
1: मेडिकल स्टोर से ले ले और आज हमारे लिए क्या लेके आए कि हमने भी आपको मिस किया मेरे भाई
15: जी जी मैं इंशाल्लाह मैं दो तीन दफा कोशिश की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका।
1: जी जी
15: मैं जनाब आपके लिए एक शेर लेके आया हूँ।
1: जी जी जी जी अरशाद
15: कहते हैं कि भूल कर कांदा ना देना तू मेरी मैयत,
1: हाय होय होय होय,
15: भूल कर कांदा ना देना तू मेरी मैयत को,
1: वाह
15: कहीं फिर से

0: कैसे बताओ जाके मैं उसको कितना सताती है वो, कितना सताती है वो, परेशान होके मिलेगी मुझे वो कहाँ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
1: वाह, क्या बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बाहर आ गया और दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन, दिल बाग बाग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पर हमारा साथ देने, और भाई रुखसार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप दोबारा फ़ोन करें, अभी फ़ोन करें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमारे भाई को क्या हुआ, भाई जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई साहब, मैं बातें करता रहा, मैं दुआएं करता रहा, यक्का कितने चले गए आप
2: जी, पता नहीं, मैं तो सुन रहा था लेकिन
1: मैं तो खो गया, मैं सुन रहा था, मैं के खो गया, मैं कुछ कहने वाला था तो मैं देखा कि मैंने कहा भाई चला गया, ये क्या हुआ है, ये क्या
2: मज़ा, बहुत अफसोस हुआ, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मुझे बहुत अफसोस, मुझे दुख हुआ है, बिलीव करें कि मुझे इतना दुख हुआ है कि मैंने कहा यार मैं बात नहीं कर रहा, तो एकदम ही बंद, पता नहीं आपने हाथ लगा दिया, मैंने मेरे जहाँ पे सिस्टम ठीक है,
2: क्योंकि मैं यकीन कर अगर मेरी तरफ से होता तो मैं कहता कि मेरी तरफ से हुआ, मैंने फोन बिल्कुल सही रखा हुआ था, तो
1: यहाँ पे शायद कंप्यूटर बंद हो गया होगा, यहाँ पे वैसे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे, चलो आप जो भी कहना चाहते थे आप कहें, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि नजर लगी है और ये ना हो कि दोबारा नजर लग जाए जी।
2: अभी आ रहे हैं
1: माशाल्लाह जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आपने दोबारा फोन किया जी, बिस्मिल्लाह। ये मैं कहता हूँ, मैं कंप्यूटर जी खिद ये दोबारा ये काम नहीं करना, मेरे भाई के साथ नहीं करना है, और भाई के साथ नहीं करना, जो मेरे साथ करना है भाई के साथ नहीं करना है जी।
2: मेरे बाद कोई हस्ती है?
1: नहीं नहीं, हस्ती है कोई, कोई बात अपना जो मौका करें जी, बिस्मिल्लाह करें जी।
2: सबसे पहले तो मैं सलाम कर दूँ
1: जी जी, क्यों नहीं प्रसाद, क्यों शर्मिंदा करते मुझे यार,
2: नहीं क्योंकि पता क्या था टाइम,
1: नहीं नहीं नहीं मेरे भाई आप बात कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया, तो आप उस मुकम्मल करें, बात को मुकम्मल करें।
2: मैं न्याज मान था आपका, मैं न्याज,
1: नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जो है ना मुझे मलाल हुआ, दुख हुआ कि यार ये क्या हुआ है, मैं तो खो गया था, वो बातें करते करते करते मैंने देखा ये, मैं एकदम चुप हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ है जी, बिस्मिल्लाह करें जी।
2: चलो सबसे पहले तो जनाब अहमद शहजाद साहब हैं, और मोहतरम शकील साहब हैं, अहमद खान साहब हैं, चौधरी फरियाद साहब हैं, महबूब लाई भाई हैं, राकेश साहब हैं, वाजिद भाई हैं, और जंगीर भाई, अच्छे भाई कामरान भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, आपकी गजाला जदी
1: जी
2: हैं, अदीबा आपी हैं, और खाला शनाज मंसूर साहबा हैं, और मेहरा जी हैं, और नदीम मंसूर साहब हैं, आपी नईद हैं, मोहतरमा सैम जी हैं, कंवल जी हैं, और जो हमारे बाइक ड्राइवर हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो शॉप में काम कर रहे हैं, और जो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग गेस्ट हैं, किचन में काम कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा, चात भरा, उल्फत भरा, अकीदत भरा, उनसे भरा सलाम, और ईद उल मिलाद उल नबी की बहुत बहुत मुबारक
1: आपको भी मेरे भाई, देश के आपके भी मुबारक हो इंशाल्लाह।
2: जो आपका प्रोग्राम होगा वो 12 और रबीउल अव्वल,
1: हाँ वो बुध का होगा इंशाल्लाह जल, और हम जी जी जी जी जी
2: चलो, और वो तो मेरा लगता है कि खसूसी प्रोग्राम ही मेरा ख्याल होगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे पूछूंगा कि क्योंकि आपको

0: कहता है कि उनके मैं पूछूंगा, तो क्योंकि मैं खुद ही कहता हूं कि वो प्रोग्राम हो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बाकी सब प्रोग्राम करते हैं तो ये भी प्रोग्राम करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी,
1: तो
0: और आपका हुक्म है मेरे भाई, आपका हुक्म है सर आंखों में मेरे भाई।
1: मैं ताबेदार, मेरी तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि पता क्या फिर कहते हैं ना कि असूल और कानून और माशाल्लाह असूल के मुताबिक चलना चाहिए ना।
0: हाँ हाँ, ये बात है, ये बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो है ना, आप जैसा भाई माशाल्लाह, और हमेशा आपके लिए दुआएं करता हूँ, और हमेशा जो आपके पास जो इल्म है, नॉलेज है माशाल्लाह, और आप सबके पास नॉलेज है, तो आप सब आएंगे, शिरकत करेंगे प्रोग्राम में, उसका डालेंगे और हमारे दुरूद पाक पढ़ेंगे माशाल्लाह उनके लिए, और वो भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, और बरकत होगी यहाँ पे भी, और सुनने रेडी में बरकत होगी माशाल्लाह। जी जी,
1: मैं तो सर आपकी पूरी टीम का और माशाल्लाह आपके सर राजू की मैनेजमेंट का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि माशाल्लाह जो जो भी एनवेट आते हैं माशाल्लाह, और जो भी खास दिन आते हैं या ईद मिलाद उल नबी के माशाल्लाह, आपके साथ पूरा तामल फरमाते हैं
0: मेरे भाई। मैं कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा, और मैं पूछूंगा उनसे मैनेजमेंट से कि उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि क्या कहते हैं, जहां पे नखरा नौकरी की तो नखरा की क्या हाल है, तो वो ज़ाहिर है, तो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, तो क्यों ना मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। जी
1: तो मैं सरकार की आमद के सिलसिले
0: में बिस्मिल्लाह करें
1: कान में मैं चंद जो है ना शहर लेके,
0: जी जी जी जी,
1: तो मैं आपकी और तमाम,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, सदके जावां,
1: क्योंकि मेरी कोई असीयत मेरी बसात नहीं कि मैं सरकार की शान में कुछ अर्ज करूं या कुछ बयान करूं, क्योंकि सरकार की शान में खुद सीधे पड़ता है के हाल है।
0: सुभान अल्लाह,
1: अपनी असीयत के मुताबिक और माशाल्लाह वो कहते हैं अपनी असीयत के मुताबिक सरकार की बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: जी, बिस्मिल्लाह।
1: वो जिसकी गुफ्तगू के वास्ते आयात आती है,
0: सुभान अल्लाह,
1: वही जिसका कसीदा है मैं उसकी नात क्या लिखूं।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
1: माशाल्लाह, जन्नत की भी जन्नत जिनके कदमों में,
0: माशाल्लाह।
1: भाई सुनिएगा, ये शेर बहुत काबिले गौर है।
0: हाय हाय हाय, वाह,
1: ऐ सरकारान जन्नत की भी जन्नत जिसके कदमों में,
0: वाह,
1: वो उस बेटी का बाबा है मैं उसकी नात क्या लिखूं।
0: हाय हाय हाय, इसको दोबारा करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान,
1: ये पूरी नात का जो है ना, यानी कि हासिल शेर ये है,
0: हासिल शेर है, वाकई वाकई
1: है। सरदार, सरदारान जन्नत की भी जन्नत जिसके कदमों में,
0: वाह,
1: वो जो जन्नत के खुद सरदार है उनकी जन्नत भी जिस सैन के कदमों में,
0: वाह,
1: है सरदार जन्नत की जन्नत भी जिसके कदमों में, वो उस बेटी का बाबा है मैं उसकी नात क्या लिखूं।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
1: खुलफ सरकार से जब चेहरा निकलता है,
0: ओ हो वाह,
1: फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा।
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
1: कैसी होंगी मदीने की वो गलियां,
0: वो गलियां माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह,
1: जिन में महबूब को बन ठन के निकलता होगा।
0: ओए होए होए होए होए होए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने,
1: हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, चैंपियन भाई,
0: जी जी जी,
1: हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद।
0: ओए होए होए होए होए होए, क्या कहने क्या कहने,
1: आखिरी शेर,
0: जी जी,
1: दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग,
0: वाह,
1: दुनिया में एहतराम के
0: काबिल हैं,
1: मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद।
0: ओए होए होए होए होए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने माशाल्लाह,
1: बहुत शुक्रिया। और ये छोटी सी गजल, मेरे पीछे कोई हस्ती है तो
0: शादी शादी, कोई मसला नहीं, हस्ती वो भी मेरे अपने और आप ही मेरे अपने, कोई बात नहीं, ये
1: मेरा तो इंशाल्लाह मेरी हाजिरी होगी,
0: नहीं नहीं ये आप अपनी मुकम्मल करें, क्योंकि आपकी वो लाइन ड्रॉप हो गई थी उस वजह से, कोई अपनी मुकम्मल करें बात। जी जी जी, बिस्मिल्लाह,
1: बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर हैं।
0: जी जी जी,
1: शेर लिखता है, कभी अपने भी ऐबों पर नजर अपनी जमा कर देख,
0: वाह क्या कहने,
1: सदा गैरों के दामन पर नजर अच्छी नहीं होती।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत ही गहरा और मैं पहुंच गया हूँ वहां पे, मैं पहुंच गया हूँ।
1: ये सबाने जमीर वहां पे जिनके कहते ना कहते जिनके जमीर है उनके लिए ये
0: कहते हैं। मैं कमाल का कमाल की ब्यूटीफुल। और मैं दोबारा मैं हवा के दोष में कह रहा हूँ कि मैं माधव चाह रहा हूँ कि आपकी लाइन ड्रॉप हुई है, होना नहीं चाहिए, तो मैं माधव चाह रहा हूँ। मुझे मलाल हुआ, दुख हुआ, मैं मुझे बहुत ही तकलीफ हुई है, बिलीव करें मुझे तकलीफ हुई है, क्योंकि मेरे आप मेरे दिल में है, बिलीव करें सब मेरे दिल में है। और मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी वजह से और किसी और की वजह से कि मसला हो और हमारे जो मसले हो और कि मलाल हो दुख हो हमें, और अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे लिए जो करते हैं मुझे पता है, बिलीव करें। और मैं खैर आंखों पे मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: ये आपकी मोहब्बत आई है।
0: नहीं नहीं आपका मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेरे अगला शेर सुनिएगा।
0: जी जी,
1: तू जो औरों के गुनाहों का हिसाब रखता है,
0: आहा,
1: क्या तेरे ज़हन में तेरी औकात नहीं होती?
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या कह रहे,
1: जिसको देखो वही मुनसिफ बना फिरता है यहाँ,
0: हाय,
1: क्या कभी खुद से तेरी मुलाकात
0: नहीं होती? हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह
1: बहुत शुक्रिया। रोज औरों के गिरेबान पे नजर रखता है, प्रवेश भाई
0: जी जी,
1: रोज औरों के गिरेबान पे
0: नजर रखता है,
1: तू बता ऐने से तेरी बात नहीं होती?
0: वाह वाह वाह वाह, जहां क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शेरा आपकी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
0: जी जी,
1: जब भी ऐना दिखाता हूँ हकीकत का अनीस,
0: वाह,
1: क्यों तेरे पास कोई बात नहीं होती?
0: ओए ओए क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने आपका अंदाजा बयानिया, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, वाह
1: सर, टाइम देने का
0: मेरे भाई, प्लीज ऐसे मुझसे बात ना किया करें, प्लीज आप मेरे भाई हैं, और अल्लाह पाक हमेशा हमको खुश रखे, शाद आबाद रखे, और हमारी जो दोस्ती है हमारा जो कायम दायम रहे, किसी की नज़र ना लग जाए, और बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही रहें और खुशबाश रहें, और मुझसे कोई गलती खताई हो मुझे माफ़ करना प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: सर ये तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं, मेरे लिए नायत काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, काबिल अजमत और काबिल रिफत है, मेरे लिए यकीन करें,
0: हाय हाय हाय हाय, रास्ते में क्या कहने,
1: गलती कोई होगी है तो आप मुझे शर्मिंदा
0: करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है कि मुझे बिलीव करें, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था, तो एकदम ही लाए ओके कहते हैं कि वो बंद हो गई है, तो मैंने कहा यार ये क्या मसला हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बिलीव करें, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे,
0: आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: तमाम दुख तमाम मुसीबतें अल्लाह ताला आपकी दूर फरमाए,
0: आमीन आमीन,
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे भाई, तैयारी करके आना वेनिसडे के, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे टाइम बहुत कम है, और एम खान जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू,
2: वालेकुम सलाम और बरकातहू, आपको सबको ईद मिलाद नबी
0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर के आप आए, और वेनिसडे के प्रोग्राम में आपने शिरकत करनी है, और वो आपके लिए माशाल्लाह और खूबसूरत प्रोग्राम होगा, और आपने मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करता जी,
2: कितने बजे स्टार्ट होगा?
0: इंशाल्लाह 8 बजे शुरू होगा इंशाल्लाह, और देखते हैं क्या होता है, पहले मैं उनसे पूछूंगा, हमारे जो मैनेजमेंट से पूछूंगा, तो उसमें आपने शिरकत करनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अच्छा लगे आपने हमें याद किया है, मुझे पता है आप बिजी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, हमारे साथ चौधरी फरियाज साहब भी मेरे साथ हैं, तो वो भी दो बातें करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं मदद चाह रहा हूँ आपसे, तो इंशाल्लाह आपसे कलाम होंगे वेनिसडे की शाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। और ये थे हमारे एम खान जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, और एफ रहमान साहब हमारे साथ दे रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू,
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, परवेज भाई कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई के आपने मुझे टाइम दिया, मैं मदद चाह रहा हूँ, टाइम बहुत कम मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। और ये थे हमारे एफ रहमान साहब, और हमारे साथ चौधरी फरियाज साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चौधरी साहब बिस्मिल्लाह चौधरी साहब वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब टाइम बहुत ही एंड पे आ रहा है प्रोग्राम का तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा फ़ोन किया उज़्रा विदाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह वेंसडे के प्रोग्राम में आपने शिरकत करनी है और उसमें बहुत शुक्रिया होगा आपका भी और सब सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया मेरे भाई का जी
4: ठीक है जनाब
0: बहुत बहुत मेहरबानी सर बहुत बहुत मेहरबानी आपके सर कि आप आए और दिल आपने लूट लिया मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे शादबाद रखे बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और ये थे हमारे मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया इनका और आज मुझे मलाल हो रहा है दुख हो रहा है मुझे क्योंकि हमारे शकील साहब को लाइन नहीं मिली है राय अजहर साहब हैं उनको लाइन नहीं मिली है और हमारे एक और नए कॉलर थे उनको लाइन नहीं मिली है सईद अहसान साहब उनको लाइन नहीं मिली है अल्लाह हाफिज़ अन शबहर अन गॉड ब्लेस यू ऑल
5: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News. From the Sky News Centre at 11, more than £200,000 has been raised for the families of the two officers killed in a crash on Teesside. Matthew Blades and Tom Clough died when their patrol car was hit by a Volkswagen on the wrong side of the A66 near Middlesbrough. Its five occupants, aged between 17 and 23, also died. Mourners are laying flowers at the scene.
6: God bless all the families, honestly.
7: No one deserves to not come home. I'm a reservist. I've never seen anything extreme, but all of us who put our names on these lines, we're willing to do things like this. No one should have to, but we do.
5: Two young women have been arrested on suspicion of causing a serious injury to a child in Rochdale. The women, aged 19 and 20, were arrested at a property in Blackburn earlier today. The child reportedly fell from a first-floor window and remains in a serious condition. A 34-year-old man's been arrested on suspicion of murder following a house fire in West London. A woman aged 48 died in hospital after the blaze in Hounslow in the early hours of Wednesday morning. The six Nordic football associations have announced they have lost confidence in Gianni Infantino. Meanwhile, the head of football in the Caribbean and North and Central America says it's for Infantino to decide if he should resign as FIFA president.
8: That's his decision. It's not my decision. Those are individual decisions. My view is, you know what, listen, we have to follow a proper governance process and I have to respect my colleagues with that. And listen, I think once we follow that, then those decisions can be made by individuals.
5: CONCACAF's Victor Montagliani says he asked him to stay away from a youth tournament in the Dominican Republic as a courtesy. It's over a botched effort to sell off stakes in the World Cup to private investors. Liverpool scored a 99th-minute penalty to draw 2-2 at Newcastle in the Premier League. Manchester City secured a late 2-1 win in their opener with Bournemouth. And Brighton thrashed Aston Villa 4-0. That's the latest from Sky News. I'm Connor Sefton.

जगाती है कयामत कोई।